आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: प्रणाम, सुप्रभात। ई सुबह सवेरे के सुहाना मौसम में स्वागत बरुआ सबके। हम हई राउर रेडियो दोस्त दीपाली और ई हम लेके हाजिर बानी स्वास्थ्य वर्धक घरेलू नुस्खा। वैसे तो कार्यक्रम के नाम तो रहुआ पता ही बा, आपन देह आपन देखभाल। दोस्त लोग, ये कार्यक्रम में हम बतावेनी कुछ हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स, तो आई श्री गणेश कही जाओ आज के शो के। दोस्त लोग, आज हम सबसे पहले बताएं प्याज के बारे में। सफेद प्याज के गुलाबी, लाल और पीला प्याज के किस्म से उत्तम मानल गई बा। भोजन के साथ कच्चा रूप में ही प्रयोग करे के चाहिए, ताकि पाके से ओके खाद्य गुण नष्ट हो जाला। प्याज एगो उत्तेजक आहार है, अतः एकर प्रयोग अधिक मात्रा में ना करे के चाहिए। प्याज के बीज से वृय के मात्रा बढ़ेला और दांत में लागल कीड़ा नष्ट हो जाला। पत्ता में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड पावल जाला। प्याज के सेवन से पेशाब खुल के आवेला और बलगम पीग लेला। औषधि प्रयोग में प्याज के रस ही प्रयुक्त होला। तो दोस्त लोग, चले जानल जाओ कि प्याज के प्रयोग से कौन कौन बीमारी से पीछा छुड़ावल जा सकेला। बाजीकरण, बाजीकरण में सफेद प्याज के छील के लुगदी बनाई और मक्खन में भूरा रंग तक तली। यदि ई तलल प्याज के एक चम्मच मात्रा रोजाना शहद के साथ सेवन कैल जाए, तो ऐसे काम शक्ति बढ़ी और यौनांग भी सबल हो जाए। ई उत्तम बाजीकरण के काम करेला। पेशाब में जलन होकल, पेशाब रुकल में यदि पेशाब करते समय जलन हो रहा होके, तो एक चम्मच प्याज के लुगदी के 500 ग्राम पानी में उबाली। आज जब मात्रा आधा शेष रह जाए, तो ओकरा के ठंडा करके छान ली और वो पानी रोगी के पिलाई। ऐसे पेशाब के जलन दूर हो जाए। प्याज के कद्दूकस करके 10 गुना चीनी के साथ रोगी के दी। ऐसे पेशाब की रुकावट दूर हुई और पेशाब के निर्बाध प्रवाह पुनः चालू हो जाए। दिल के दौरा में प्याज पर 7 वर्ष तक शोध करे के बाद यदि 100 ग्राम कच्चा प्याज रोजाना खाई जाए, तो दिल के दौरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज खून में थक्का बने के प्रवणता और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ल सामान्य हो जाए, जैसे हृदय की प्रणाली सुचारू रूप से काम करे लगी। हैजा होके पे हैजा के इलाज में प्याज एगो प्रभावकारी साधन है। 5 से 6 चम्मच प्याज के रस में 7 काली मिर्च डाल के बारीक पीस ले और ई रोगी के दी। ऐसे प्यास कम लगी और बेचैनी, वमन और दस्त, सिरे की शिकायत भी दूर हुई। इसे अधिक प्रभावकारी बनावे खातिर इमे थोड़ा सा चीनी मिला दी। खूनी बवासीर में 30 ग्राम प्याज के पानी के साथ बारीक पीस ले। इमे 60 ग्राम चीनी मिला के रोगी के देवे से बवासीर रोग में खून आवल बंद हो जाई। मिर्च मसाला और खटाई के प्रयोग उपचार के दौरान ना करें। दोस्त लोग, अबे हमनी के जननी है सन प्याज के बारे में। अब चली जान लिहल जाओ घीग्वार यानी ग्वार पाठा के बारे में। ग्वार पाठा के पौधा स्वयं ही खेत के किनारे, जंगल में या नदी किनारे पैदा हो जाला। आयुर्वेद में एके सिनग्ध, भारी, शीतल प्रकृति वाला, तिक्त स्वाद में मधुर, विपाक में कड़वा, व्रीय बलवर्धक, रक्त शोधक, वातहर तथा नेत्र हितकारी मानल गई बा। एकर प्रयोग जिगर, तिल्ली, शोथ, खांसी, दमा, कब्ज, अंड वृद्धि, त्वचा और रक्त विकार के दूर करे में भी सहायक मानल गई बा। यूनानी चिकित्सा में एके शुष्क, गर्म, कब्ज हरी वाला, रक्त शोधक, रज और मूत्र प्रवर्तक, अमाशय के बल देवी वाला, जिगर तिल्ली के विवर्धन के कम करे वाला। पाचन सुधारक, नेत्र खातिर हितकारी, कृमि नाशक, संधि विकार में लाभकारी और बवासीर में गुणकारी मानल गई बा। घीग्वार के प्रयोग अनेक सौंदर्य प्रसादन में भी कई जा रहल बा। एकर प्रयोग में सावधानी ई बरते के बा कि प्रसूता स्त्री जब तक बच्चा के स्तनपान करा रहल होके ता एकर सेवन ना करे। एही प्रकार गर्भवती स्त्री भी एकर प्रयोग ना करे। यदि कोनो रोग के कारण शरीर के कोनो अंग में रक्त स्त्राव हो रहा होके तभी एकर प्रयोग वर्जित पा। यदि एकर प्रयोग निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कर लियल जाए तो दस्त और मरोड़ शुरू हो जाए। तो दोस्त लोग, चली जानल जाओ घीग्वार के रोग उपचार के बारे में। कफ विकार में यदि कफ अधिक होके छाती में रुकल होके और बाहर निकले में कठिनाई होके तो घृत कुमारी के रस छाती पर मली, ऐसे आराम मिले। खांसी में 1/2 चम्मच ग्वार पाठा के रस लेके उसमें 1/4 भाग सौंठ और 1/4 भाग काली शहद मिला के पिलाई। चोट लागे पे घाव के स्वच्छ करे के बाद घाव पर ग्वार पाठा के रस लगाई, इसे घाव पाके ना पाई। ज्वर में ग्वार पाठा के रस में हल्दी डाल के रोगी के पिलाई और पंजा तथा माथा पर ई रस के मालिश करी, साथ में रोगी के सुदर्शन चूर्ण भी दी, इसे बुखार उतर जाई। दर्द और वायु विकार में ग्वार पाठा की सब्जी बना के रोगी के खिलाएं। यदि पेट में गैस रुकल होके तो ग्वार पाठा की गुदा लेके उसमें जीरा, काला नमक, सेंधा नमक और हल्दी मिला के रोटी बनाई और रोगी के खिलाएं। ऐसे गैस और पेट दर्द दोनों में आराम मिलेगा। विकल्प के रूप में ग्वारपाठा के बारीक टुकड़ा काट ली, कोई में जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक और नींबू के रस डाल के शीशी में बंद करके 5 से 7 दिन पड़ा रहेगी। जब पेट दर्द, गैस और अपचन के शिकायत होके तब 3 टुकड़ा मुंह में रख के ई रस के चूसी या अचार के तरह सेवन करी तब ये सब रोग में राहत मिली। जिगर के सूजन में सेंधा नमक या काला नमक मिला के रोगी के ग्वारपाठा के रस पिए के दी। बवासीर में 15 से 30 ग्राम ग्वारपाठा के रस रोगी के पिए के दी। साथ ही घीग्वार के गुद्दा में हल्दी के चूर्ण मिला के मस्सा पर लगाई, ऐसे काफी राहत मिली। दांत में दर्द व दांत के हीले में दांत पर ग्वारपाठा के छिलका रगड़ी और चबाई, ऐसे ये दोनों रोग में आराम मिली। आग से जलन पर ग्वारपाठा के पत्ता के चीर के उनमें से गुद्दा निकाल के जलल होकल स्थान पर दिन में 2 से 3 बार लगाई, ऐसे शांति मिली और जलन कम हुई और घाव भी शीघ्र भरी। शारीरिक बल और पुष्टि खातिर ग्वारपाठा के 3 से 4 पत्ता के चीर के उनमें से गुद्दा निकाल के गिलोय और नीम के चूर्ण के 1 चम्मच मिला ली। इनमें से रोजाना 2 से 4 चम्मच खाई तो शरीर में बल वृद्धि हुई और शरीर पुष्टि हुई। हिचकी आवे पे ग्वारपाठा के 2 चम्मच रस में 1/2 चम्मच सौंठ के चूर्ण मिला के सेवन करे से हिचकी बंद हो जाए। सूजन में घीग्वार के पत्ता में पीसल हल्दी और जीरा डाल के लेप तैयार करी और इस सूजन के स्थान पर लगाई। ये प्रयोग कई बार करे से सूजन दूर हो जाए। यदि शरीर में कहीं गांठ फट जाए तो घीग्वार के गुद्दा में हल्दी के चूर्ण और लहसुन मिला के प्रभावित स्थान पर गरम गरम लेप करी तो ऐसे गांठ दब जाए। दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही, कहे कि अब वो समय आ गईल बा जेमें दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। नमस्कार।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: कितना अजीब है ना, दुर्योधन विलेन न होके भी विलेन है, यह हमने उसको विलेन बना दिया। जब कोई दुर्योधन की सिचुएशन में हो तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक या तो वो सही रास्ता पकड़े और हीरो हो जाए, या गलत पकड़ के विलेन। मैंने दुर्योधन को गलत रास्ता पकड़ते हुए देखा, क्योंकि मैं आकाश हूं। शकुनी नहीं होता तो शायद जुए का खेल फिर से नहीं होता। दुर्योधन कितना भी गलत सही, पर अगर वो दूसरी बार जुए के लिए धृतराष्ट्र के पास गया तो सिर्फ और सिर्फ शकुनी की वजह से।
12: मैं पांडवों का भला चाहता हूँ पुत्र दुर्योधन, उनके सुखी जीवन की कामना भी करता हूँ। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं उन्हें अपने पुत्र से बढ़कर चाहने लगूं। जरा सोचो पुत्र, यदि मैं पांडवों के पक्ष में होता तो क्या मैं तुम्हें जुआ खेलने की अनुमति देता, महात्मा विदुर से वाणावत का निमंत्रण भिजवाता? पर मैंने वो सब कुछ किया जो तुम चाहते थे।
13: ओ हो, पिताश्री, तुम्हें अब समझा आपकी चाल। आपने ये सब केवल मेरा मन रखने के लिए किया। आपकी इच्छा नहीं थी कि मैं पांडवों से अपने अपमान का बदला लूं।
12: ऐसा मत कहो पुत्र, ईश्वर के लिए मुझे और चोट मत पहुंचाओ।
13: आप मेरे साथ छल पर छल करते रहे और मैं कुछ भी ना कहूं पिताश्री, बंद रखूं अपना मुंह, चुप बैठ जाऊं। आपने तो मुझे पांडवों का बंधक बनाकर छोड़ दिया पिताश्री। पांडवों से जीती हुई मेरी अपार संपत्ति उन्हें वापस करके कैसी हंसी उड़ाई है मेरी। जीते जी मार दिया मुझे आपने पिताश्री, मार दिया जीते जी।
12: ऐसा मत बोलो पुत्र, मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें अपने प्राणों से बढ़कर चाहता हूं, और मेरे रहते पांडव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए अपने मन का भय निकाल दो, इसी में कुरुवंश का भला है पुत्र।
13: आप क्यों बार बार कोलू के बैल की तरह वहीं पहुंच जाते हैं पिताश्री? मैं कितनी बार कहूं कि पांडव कभी मेरा हित सोच ही नहीं सकते। और देखिएगा पिताश्री, अब तो वो मेरा अंत करके ही मानेंगे।
12: शुभ शुभ बोलो पुत्र, शुभ शुभ बोलो। संसार की कोई शक्ति तुम्हारा अंत नहीं कर सकती। निर्भय रहो, निश्चिंत रहो बेटा। पांडव वैसे नहीं है जैसा तुम सोचते हो।
13: वो वैसे भी नहीं है पिताश्री जैसा आप सोचते हैं। क्या आपने अपने कानों से नहीं सुना कि उन्होंने कैसे कैसे प्रण लिए? भीम और पांचाली की प्रतिज्ञा सुनने के बाद भी क्या आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ देंगे पिताश्री? क्या वो अपने सर पर प्रतिज्ञा झूठी होने का पाप उठाएंगे?
12: मुझे विश्वास नहीं होता पुत्र कि वो तुमसे सचमुच ऐसी शत्रुता निभाएंगे।
13: विश्वास होगा आपको पिताश्री, लेकिन तब होगा जब मेरे प्राण चले जाएंगे। जब भीम अपनी गदा से मेरी जांघ चूर चूर कर देगा। और जब तक आपको विश्वास होगा पिताश्री, तब तक पांचाली मेरे प्रिय भाई दुशासन के रक्त से स्नान कर चुकी होगी। और आप बस छाती पीटते रह जाएंगे पिताश्री कि आपके पुत्र इस संसार में नहीं रहे। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ पिताश्री, आपको इस अनहोनी को रोकना होगा। आपको ही रोकना होगा पिताश्री, अन्यथा जो भी होगा उसके कारण केवल आप होंगे पिताश्री, केवल आप।
12: नहीं पुत्र, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके मुख से ऐसा क्रोध में निकल गया होगा। मैं उन्हें समझाऊंगा पुत्र कि वो कुरुवंश पर ऐसा घात ना करें।
13: क्या पांडवों से मेरे प्राणों की भिक्षा मांगेंगे आप? हे ईश्वर, गुरुकुल का सम्राट भिक्षा मांगेगा, ये सोचकर भी लज्जा नहीं आई आपको पिताश्री? आप इतने निरीह और असमर्थ हो गए? क्या आज दुर्योधन का महान पिता ऐसा असहाय हो गया कि अपने पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगता फिरेगा?
12: नहीं पुत्र, नहीं, ये असमर्थता नहीं। मैं तुम्हें रक्तपात से बचाना चाहता हूँ।
13: लज्जा आती है मुझे आपको पिताश्री कहते हुए। गुरुवंश के सम्राट के मन में रक्तपात का ऐसा डर देखकर मुझे लज्जा आती है। पर क्या आपने एक बार भी सोचा कि ये डर उनके मन में क्यों नहीं है? क्या अब ये दिन आ गए हैं कि दुर्योधन कायरों की तरह अपने प्राण बचाने के लिए भागता फिरेगा? हे ईश्वर, अच्छा है आपके ये वचन मेरी माता ने नहीं सुने पिताश्री। नहीं तो पीड़ा से प्राण निकल जाते उनके।
2: इसमें भी दोष तुम्हारा ही है पुत्र।
12: महारानी,

0: हमारा ये पुत्र ही है।
1: ये आप क्या कह रही है माता? ऐसा क्या कर दिया मैंने?
0: मुझसे पूछते हो क्या किया है? अपने हृदय पर हाथ रखकर उससे पूछो क्या किया है तुमने। एक स्त्री की लज्जा का हरण किया है तुमने, अपने ही भाइयों की पत्नी का मान हरा है, और इसके लिए तुम्हारे पिता तुम्हें क्षमा कर दे, मैं क्षमा कर दूं, परंतु ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा दुर्योधन।
1: अपने पुत्र से ऐसी घृणा?
0: अपने पुत्र से नहीं, आज मुझे अपनी कोख से घृणा हो रही है पुत्र। जिस क्षण तुम जन्मे उस क्षण से घृणा हो रही है। तुमने राजसभा में जो किया है उसने हस्तिनापुर की धरती को सदा के लिए कलंकित कर दिया है।
2: मैंने ऐसा भी कोई अपराध नहीं किया माता, जिसके लिए आपको।
0: यदि तुम्हें अपना अपराध समझ आ जाता तो तुम्हें इतनी रात्रि में अपने पिता से वार्ता करने की आवश्यकता ही नहीं होती पुत्र। तुम्हारी भूल और तुम्हारे पाप ही अब प्रेत बनकर तुम्हें सता रहे हैं।
3: अपने पुत्र के लिए ऐसा ना कहें महारानी गांधारी।
4: दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। आप अपने कक्ष में जाएं, मैं दुर्योधन से बात कर रहा हूं।

0: सुन लिया पुत्र? मैं माता की बातों पर ध्यान नहीं देता पिताश्री। उन्हें मेरे मान अपमान का पता नहीं है। वो नहीं जानते कि पांडवों ने क्या क्या किया है मेरे साथ। मैं उन्हें वो सब बताना भी नहीं चाहता। पर मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया पिताश्री, इसलिए आप बताएं पिताश्री कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं।
1: मैं स्वयं उन्हें समझाने जाऊंगा पुत्र, और युधिष्ठिर मेरा अनादर नहीं करेगा।
0: आपने समझाने जाएंगे तो ठीक है, मैं इसी समय अपना सर काटकर आपको भेंट कर देता हूं। अपने साथ लेते जाइएगा और उन्हें देते हुए कहिएगा कि आपके प्रिय पुत्र दुर्योधन ने आत्मघात कर लिया है, इसलिए अब उन्हें किसी प्रतिशोध की कोई आवश्यकता नहीं है।
2: दुर्योधन, पुत्र दुर्योधन, कहाँ हो तुम पुत्र?
1: नहीं,
2: नहीं, मैं वचन देता हूँ पुत्र, मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे भले के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा पुत्र, अवश्य करूंगा।
0: यदि आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री तो सुनिए, मैंने मामा शकुनी के साथ विचार विमर्श किया है और उन्होंने मुझे एक सलाह दी है।
2: हाँ। कैसी सलाह पुत्र?
0: हमें जुए का एक और दांव खेलना होगा।
2: हाँ। किसके साथ दांव लगाओगे? यदि पांडवों के साथ फिर जुए की बात सोच रहे हो तो?
0: मैं जो सोच रहा हूँ वही एकमात्र रास्ता है पिताश्री, नहीं तो ये रही मेरी तलवार।
2: रुक जाओ, रुको, तलवार रख दो पुत्र, कहो क्या कहना चाहते हो।
0: सुनिए, पांडवों के साथ ही दाव लगाना होगा पिताश्री, और इस बार बस एक दाव लगेगा।
2: फिर क्या होगा?
0: इसमें जो जीतेगा उसे पूरा साम्राज्य मिलेगा, और जो हार गया उसे 12 वर्षों का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास का होगा। यदि अज्ञातवास में उनका ये रहस्य खुल गया तो उन्हें फिर से 12 वर्षों के वनवास पे जाना होगा।
2: ईश्वर, पुत्र शकुनी के कहने पे मत आओ उसकी बातों में। तुम एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में कूदने जा रहे हो।
0: आप हाँ करते हैं पिताश्री कि मैं काट डालूं अपनी गर्दन?
2: मैं तैयार हूं पुत्र, तैयार हूं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजता हूँ, आज ही भेजता हूँ।
0: आपको उन्हें किसी भी परिस्थिति में हस्तिनापुर बुलाना होगा पिताश्री। यदि वो दूत के निमंत्रण पर नहीं आते तो आपको स्वयं जाना होगा। वैसे भी भ्राता युधिष्ठिर आपकी आज्ञा को कभी टाल नहीं सकते, याद है ना? यहां से जाते समय उसने आपसे क्या कहा था?
3: आशीर्वाद देता था, मैं नहीं चाहता कि इस द्यूत क्रीड़ा के कारण आपके मन में हमारे प्रति कोई अनुचित सोच आए। मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है और भविष्य में भी करता रहूंगा।
0: उनकी बात आप भूले तो नहीं ना पिताश्री?
2: नहीं पुत्र, मैं ज्येष्ठ पांडव की बात कैसे भूल सकता हूं। वो मन से बहुत अच्छा है, बड़ों का सम्मान करना जानता है।
0: बस पिताश्री, आप ऐसे ही सम्मान पाते रहें और हमारी सोच में बाधा ना डालें।
4: ये मोह भी ना बड़ी बुरी चीज होती है, और पुत्र मोह तो जो ना करवा दे कम। जैसे ही दुर्योधन ने अपनी गर्दन पे तलवार रखी, धृतराष्ट्र के हाथ पांव फूल गए और बस बन गया काम जिसका बनना था, नाम जिसका शकुनी था।
5: गऊ है, बिल्कुल गऊ है तुम्हारे पिताश्री। उनका उनका यही भोलापन जो है ना, तुम्हारे सपने सच करेगा भांजे, तुम्हारे सपने

0: यदि हमारी इच्छा इस बार भी अधूरी रह गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे मामा।
1: अधूरी तो तेरी बुद्धि है भांजे, पिछली बार भाग्य ने साथ नहीं दिया था, और सिर्फ पांडव ही तुम्हारे दास नहीं होते, पांचाली भी इस वक्त तुम्हारे चरण दबा रही होती भांजे।
0: मुझे बस उन पांडवों की हार चाहिए मामा। दर दर भटकते देखना चाहता हूं मैं उन पांडवों को, दर दर भटकते देखना चाहता हूं।
2: एक फलसफा बताएं, हमारा मन भी शकुनी जैसा चतुर है कि नहीं बताइए, है ना? हाँ, जो फल का लालच देके बार बार हमारी आत्मा को बहकाने की कोशिश करता है, और बेचारी कमजोर आत्मा वाले अक्सर बहक जाते हैं। पर अगर हम सिर्फ कर्म करते रहने को ही अपना जीवन मान लें तो भटकाव नहीं होगा। महाभारत।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198888

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। हथुआ अंचल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, छाड़ी नदी का अब होगा जीर्णोद्धार, अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान शुरू, 30 तारीख को लग रहा है बृहद जॉब मेला, नीट छात्रा का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी, अलग अलग मामलों में लगभग 1000 लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने हथुआ अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व कार्यों, अभिलेखों एवं विभिन्न पंजीयों के संधारण की स्थिति की समीक्षा की गई। बड़ी संख्या में लंबित परिमार्जन आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रधान सहायक की नोटबुक, सूचना का अधिकार पंजी, CWJC पंजी और पूर्ण स्थानांतरण पंजी तथा शनिवारीय पंजी का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के संधारण में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी पंजियों को अद्यतन एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संधारित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अपने साथ जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त 3 मामलों के आवेदन भी लेकर पहुंचे, लोगों से बातचीत की और संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा मामले का त्वरित निष्पादन भी करवाया। छाड़ी नदी के जीर्णोद्धार एवं उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से आज अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में स्थल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नदी के करीब 1.5 किलोमीटर लंबे चिन्हित क्षेत्र में अंचल अमीन के द्वारा की जा रही मापी का स्थल निरीक्षण किया गया। मापी के दौरान अब तक 42 अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। निरीक्षण के क्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि छाड़ी नदी के चिन्हित क्षेत्र में मापी की कार्रवाई पूरी गंभीरता के साथ कराई जाए, ताकि नदी की वास्तविक स्थिति, उपलब्ध भूमि एवं अतिक्रमित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा सके। अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल को निर्देशित किया गया है कि मापी की पूरी कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए सभी संबंधित अतिक्रमणों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना सुनिश्चित करें। इस दौरान अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
6: छाड़ी नदी के अतिक्रमण को लेकर के 7 स्तरीय टीम, 7 लोगों अमीन की टीम बनाई गई है, जिसमें हजियापुर, सरैया और गोपालगंज नगर के में लगभग 1.5 किलोमीटर जो छाड़ी नदी बह रही है, पहले इन तीन मोजा का हम अमीन की टीम द्वारा निरीक्षण करके सभी घरों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे छाड़ी नदी की पर अतिक्रमण कर लिया गया है। उस अतिक्रमित नदी को हम लोग पहले सबको घर को चिन्हित करके सब में मार्क निशान लगा रहे हैं और उसके बाद सभी फिलहाल तक 42 घरों को चिन्हित किया गया है और आज SDM मैडम द्वारा एक हफ्ते का अल्टीमेटम टाइम दिया गया, एक हफ्ते के अंदर पूरा 1.5 किलोमीटर का नापी करके एग्जैक्ट हमें पता चले कि कितने लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, फिर उनको बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत प्रपत्र 1 और 2 में नोटिस करके उस अतिक्रमण को हटाया जाए।
5: 30 सितंबर को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन मिंज स्टेडियम में हो रहा है। इस एक दिवसीय रोजगार मेला में निजी क्षेत्र की लगभग 15 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय इसका आयोजन कर रहा है। इस दौरान बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर और व्यवसायिक मार्गदर्शन मिलेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी ने अधिक से अधिक युवाओं से मेले में पहुंचने की अपील की है। नगर थाना क्षेत्र के श्याम सिनेमा रोड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। यहाँ किराए के मकान में रहकर ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही एक 20 वर्षीय छात्रा उजाला कुमारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतिका सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सरया पहाड़ गांव के रघुनाथ शर्मा की बेटी उजाला कुमारी शर्मा थी। वह अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और पिछले करीब 1 साल से यहाँ कमरा लेकर रह रही थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा के कमरे का दरवाजा बंद पाए जाने पर जब उसे खोला गया तो अंदर उसका शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस मामले में मृतिका के भाई अभिषेक शर्मा का कहना है कि करीब 1 वर्ष से शहर के श्याम सिनेमा रोड स्थित कौशल किशोर श्रीवास्तव के मकान में किराएदार के तौर पर यह छात्रा रहती थी और ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। इसी बीच फांसी के फंदे से लटका उसका शव मिला है। मृतिका के भाई ने कहा कि जब वह अपनी बहन के कमरे में गया तो देखा कि उसका दरवाजा बाहर से बंद है। उसने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया। अब इस मामले में पुलिस के तरफ से एक एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस का आधिकारिक बयान भी सामने आ सकता है। परिजनों ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है और स्थिति पर अपनी आशंकाएं जताई हैं। बताया जा रहा है कि नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतिका के मोबाइल फोन और एक डायरी को जब्त कर चुकी है। डायरी में मानसिक परेशानी और तनाव से जुड़ी कुछ बातें लिखी मिली हैं। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर साक्ष्य को एकत्रित की है। सदर SDPO कृपाल चंद जायसवाल के अनुसार शुरुआती तौर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस ने मोबाइल के CDR और डायरी के आधार पर भी मामले की गहनता से तफ्तीश शुरू कर दी है। आज पुलिस ने कई अलग अलग जगहों से शराब के भारी मात्रा में खेप को पकड़ा है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। माझा पुलिस ने 35 लीटर से अधिक देशी चुलाई शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भैंसही गांव में छापेमारी की। इस दौरान 35 लीटर से अधिक देशी चुलाई शराब को जब्त किया गया और इस मामले में भीम राजभर को गिरफ्तार किया गया जो भैंसही गाँव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इधर सिरीपुर थाना की पुलिस ने 303 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक कार को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच करते हुए मिश्र बतराहा के पास कार को पकड़ा। इस गाड़ी की तलाशी लेने पर इसके अंदर से 303 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में दीपक कुमार गोण, पिता राम सूरत गोण, साकिन बनकटिया दुबे थाना बनकटिया जिला देवरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके शराब और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भी 24 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने बिशंबरपुर के तिवारी मटिहिनिया के पास एक व्यक्ति को प्लास्टिक के बोरे में शराब लाते हुए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी कृष्णा शाह गोण, पिता नरेश शाह गोण, साकिन बलिवन सागर थाना बिशंबरपुर का निवासी है। यह एक बोरे में पीठ पर शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। अब आरोपी को भी उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी 495 लीटर देशी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है। इसमें भी एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर नहर के पास वाहन जांच शुरू किया। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसके अंदर से 495 लीटर देशी शराब मिली। इसमें चालक को पकड़ा गया, यह विधि विरुद्ध बताया जा रहा है। इसके बाद शराब और कार को जब्त करते हुए इस पूरे शराब तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को पुलिस तलाश रही है। नगर थाना की पुलिस ने थावे बंजारी बाईपास और वाहन जांच करते हुए एक चोरी की मोटरसाइकिल को पकड़ा। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन जांच कर रही थी, इसी दौरान मोटरसाइकिल से बबलू कुमार यादव आ रहा था, जो माझागढ़ के धामा पाकड़ स्थित बीरेश चौधरी का पुत्र है। पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो आरोपी भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर आरोपी को पकड़ा। मोटरसाइकिल के कागज मांगे गए, जिस पर आरोपी ने कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं किया। संदेह उत्पन्न होने पर उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। तलाशी ली गई और पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी बबलू कुमार यादव के द्वारा बताया गया कि वह अपने सहयोगी जिशान अली उर्फ गोलू साकिन डोमा हता थाना माजागढ़ जिला गोपालगंज के साथ मिलकर बंजारी मोड़ से मोटरसाइकिल चोरी कर ले जा रहा था। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए इसके सहयोगी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है और इसमें आवश्यक जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त शमसुद्दीन पिता स्वर्गीय मुर्तुजा साकिन सिरवनिया थाना माझागढ़ को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मजदूरी के बकाया रुपए मांगने को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी के साथ मारपीट कर उसे घायल किया गया था और इसी मामले में वादी ने थाने में आवेदन दिया था, जिसमें आरोपी की पुलिस कर रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज अपने कार्यालय में भी जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें नियमानुसार यथा शीघ्र कार्रवाई करते हुए आवेदनकर्ता को फौरी राहत उपलब्ध कराने का उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जंगलिया में आपसी विवाद के दौरान झगड़ा छुड़ाने गए एक युवक पर हुई चाकूबाजी कांड में पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ सिराजुद्दीन आलम, दूसरा सैफ अली, ये दोनों निजामुद्दीन राय के पुत्र हैं, और तीसरा निजामुद्दीन राय पिता सुलेमान राय, ये सभी जंगलिया के रहने वाले हैं और बाप बेटे बताए जा रहे हैं। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ दुनिया के किसी भी कोने से उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हथुआ अंचल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, छाड़ी नदी का अब होगा जीर्णोद्धार, अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान शुरू, 30 तारीख को लग रहा है बृहद जॉब मेला, नीट छात्रा का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी, अलग अलग मामलों में लगभग 1000 लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
13: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ
16: भारतवर्ष की यात्रा जारी है। महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक, आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्वों की आभा चमक को हमने महसूस किया। अगले पड़ाव पर आज हम ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, भारतवर्ष की इस अद्भुत और विराट यात्रा में आपका स्वागत है। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए इस बार भारतवर्ष में कबीर को ढूंढते हैं, खुद में अपने अंदर कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं।
17: अरे धीरे धीरे रे मना,
18: मुझे लगता है कबीर इनके अंदर भी है, कबीर इनके अंदर भी है। कबीर में ना अमीर है ना गरीब है, कबीर हर इंसान के अंदर है, बट उसको बस पहचानना है।
17: मारी सी सो घड़ा,
19: कबीर एक साक्षात एहसास है हर इंसान का अपना।
20: मेरे लिए कबीर मुझे काफी ग्राउंड करता है। कबीर
21: एक वे ऑफ लाइफ है बेसिकली।
15: कबीर कबीर कबीर,
17: ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी।
15: कबीर नाम की ये गूंज हमने सुनी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गांव लुनिया खेड़ी में।
17: अरे गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल।
15: पिछले 20 साल से दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर इस गांव में कबीर प्रेमी और कबीर भक्तों की भीड़ जुटती है।
18: मैं फिल्म एडिटिंग करता था, मैंने अपना काम छोड़ दिया। उनका इतना प्रभाव हमारे पर पड़ा, हमारे उसमें जो वायलिन बजाते हैं वो इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मैं किताबों से नहीं पढ़ा कबीर को, मैं सच्ची बोलूँगा, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, मैं ड्रॉप।
17: मैं तो हूँ विश्वास मेरे में।
0: when you stop being the center of your own world and when you realize that you're part of a bigger community, I think it's a great feeling to be part of something bigger than yourself. So I think that's what I felt.
15: कबीर के शब्द और सुर में डूबने के लिए लोग हजारों मील की दूरी तय करने के लिए तैयार रहते हैं।
1: अरे लाली देखन में गई तुम्हें हो गई ला।
15: लेकिन इससे पहले कबीर की चोट लगती है। ये चोट ऐसी है जिससे लगने पर आनंद का अनुभव होता है।

0: चोट शब्द की चोट, जिसको कहते हैं हम सबद, सबद की चोट, जिन जाना तिन माना है भाई। तो जिसको लग गई वो लग गई, लागी होए सो जाने हो सबद की।
1: कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर हैं। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए।
2: संत कबीर को ढूंढने निकले तो पहुंचे काशी, काशी जिसे बनारस या वाराणसी कहते हैं।

0: कबीर ने कहा था, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, चिन्हन मोर ज्ञानी, यानी तुम ब्राह्मण हो मैं काशी का जुलाहा हूँ, मेरे ज्ञान को पहचानो।
1: ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं भरत।
0: इससे ये बात साफ होती है कि काशी में कबीर पले बढ़े, काशी ही उनकी कर्मभूमि थी।
1: ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे।
2: बनारस केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, बनारस बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और जैसे आज आप पश्चिम एशिया कहते हैं या दक्षिण एशिया या इवन दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के हैं कि वहाँ तक के व्यापारी बनारस आते थे कारोबार के सिलसिले में। कबीर बनारस के थे। बनारस अपने समय का एक कॉस्मोपॉलिटन नगर था। वहाँ तमाम तरह की भाषाएं बोलने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा, तमाम तरह के धार्मिक मतों को मानने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा।
0: काशी के पास लहरतारा तालाब है जिसमें कमल के फूल उगा करते थे। कबीर से जुड़ी कहानियों में लहरतारा तालाब और कमल का जिक्र आता है। अब तालाब का एक हिस्सा ही बचा है और बाकी तालाब को पाट कर कबीर मठ बना दिया गया है। मठ के भीतर बने मंदिर की यह मूर्ति कबीर के शुरुआती जीवन के बारे में बताती है। इस मूर्ति में नवजात कबीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अब यहीं से कबीर को लेकर अलग अलग मान्यताओं की शुरुआत होती है। प्रचलित लोक मान्यताओं के मुताबिक कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। वो नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई। नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा दंपत्ति उस बालक को अपने घर उठा लाए और उन्होंने ही कबीर को पाला पोसा।
3: कुछ कहते हैं कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुए और वो फेंक गई और उन्होंने उठा लिया। जो इंसान ने शायद मेरा जहाँ तक ख्याल ये कहा कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, तो उनको ये तो मालूम था कि विधवा ब्राह्मण की कोख से हुआ, तो उनको ये मालूम नहीं था कि वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी, ये भी तो बता सकते थे लिखने वाले ने। लिखा लिखी में जो बात बनती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है।
0: कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वो अविगत अवतारी हैं।
4: कबीर साहब इस लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए गरीब साहब की एक वाणी आती है इसके संबंध में। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न के सब पीरन के पीर।
2: कबीर अवतार थे या कबीर कमल के पत्ते पर तैरते हुए मिले या कबीर किसी तरह अवतरित हुए। देखिए इस बात को हम समझें कि ये कहानियाँ ऐतिहासिक तथ्य की व्यंजना उतनी नहीं करती जितनी की एक सांस्कृतिक सोच की या किसी व्यक्ति से जो आप उम्मीद करते हैं उसकी।
1: ए जी पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात।
0: कबीर के जन्म से जुड़ी तमाम बहस अपनी जगह मौजूद है। कहीं कहीं इस बात का जिक्र आता है कि कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे, वो मुसलमान थे या हिंदू, तुर्क थे या सनातनी। ये सवाल कबीर के लिए बेमानी है, लेकिन समाज में क्या चल रहा था और क्या चलता आ रहा था इसको लेकर कबीर किसी को भी छोड़ने वाले नहीं थे।
5: हिंदू जो पंडित थे उनसे कहा, पांडे तुम निपुण कसाई, तुम जो हो पांडे जी जो संभवतः मेरे जैसे कोई ब्राह्मण रहे होंगे, उनको संबोधित करते हुए कहा कि तुम तो निपुण कसाई हो। ये कहने की हिम्मत 15वीं 16वीं शताब्दी में सनातन धर्म की राजधानी बनारस में एक जुलाहा करता है, इसको जरा ध्यान में रखिए। ये पंडित नहीं है।
6: कबीर जिस युग में हुए उसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं। ये वो काल था जब राजनीति में मुसलमान सामंत यानी छोटे राजा खुद को स्थापित कर रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर लगभग 200 साल से मुसलमान सुल्तानों का राज चला रहा था। इस्लाम खुद एक संगठित संप्रदाय था जो तब के समाज में ब्राह्मणों के बोलबाले और उससे जुड़ी जात पात को चुनौती दे रहा था, चैलेंज कर रहा था। कहने का मतलब ये कि समाज में खूब उथल पुथल थी।
2: आप उन्हें तुर्क कहिए या इस्लामी कहिए, उन शासकों के आने के साथ जाहिर है कि आक्रामक रूप से उनमें से बहुत से शासक आए, आक्रमण के साथ शुरुआत हुई, तो उसकी वजह से समाज में एक आरंभिक तौर पर तनाव का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। कबीर की अपनी ही पंक्ति है, हिंदू कहे राम हमारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम ना काहू जाना। इसका मतलब ये कि धार्मिक पहचान या धार्मिक विश्वास के आधार पर संघर्ष की भी स्थिति वहाँ बनी।

0: कोई। काशी इन बदलावों से अछूता रहा हो ऐसा नहीं है। यह है काशी के बीचों बीच कबीर चौक। मान्यता है कि यहीं कबीर का लालन पालन करने वाले नीरू और नीमा की झोपड़ी हुआ करती थी।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

कबीर के जमाने में ताने बाने की मध्यम आवाज के बीच नीरो नीमा के घर कबीर नाम की गूंज रहती थी। कबीर एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है महान। आमतौर पर यह माना जाता है कि नीरू नीमा मेहनतकश गरीब जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। तब मुसलमान बुनकरों को जुलाहा कहा।

0: कबीर जब बड़े हो रहे थे तब के हालात की आज सिर्फ कल्पना ही हो सकती है। हालात तो खराब थे ही, उस पर से कबीर के तेवर ने मुमकिन है कबीर और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी होंगी। हिंदी के कथाकार और नाटककार भीष्म साहनी ने अपने मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में तब के हालात की तस्वीर खींची है।
1: अरे क्या बात है, बहुत ही जल्दी बहुरे बाजार से। अरे अरे हमार कबीरवा मिला रहा, उकरा कोनो माल उल बिका कि नहीं। अरे सबेरवा से घर से निकला है,
2: ए माल तोहरे है ना, वही दिए है।
1: कबीर, अरे कबीर तोहे काहे माल दिया, वो तो इके लेके बेचे खातिर गया रहा बाजार में।
2: अरे कह रहे घर पहुंचा देना, और एक संदेशा भी दिए है कि शाम तक घर आ जाएंगे। हाँ
1: अरे कहाँ मिला रहा तो के?
2: कोतवाली बाजार के पास खड़ा रहे, बहुत मजमा भी रहे वहां।
1: का? फिर से कौन?
2: अरे हम सर्राफा बाजार से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, वहीं देखा काफी मजमा इकट्ठा किए रहे वो।
1: का कर रहा था?
2: अरे वही बकबक झकझक, कुछ लोग समझ लेते हैं सह लेते हैं और कुछ लोग नहीं सह पाते हैं। हाँ
1: अरे छुपा काहे रहे हो हमसे, सच सच बताओ ना कि वो कहा क्या।
2: अरे बड़े महंत की झाकी सवारी निकल रही रहे, और वहां महंत के आदमी एक लौंडे को डंडे से मार रहे, और कबीर बीच में कूद पड़ा और वो लौंडे को छोड़ के कबीर पे पिल पड़े। और कुछ देर पहले वो एक बोलवी से में उलझ रहा है, क्या कहत रहा है वो। अरे अरे का तुम तो जाना तो कौन सा युग जमाना आएगा।
1: लो सुन लो अपने पेटुआ की करतूत।
2: अच्छा नूर भैया हम चले थे।
0: कबीर ने जो समाज में देखा उसमें तरह तरह की विषमताएं थी, कौन किस जाति में जन्मा है वही भाग्य तय करता था। व्यक्ति के बड़े या छोटे होने का मापदंड उसका जन्म कुल ही रह गया था। ब्राह्मण चाहे जितना दुराचारी हो सामान्य था, दलित चाहे जितना भी सदाचारी हो नीच समझा जाता था। कबीर ने इस आधार को नाकार दिया। कबीर ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, यानी ब्राह्मणों को सीधी चुनौती।

0: पंडित जी, ऐसे नहाए कि का लाभ जो मन का मैल ही न जाए। क्यों तो मछली जल में सदा ही पड़ी रहती है, पर धोने से का बास चली जाती है।
1: अरे जुलाहे, तुझे क्या पता शुद्ध होना और दूरी रहना? कहीं तुम्हारी परछाई पड़ गई तो हमें दोबारा नहाना पड़ेगा।
0: पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एकौ छीट। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
2: कबीर यही नहीं रुके, बोले कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। काशी उस समय भारत का हृदय थी, सब धर्म के अपने अपने मठ थे, वहां ठाव ठाव पर मंदिर थे, मस्जिदें थी। कबीर के पास कुछ नहीं था, केवल शब्द थे। और जब शब्द ऐसे हों, बोलन हारा तुरक न हिंदू, यानी ऊपर वाला न हिंदू है न मुसलमान। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, बातों ये चक्की भली पीस खाए संसार। या कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। काशी में बैठकर 14वीं शताब्दी में ऐसे निडर दोहे बोल बोलने वाला कबीर अक्सर गुरु की महिमा गाते थे। कबीर के गुरु कौन थे? निडरता की ये सीख उन तक पहुंची कैसे?
3: काशी में जिस समय कबीर की वाणियों ने हड़कंप पैदा करना शुरू किया, उस समय वहां स्वामी रामानंद की बड़ी पूज थी। स्वामी रामानंद दक्षिण भारत से काशी आए थे। स्वामी रामानंद के अनुसार भक्ति के पथ में जो आ गया उसके लिए जाति का बंधन व्यर्थ है। इस तरह सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। बड़ा छोटा भक्ति से होता है, जन्म से नहीं। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं, जिनमें कबीर की गिनती भी होती है। कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है, काशी में हम प्रकट भए हैं रामानंद चिताए।
2: एक बड़ा तबका है जो स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु मानता है, लेकिन स्वामी रामानंद कबीर के गुरु बने कैसे, या कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया कैसे, इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां दरअसल तब के समाज और कबीर के सामने की चुनौतियों की भी कहानी है।

0: कौन है?
1: जुलाहा है।
0: अरे देखता नहीं, कहाँ बड़ा आ रहा है, महाराज बैठे हुए हैं।
1: महाराज, ये दास आपका शिष्य बनने आया।
2: कौन है तू?
3: प्रभु कबीर।
2: कौन जात?
3: जुलाहा।
2: जो काम तू कर रहा है वही कर, वही काम तेरा धर्म है।
3: महाराज, आपकी शरण से कोई निराश नहीं लौटता। क्या राम सबका नहीं? क्या राम मेरा नहीं? क्या राम मेरा नहीं?
4: बाहर निकल।
3: अरे
4: निकल,
3: चलो चल, चल, चल।
4: क्या राम सबका नहीं? बाहर निकालो, चल।
3: अरे
4: बाहर निकालो, निकालो।
5: राम किनारा।
6: ये काशी का पंच गंगा घाट है। पंच गंगा घाट स्वामी रामानंद के आश्रम में हुए अपमान की अगली कड़ी का साक्षी है। रोज सुबह इसी घाट पर स्वामी रामानंद स्नान करने आते थे। कबीर उसी घाट पर पहुंचकर उसकी सीढ़ियों पर लेट गए।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
9: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
10: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
15: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
16: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
15: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
16: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
15: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
16: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
17: राम राम राम राम राम राम। कौन कौन?
18: राम राम।
17: कबीर,
18: मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया।
17: कबीर कबीर
18: कबीर,
17: तू जीत गया कबीर। तूने मुझे अभिमान, अन्याय तथा पाप के बंधनों से मुक्त कर दिया। मैं तो अंधा हो गया था, सारा ब्रह्मांड राम है, सारा ब्रह्मांड राम है। ये भेदभाव तो मनुष्य के बनाए हुए हैं वत्स, उसके लिए तो सब बराबर है। वही राम तुम हो, वही गंगा है, और राम सबका
19: पहले उन्होंने कबीर जैसे स्वामी रामानंद जी तिलक करते हैं कंठी माला पहन करके जब निकले तो सबसे पहले उनकी माँ ने देखी, तो कहा कि तो हिंदू मुड़ियों का काम है, मतलब हिंदू सन्यासियों का काम है, बेटा तुम क्यों धारण किया? तो कहा कि स्वामी रामानंद ने दीक्षा दे दी, तो फैल गया गांव में।
6: कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया, ये कहानी प्रचलित है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीर निगुरा थे, यानी उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर ने एक जगह कहा है, आपै गुरु आपै चेला। इसका अर्थ ये निकाला गया है कि गुरु से उनका एकात्म हो गया है, गुरु और उनमें फर्क नहीं है।
20: कबीर ने तो गुरु शरीर को माना ही नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि ये सब गुरु हैं हद के, और बेहद के गुरु नहीं, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में आए, अनुभव ही आपका गुरु है।
6: कबीर को मानने वालों की एक दूसरी परंपराओं के मुताबिक उन्होंने वैष्णव पीताम्बर पीर को अपना गुरु बनाया था। इस मत के मुताबिक कबीर उनकी कुटिया पर सत्संग के लिए जाते थे और उसे वो हज करना बताते थे। वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मानते थे, जबकि एक और परंपरा के मुताबिक कबीर को शेख तकी का शिष्य बताया गया है। वर्ष में आगे देखेंगे।
0: ये जुलाहा कहा था, दिन भर रोजा रहा था, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई?
21: बता तू कौन मजहब मानता है?
22: कह कबीर त दोनों भूले, रामहू के नहू ना पाया, वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया।
6: भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
23: गुरु थे नहीं थे, थे तो कौन थे? इन सवालों को यहीं छोड़ते हैं। इतना तय माना जाता है कि कबीर ने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्हें कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उर्जाई रे। जो कहा डंके की चोट पर कहा।

इसे कबीर और उनके साथियों ने समझ लिया था। कहा जाता है कि कबीर सत्संग किया करते थे जिसमें समाज के दबे कुचले शामिल होते थे। कबीर जहां जहां जाते वहां मजमा लग जाता था। आज कबीर के जीवन से जुड़ी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों में वो हमेशा मौजूद रहे हैं, हमारी बोलचाल में, हमारी

0: भारत जिन तत्वों को मिलाकर बना है उनमें से एक तत्व को हम कबीर तत्व कह सकते हैं। इस अर्थ में कि वो जो दी हुई दुनिया है, जो दिया हुआ ढांचा है, उसको मानने को तैयार नहीं है। जो चित्त वो कबीर चित्त है।
1: इन्हीं जन श्रुतियों के मुताबिक पंडित और मौलवियों से उनकी लगातार टक्कर रहती थी। कबीर के जीवन पर आधारित उपन्यास लोई का ताना में ऐसे ही एक प्रकरण का जिक्र आता है।

0: सुने हैं तुम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो।
1: ये हमको भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं।
2: नहीं भाई, ये जुलाहा कहा था दिन भर रोजा रहा था, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। ये का हिंदू वाली बात ना हुई
0: तो तुमने ही कहा था।
3: तो क्या बेकसूर जानवर का हिफाजत करना आदमी को हिंदू बना देता है?
2: बाकी हिंदू तो गाय नहीं खाते।
3: ना खाएं?
0: तो तू वैष्णव है?
3: नहीं।
0: तो फिर क्या है तू? तो तू अल्लाह को भी नहीं मानता है?
3: नहीं।
0: फिर सुना तुम सबने, ये ना अपने को हिंदू कहता है ना बौद्ध, पर मुसलमान की बुराई करता है। काजी के पास चलो।
2: मजाल तो देखिए भाई, ये सब काफिर हैं।
0: चला है तू आग में हाथ डाल रहा है।
1: कैसे मुल्ला साहब?
0: बता तू कौन मजहब मानता है?
3: तुम भूले हुए हो। अगर भगवान ने तुम्हें अलग अलग सचमुच बनाया होता, हिंदू और मुसलमान को जन्म से अलग किया होता, तो मैं झूठा। बताओ दुई जगदीश कहां ते आए, कहू कोने भरमाया, अल्लाह राम करीम केशव हरी, हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े व कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे, कह कबीर त दोनों भूले, रामहू किनहू ना पाया, वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया, कहत कबीर सुनाए साथ।
4: अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से,

अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है।

कुमार जी का गाया हुआ बहुत अप्रतिम भजन है जो कबीर की वाणी है, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधु जी, उलट पवन चढ़ाऊंगा, निर्भय निर्गुण। तो निर्भय होकर निर्गुण की उपासना, निर्भय होकर, क्योंकि वो पहली शर्त है कबीर की कि निर्भय होना चाहिए। यदि आप डर गए तो कबीर को नहीं समझ पाएंगे।

0: हिंदू हो या मुसलमान, कबीर ने धर्म और उसके कर्मकांड का विरोध तो किया, लेकिन भक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ा। कबीर ने मानवीय प्रेम और ईश्वर में गहरी आस्था दिखाई। इस तरह से कबीर भारत में धर्म निरपेक्षता के पहले पैरोकार बने। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमान नहीं, मानवीय प्रेम सबसे ऊपर है।
1: मैं तो तेरे पास में, मैं तो सांसों की सांस में, तू मुझे कहां खोज रहा है बंदे। तो ये अपने आप में न सिर्फ कविता में क्रांति है, ये तो अध्यात्म में क्रांति है। और इन दोनों में एक तरह का जनतांत्रिकीकरण है कि हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है, और उसको ईश्वर तक जाने के लिए किसी ब्राह्मण का और किसी अनुष्ठान का और किसी यज्ञ का और वेद पुराण का और पुराण किताब का इसका सहारा लेने की

0: 10-11 साल के फैमिली में अपहीवल हो रहा था, पेरेंट्स के का सेपरेशन चल रहा था, कुछ तकलीफें थी, कुछ मूवमेंट चल रहे थे, जो भी है, मेरी जो गवर्नेंस थी वो नेपाल की थी, आया मेरे को संभालती थी वो। तो एक दिन सुना मैंने कोई आया था कोई, तो मैं जाके उससे पूछा।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: दुख में सुमिरन सब करें। सुमिरन का क्या मतलब होता है? तो उसने बताया, हमने गले से माला निकाली, छोटे छोटे रुद्राक्ष जैसे माला थे, लेकिन ये जो है माला, इसमें भगवान का नाम होता है। एक दफा बोलो भगवान, भगवान का नाम।
8: दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना।
0: I understood that. मैं बड़ी तकलीफ से उस वक्त निकल रहा था और मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल की उम्र, मगर मैं समझ रहा था कि मैं अकेला हूँ और ये मुझे खुद बर्दाश्त करना है। उस वक्त मैं उनको डिस्कवर किया।
8: सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को।
0: स्पेसिफिकली इसलिए मुझे कबीर बहुत पसंद है क्योंकि ये इस तरह
9: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो।
10: मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
11: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
12: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
11: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
13: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
11: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
14: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितम्बर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण शो पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
15: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
11: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
12: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
11: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
16: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
17: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेकडाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
16: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
18: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
16: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
11: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
19: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
11: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
20: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने के जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत। 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
11: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-46652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052।

0: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: दो शिक्षकों को बर्खास्त किया गया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले 25,000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा के तहत आज से प्रत्येक पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में पात्र परिवार वास भूमि के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही 22 सितंबर से अंचल कार्यालयों में भी प्रतिदिन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और आवेदकों को आवेदन की पावती तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पात्र लोगों से अपने नजदीकी शिविर या अंचल कार्यालय में आवेदन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगाने वाले 25,000 लाभार्थियों को आज वित्तीय सहायता दी जाएगी। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लाभार्थियों के लिए सहायता राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान 9 सोलर रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे पहले वे सेवा सेतु कैंप का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में बने उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरिया और सीमेंट सहित बिहार में निर्मित उत्पादों की कम से कम 30% खरीद सुनिश्चित की जाएगी और इसे टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पटना में ग्राम संसद बिहार चैप्टर मुखिया संवाद कार्यक्रम में ये घोषणा की।
1: मैं एक कानून बना रहा हूं जो अगले कुछ दिनों में आपको दिखेगा। जितनी भी इंडस्ट्री का सामान आप खरीदते हैं, चाहे वो छड़ हो, सीमेंट हो, उसका 30% हिस्सा बिहार की धरती पर जो बनता है उसी को खरीदना पड़ेगा, तभी तो उद्योग यहां लगेंगे। और इसको सभी टेंडर प्रक्रिया में लाऊंगा। नीचे पंचायत से लेकर राज्य स्तर, भारत सरकार की जो भी योजना बिहार में काम करेगा, इस कानून के तहत काम करना पड़ेगा।
0: जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के वायरल वीडियो मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग की अध्यक्ष विजया राठकर ने सभी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी, समयबद्ध जांच तथा पीड़ितों को सुरक्षा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए भी कार्रवाई को कहा गया है। इस बीच इस मामले में पुलिस ने 7 से 8 आरोपियों की पहचान की है। इनमें 3 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था KS अनुपम ने बताया कि जमुई थाने में BNS और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। SDPO दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। साथ ही CID के कमजोर वर्ग की टीम भी मामले की अलग से जांच कर रही है।
2: लेडी ASI की लड़की के घर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। इसके बाद जमी पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकते हैं। तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था। जमुई थाना कांड संख्या 428 सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई है।
0: अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि वीडियो को टेक डाउन करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से वीडियो प्रचारित प्रसारित नहीं करने की भी अपील की।
2: इतना वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग टेक डाउन नोटिसेस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेक डाउन कर लिए और जारी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ। इन लोग का भी जो नाबालिग बच्चों का वीडियो चलाने के लिए जो लोग ने किए थे, उसमें

0: 33 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 1415 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। मेरा अनुरोध है कि ऐसा बहुत संवेदनशील मामला में एवरीबडी इज बॉन्ड अंडर लॉ, चेहरा देख के उनको आइडेंटिफाई करके ऐसा सर्कुलेट नहीं करना चाहिए था।
1: बक्सर के टुमड़ाव स्थित एक मध्य विद्यालय की छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में सहायक शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद और अध्यापक अरविंद कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों को भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार छात्राओं से दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने और ऑडियो के माध्यम से धमकी देने के आरोप जांच में सही पाए गए। इसके बाद दोनों शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय की गई। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए जदयू विधानमंडल दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक माह के वेतन की राशि दी है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा सहित जदयू के विधानमंडल सदस्यों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर 17,06,000 रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपा। इधर बिहार राज्य भंडार निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए और बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी है। दोनों संस्थाओं की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सहयोग राशि के चेक सौंपे गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि सिम के दुरुपयोग या IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर 3 वर्ष तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूरसंचार विभाग ने छत्तीसगढ़ में सिम फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद यह चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से सिम किसी अन्य को नहीं देने और फर्जी दस्तावेजों पर सिम नहीं लेने की अपील की है। नागरिक संचार साथी पोर्टल और ऐप के जरिए अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। बिहार के 4 फिल्म कर्मियों को भी राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। एक रिपोर्ट।
1: जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म भक्षक में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। गोपालगंज के रहने वाले निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा और निर्माता मिंती मिश्रा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काकोरी को सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक पुनर्निर्माण श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर के संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
0: दानापुर में अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हो गई है। सेना भर्ती मुख्यालय दानापुर की ओर से आयोजित यह रैली 6 अक्टूबर तक चांदमारी स्थित KLP मैदान में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अग्निवीर भर्ती रैली में 11,042 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें 257 महिला अभ्यर्थी हैं। बारिश और मैदान की स्थिति को देखते हुए इस बार अभ्यर्थियों की दौड़ सड़क पर कराई जा रही है। भर्ती निदेशक कर्नल बिंदु अग्निहोत्री ने बताया कि आज से 25 सितंबर तक पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के शॉर्टलिस्ट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी की भर्ती होगी। 26 से 29 सितंबर तक इन्हीं जिलों के अग्निवीर तकनीकी और कार्यालय सहायक स्टोरकीपर तकनीकी पदों के लिए भर्ती होगी। वहीं 30 सितंबर को अग्निवीर ट्रेड्समैन जबकि 1 अक्टूबर को झारखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। 2 और 3 अक्टूबर को बिहार के विभिन्न जिलों के लिए अग्निवीर क्लर्क की भर्ती होगी। 4 अक्टूबर को गया क्षेत्र के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। 5 अक्टूबर रिजर्व डे रखा गया है, जबकि 6 अक्टूबर को बिहार और झारखंड की महिला सैन्य पुलिस के लिए भर्ती रैली होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: राजेंद्र पुल समेत 5 रेलखंडों पर प्री और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण आज 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दानापुर मंडल के राजेंद्र पुल, हाथीदह जंक्शन अपर, टाल और रामपुर डुमरा तथा सोनपुर मंडल के दिनकर ग्राम सिमरिया जंक्शन पर होने वाले कार्य के चलते पटना, मोकामा, किउल, जयनगर, सहरसा, हावड़ा, आरा और बनारस के बीच चलने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। प्रदेश के सभी रेलखंडों का नए सिरे से सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। उच्च स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति ने इसकी मंजूरी दी है। राज्य के रेल पुलिस GRP और रेलवे सुरक्षा बल RPF संयुक्त रूप से यह ऑडिट करेंगे। ऑडिट के दौरान रेल पटरियों, पुल पुलियों और अन्य बुनियादी ढांचों की मैपिंग की जाएगी। रेलखंडों के आसपास प्राकृतिक और मानव जनित संभावित दुर्घटना क्षेत्रों का भी आकलन होगा। इसके आधार पर सुरक्षा और संरक्षा की नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज से गहरे अवताप में बदलने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज बांका, जमुई और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कल राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। 25 सितंबर को पटना, अरवल, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और नालंदा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मोतिहारी में 25 सितंबर को पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। गांधी मैदान के ऊपर लगभग 1 घंटे के इस प्रदर्शन में 9 हॉक MK-132 विमान विभिन्न करतब दिखाएंगे। पटना जंक्शन से रेल पुलिस ने महिला यात्रियों के गहने और पर्स चुराने वाले गिरोह की 8 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के गहने, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। अब अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, 3 डिसमिल जमीन के लिए पंचायतों में आज से शिविर। प्रभात खबर की सुर्खी है, पदकों की चौकड़ी से चमका भारत, शूटिंग में 3 और MMA में आया 1 पदक। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, बॉलीवुड को भाया बिहार, नई फिल्म नीति का बड़ा असर, दिसंबर से 15 फिल्मों की शूटिंग होगी, 100 करोड़ का निवेश। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राम मंदिर में 70 नहीं 105 बार चढ़ावा चोरी। आज अखबार ने लिखा है, बिहार में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में होगा 16,000 करोड़ का निवेश, मुख्यमंत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा के तहत आज से प्रत्येक पंचायत में हो रहा है विशेष शिविर का आयोजन। जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के वायरल वीडियो मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। बक्सर के डुमराव स्थित एक मध्य विद्यालय की छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले 25,000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: Now pick it up. Hello? Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते,
2: कैसे हैं मैडम जी?
1: मैं ठीक हूँ।
2: तबीयत ठीक है?
1: हाँ, तबीयत ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक है।
1: तो क्या कर रही हैं अभी?
2: फोन लगा रही आपके पास।
1: अच्छा,
2: बिजी बताते बताते अभी लगा।
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
2: गाना सुना दिल लगा लिया है तुमसे प्यार करके।
1: और गाना किसी को सुनाएंगी भी?
2: आपको जितना रेडियो रूम जी मैनेजर सकेगा दो सके।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
2: नेहा बोल रहे हैं भोरे से।
1: नेहा जी?
2: जी जी।
1: अरे बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई।
2: हाँ, तो फोन नहीं लगता है, यहाँ कभी लगता है तो मनोरमा जी रिकॉर्डिंग करते हैं।
1: अच्छा जी, नेहा जी तो ठीक है ना?
2: जी मैडम जी ठीक है।
1: और उसमें तो आप शायद कॉल करती थी ना, योर वॉइस वाले में?
2: हाँ करती हूँ।
1: अभी करती है कि नहीं?
2: अभी नहीं करती है, 10 दिन से फोन नहीं करती है, रेडियो बिगड़ गया है ना।
1: वही तो बोल रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं मेरे से बात हुआ। चलिए फिर ठीक है, गाना आपका प्ले करते हैं।
2: जी मैडम जी, नमस्ते।
1: सुनते रहिए रेडियो रूम जिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल है
1: जी? मेरा तो कुछ, आप बताइए आपका क्या हाल है?
0: हमारा भी बढ़िया है। नाश्ता पानी हो गया?
1: जी मेरा हो गया है।
0: रामानंद तारी खेड़िया से बोल रहे हैं। कव्वाली
1: बता दीजिए। कौन
0: कव्वाली गाने का बोल? ये मोमिनो सुनो ये करामत नमाज थी।
1: कौन सा?
0: मोमिनो सुनो ये करामत नमाज थी,
1: ये
0: जन्नत जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाजी।
1: बोल है ये फिल्म का गाना है?
0: फिल्म का नहीं, कव्वाली है।
1: अच्छा, तो अगर फिल्म का कोई बताते तो मैं बजा देती।
0: तो फिल्म का गाना अगर बजाना है तो फिर कुल्ली फिल्म का गाना बजा दीजिए।
1: उसमें कव्वाली है?
0: कव्वाली तो है
1: उस मूवी में।
0: हाँ, उस मूवी में कव्वाली है जो लास्ट में गाना है ना, बजने वालों से मेरा सलाम कहना।
1: अच्छा,
0: ये गाना बजा दीजिएगा।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: और हम आप जितने रेडियो रंजीम सुनने वाले छोटा है सब सुनवाएंगे।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं। रेडियो रंजीम 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
4: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी नमस्कार मैडम जी।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
13: जी कैसे हैं आप?
10: बढ़िया है, बारिश हो रही है हमारे इधर, आपके इधर हो रही है क्या?
13: नहीं मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रहा है।
10: हमारे यहाँ तो गिर रहा है, सुबह से ही गिर रहा है और अभी भी गिर रहा है।
13: अच्छा जी, आपके यहाँ बहुत बारिश होता है ना?
10: जी जी जी,
13: जब भी फोन करते हैं तो बताते हैं आप हमेशा कि हाँ यहाँ बारिश हो रहा है।
10: बारिश हो गया है और जो हमारे कुएं हैं वो फुल हो चुके हैं, उनमें से पानी ऊपर से निकल रहा है।
13: अच्छा
10: जी, हमारे इधर ज्यादा कुएं होते हैं, आपके उधर क्या है, ट्यूबवेल है कि तालाब है?
13: हमारे यहाँ तो तालाब है, नदी है, यही है।
10: हमारे इधर नदी नहीं है, ये पार्वती मैया है वो कभी भराती नहीं है, और कुएं हैं, कुएं तो खुले हैं ऊपर तक, और नल में पानी चल रहा है ऑटोमेटिक, इतना पानी का जलस्तर बढ़ गया है।
13: अच्छा जी
10: जी, जो हैंडपंप होते हैं उनमें से पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है,
13: नहीं बढ़ गया है।
10: जी जी, तो एक डैम है, डैम भी फुल हो गया है हमारे इधर का।
13: चलिए तो ठीक ही है
10: जी।
13: बाढ़ वगैरह का समस्या तो नहीं है ना?
10: नहीं नहीं, हमारे इधर बाढ़ नहीं आएगा, हमारा आखिरी एंड ही होगा जब हम एंड होंगे, बाकी हम बीच सेंटर में है।
13: अच्छा जी
10: जी, किधर से भी आएगी मौत तो हम बीचों में, बीचों में बीच है।
13: अच्छा
10: जी, उधर उधर जैसे नेपाल में होगा, बेचारे नेपाल में बहुत सारे लोग जान गंवा दी उन्होंने, लेकिन इधर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और इधर हमारे इधर तालाब भी नहीं है, डैम भी नहीं है, एक पार्वती है वो भी कभी भराती नहीं है, वो तो नीचाई में है वो भी, तो हमें जान का खतरा नहीं है, जो तो प्राकृतिक रूप से कभी आपदा आएगी जब भी है, बाकी पानी से हमें कोई दिक्कत नहीं है।
13: चलिए सब तो बढ़िया है
10: जी।
13: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
10: ये पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम,
13: और गाने की बोल?
10: और गाने के बोल है पहली पहली बार मोहब्बत, ये कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं।
13: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे?
10: जी ये गाना डेडिकेट रहेगा भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, और गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ जी है, और गजराज सिंह लोधी है।
13: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
10: अब आएगा, आज ही आ जाएगा ना?
13: नहीं आज तो नहीं आएगा
10: जी,
13: कल आएगा नहीं तो परसों आएगा।
10: ठीक है
13: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एंट्री में।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजरा बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, कैसी हैं?
1: अच्छी हैं, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है
1: जी।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो बहुत पहले से कॉल लगा रहे हैं, कॉल ही नहीं लग रहा था। आज बहुत बार ट्राई किए हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसके पिछले बार लगाए थे इसी दिन को, तो 3 बार में ही लग गया। कम से कम 100 बार लगाए हैं तब जाके लगा है। और सब ठीक है ना?
0: हाँ, और सब ठीक है।
1: ठीक है, तो आज भोजपुरी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: गाने की बोल बता दीजिए।
1: छाने छाने बदले तारो मिजाज राजा, शिल्पी राज की आवाज में है ना। और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हसबेंड जी को और कुछ रेडियो दोस्त है, हिना जी है, सफार जी है, सलेहा जी है, शाहजहाँ जी है, ब्यूटी परवीन है और रुबीना नाथ, इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुडा, साहिल राजा और बाकी जितने लोग जाने पहचानने वाले इन सभी।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4
11: प्रणाम।
10: हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो की सुनवाई।
11: ठीक है बनी,
10: हम पहले ही नाम लेके बोलने हैं कि कंफ्यूज ना हो क्या?
11: कंफ्यूज कल डबलिंग के चलते कंफ्यूज हो गए पड़ो है।
10: अच्छा,
11: हम पूरा दिन भर ये सोचे नहीं कैसे कंफ्यूज हो गई, ये सोचे वाली बात।
10: अब गाना कैसे लगुए?
11: गाना तो एकदम मस्त लगुए, गाना में तो कोनो कमी ना रहे, हम तो ये ये सोचे कि हमार चॉइस और फरमाइश राहुल कैसे एक हो गए समझ में ना आए।
10: ना ना राहुल सुन गाना बानो अपन बहुत अच्छा
11: लगेगा। पता ना ऊपर के मन कहते नहीं अच्छा लगेगा
10: की अच्छा लगेगा तभी बजाऊंगी ऐसा थोड़ी गाना अच्छा लगे समझती
11: हूँ।
10: लोग तो कहले रही अपना पसंद के बजाओ अच्छा लगे तो मुझे बजती
11: हूँ। तो बात रहे चॉइस हमार रही फरमाइश राहुल रही सब दिन तो रोड लोग सुनबे करे नहीं सर कहो अब रोड लोग से सुने के चाहिए ना
10: सब
11: वहाँ कहा बनी
10: अपना काम में लागल बनी।
11: कल परसों छुट्टी में रहनी का
10: कल तो आई रही तो योर भाई
11: परसों आ जाइल बनी की ना
10: हाँ आज बनी एकदम
11: चल फिर आज एगो फरमाइश
10: बता दी
11: आज रही खुशबू सिंह की आवाज में
10: और गाने के बोल
11: गाना के बोल रही ससुरा से निक नैहरवे के पानी
10: तो गुण में एकदम अलग अलग होला।
11: अच्छा हमारे देखिए हम हमारे फरमाइश कुछ अलग होला हम फरमाइश हम तो ऐसा फरमाइश दे देगी जब मिली ना से चली आशा ना पूरा विश्वास बा हमारे गाना पर याद है
10: और गाना के होगी सुना
11: हूँ बस तो सुना एक बार जितना हमारे नाम से जाने वाला लोग सबके हमारे नाम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से
10: रेडियो रूम से मैं कॉल के नहीं बहुत बहुत धन्यवाद
11: सुनाई तो घर ही

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: क्या
0: मेरा ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: मेरा भी बढ़िया है। उस समय से कॉल लगा रहे हैं, कॉल मेरे रिसीव नहीं कर रहे हैं आप।
0: अच्छा, अभी तो कॉल कटा, जस्ट तो आपका आया।
1: नहीं, खाली बिजी बिजी बता रहा था।
0: थोड़ा आज ज्यादा ही कॉल आ रहा है।
1: और मनोरमा दीदी कैसे हैं?
0: मनोरमा दीदी भी ठीक हैं,
1: तो उसका हाल बता दीजिए, कैसा है?
0: वो भी बहुत अच्छे हैं।
1: मौसम कैसा है गोपालगंज का? गरम गरम बनाती है खाना?
0: गरम गरम खाना ही चाहिए।
1: और सब बताइए। तो
0: और सब तो हम सबका ठीक है। साढ़े
1: का तो टाइम हो गया, कब चलेगा? जल्दी
0: 12 से तो बता दीजिए, जल्दी जल्दी कौन सा गाना सुनिएगा।
1: जल्दी बजा दीजिए, ये सॉन्ग बजा दीजिए। सिलफिला की आवाज में है भोजपुरी सॉन्ग, मारदा पके हो ताकि तगड़ा दल, यही सॉन्ग बजा दीजिए।
0: और गाना सुनिएगा।
1: डेडिकेट है सबसे पहले आपको, मनोरमा दीदी को, सोनू दीदी को, दिव्या दीदी को और पूरा रेडियो रिजन को और स्पेशल में कृष्ण दीदी को।
0: सुनाते हैं आपका।
1: कब बजेगा दीदी? शाम को भी कल?
0: मेरा आज नहीं बजेगा, आज मनोरमा जी का बजेगा जो छूटा हुआ है, और मेरा कल बजेगा और परसों बजेगा।
1: अच्छा, चलिए ठीक है।
0: आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो।
17: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 91.4 FM में।
17: नमस्ते दीदी।
16: नमस्ते,
17: क्या हाल है?
16: मेरा सब ठीक है, सुनने में आया है आपका तबीयत खराब हो।
17: हाँ, बुखार लगल बाटे।
16: अच्छा, कहे बुखार लग जाता रहुआ?
17: पता ना, ऐसा दिन में पता है कि बुखार लग जाये।
16: मौसम चेंज होता है, थोड़ा ख्याल रखो करी। रुआ तो अभी बनाओ तो नहीं गरम गरम।
17: हाँ बना दो नहीं गरम गरम। रुआ से क्या कल होता है
16: के बता सकता रहो, बताई ना
17: भाई बतेला है ना। मनोरमा दीदी कहाँ वाली?
16: वहाँ के नहीं वाली।
17: और सब ठीक बन?
16: बजा दी आज रोवा, कौन सा गाना सुने?
17: गाना बजा दी दोनों की भजपुरी।
16: कोनो भी आजकल कोनो भी सुन लेता नहीं, पसंद नहीं की बताओ।
17: दोनों तो गीते हैं, सुना दी कौन अपना पसंद से।
16: ना ये पारी रोवा।

0: बताइए अपना पसंद से।
1: मैं तो याद नहीं खेल रही, अपने पसंद से बजा दी कल, इतना सुंदर गीत बजा ले रहा है।
0: अच्छा तो बता दी कौन हीरो के सुने हम
1: बजा दी पांच सिंह टिकेट रही। सबसे पहले रघुआ के मनोरमा दीदी के जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग के और सोनी दीदी के और हमने ये सुने सुन।
0: चल ठीक बात, तो गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी क्या हाल चाल है
0: आपका? आप रेडियो रिमझिम का परिवार कह रहे हैं?
1: रेडियो रिमझिम के सभी टीम बहुत ही अच्छे हैं।
0: चलिए बढ़िया जाना चाहिए। और बताइए मौसम क्या है, बारिश होता है कि नहीं आ रहा?
1: अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रहा है।
0: रात में तो हमारे यहाँ तो बारिश हुआ है, अभी तो अभी ठीक है, अभी मौसम ठीक है, अभी तो निकला है।
1: और कौन?
0: आज जी जी जी
1: ठीक है। गाना बता दीजिए, आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: आज गाना सुना दीजिए, ये गलिया है तो बारा चाहे आना ना तो बारा, तो हम पढ़ लेती कि तेरे यहाँ कोई ना ऐसी करके करा है।
1: हाँ हाँ।
0: सुना दीजिए,
1: तो सुनवाना भी है।
0: सबसे तो पहले आपको रेडियो परिवार को और दोस्त में हो गया सिखाना से मामा साहब जी को, मैं जैसे उत्तम कुमार जी, राम ससुराज की बगह से, अर्जुन कला कलाम से, मेरे सोहनी दीपक दास, उदय भैन ठाकरे द्वारा मध्य प्रदेश से, जुमना शाह धर्मैया और दीपक दास, हमारे नाम से दीपक दास उदय भैन ठाकरे हमारे नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्तों विशेष तौर सुना दीजिए। रामचंद्र कुमार मुखिया, शंकर प्रसाद शंभू, पारा साहब कुशवाहा, पारा शर्मा, राजेंद्र यादव भारती, संत लाल गौतम को सुनाते हुए, मोहम्मद सलार अंसारी मझवलिया का विशेष उनको सुनाते हुए अभी विदा लेंगे। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, रेडियो रंजन में कॉल किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
10: नमस्ते मैडम,
9: 90.4 FM जी। नमस्ते,
10: अब उसी समय से मेहनत करते करते अभी लगा है।
9: अच्छा जी, बहुत ज्यादा देर से मेहनत कर रही हैं।
10: हाँ, वही वजह से कॉल करते हैं। तो अब टाइम तो खत्म हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है।
9: हाँ हाँ, बस एक मिनट।
10: हमको गाना सुनना है।
9: बताइए।
10: ये थी कृष्ण भगवान के शोहर सुनना है हम लोग का।
9: मूवी का कोई शोहर हो तो बता दीजिए, और एल्बम होगा तो नहीं बजा पाएंगे।

0: यही गाना सुनना है।
1: ओके जी, तो गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: अभी घर के लोग और आपकी सुनवाना है
1: जी। और आपका नाम?
0: मेरा नाम है सुमन कुमारी। मेरा एक अमन है भतीजा, और मेरे भाभी है, और मेरे बहन है, और मेरे एक भतीजी है, उसी को सुनाना है।
1: अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करेंगे।
0: आज बजाएंगे ना मैडम?
1: आज नहीं बजेगा, आज किसी और का प्रोग्राम चलेगा। मेरा कल चलेगा और परसों चलेगा।
0: अच्छा, बिहान चलेगा? चलिए ठीक है मैडम।

0: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 94 एफएम में।
0: के लिए दिल से धन्यवाद है भारती को। आप सब सुनाइए कैसे हैं
1: जी? हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं कुशवाहा बोल रहा हूँ, बलरामपुर भी चंपारण से।
1: जी जी।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर तो मौसम अभी ठीक है।
0: जी जी, हमारे यहाँ तो बहुत अधिक धूप निकला हुआ है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: धूप तो हल्का है इधर, ज्यादा नहीं
0: जी, लेकिन इधर बहुत अधिक है। ऐसा लग रहा है कि जून का माह चल रहा है वैसा। वैसा भी सही था। जो सब घर परिवार में अच्छा है?
1: जी जी, सब घर परिवार में सही है।
0: जी जी, अच्छा रही है।
1: तो
0: गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है दूध का स्वर।
1: ओके।
0: और गाने का बोल है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
0: जी, सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ। और दोस्त लोग संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज यादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, बबुल प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, और अभी भारती जी की प्रस्तुति का कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए आप गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए थोड़ा सा।
0: जी धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
9: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
12: नमस्ते मैम।
13: जी नमस्ते,
12: हम छावे से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद।
13: हाँ जी, क्या हाल चाल बा?
12: हाल चाल ठीक बा। विनोद भाई चालू है भाई?
13: हाँ
12: और भाई चालू रहे भाई?
13: ना अब जाते नहीं चालू करे।
12: अच्छा रहे हुआ काफी दिनों में।
13: हाँ हाँ,
12: गाना सुना दी।
13: बता दी कौन सा गाना?
12: हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने।
13: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनवाऊंगे
12: बात? जितना रेडियो सुनना सब कुछ सुनी रवा भाला मन सुने।
13: ना ना, हम तो बिल्कुल सुने नहीं, हम तो हाथी सुने। ठीक बात, अब गाना और प्ले करते नहीं, सुनते रहे रेडियो 90.4।
12: आखिरी कॉल हमारे।
13: हाँ
12: नमस्ते।

0: हेलो जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी,
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी, हम भी ठीक हैं।
1: ये काम है, आज हमारा गाना सुनने के बाद भौरव शर्मा के बहुत पुराने वो गाना है, ये करियावा गई ले परदेश सखी ओकर ससुरा से निक नहीं हटेगा। हेलो
0: जी, और गाना क्यों के सुनाऊं के बाद?
1: आज इतना लोग सुना था, सब कोई सुनी रघुओ सुने, हमारे मैडम बारी यही जाए वो सुने। हेलो,
0: तो चलिए और गाना प्ले करते नहीं, सुना चाहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: धन्यवाद।
0: ओके, गाना प्ले करते नहीं, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

जे हमरा घरे ले जाकर मलकिनी के दे दिया। लेकिन जब उस सामान घरे पहुंचेला मलकिनी के हाथ में तो खुश ना होके बल्कि बहुत दुखी होली। उनका ये बुझा जाला कि वो अभी आई है ना, यही से सामान भेजले बड़े।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझम 90.4 एफएम में।
12: कैसे मिलता है?
11: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: हमारे भी ठीक है। खाना खा लिए?
11: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए।
12: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
11: और सब तो ठीक है, बस सबको ही अपने अपने काम में लगे हैं।
12: हाँ, जुमा है।
11: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
12: गाना अपना पसंद से सुना चाहिए।
11: अपने से कोई भी?
12: हिंदी
11: गाना। हिंदी गाना आज आप नहीं बताइएगा,
12: अपना पसंद से सुना दीजिए।
11: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
12: मेरा भाई बता रहा है।
11: तो बता दीजिए।
13: दिल जले का गाना।
11: और दिल जले का कौन सा गाना?
13: शाम है दूंगा।
11: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
13: आपको और बहन हेलो सभी को।
11: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
13: ठीक है।
11: वैसे आपका नाम?
13: अरमान आलम।
11: जी, तो
13: कब तक सुनाइएगा मैम?
11: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
13: ठीक।
11: ओके, रेडियो रमझम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: थैंक यू।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते।
1: कैसी हैं आप?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है?
0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ
1: बोल रहे हैं आप, पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल बताइए। अच्छा
1: मनीषा कुमारी कन्या कुंडल से।
0: जी हाँ, क्या हो रहा है मनीषा जी?
1: अभी तो रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: शांति नहीं बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो

0: बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डेब्यू रिमझिम 90.4 FM में।
9: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम गाना सुनना है मैम।
8: सुनाऊंगी, नाम भी बता दीजिए।
9: मेरा नाम गियासुद्दीन अहमद है, चौराहे से बोल रहे हैं गियासुद्दीन अहमद।
8: ओके ओके, और क्या हाल चाल है आपका?
9: अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआ है, अपना बता दीजिए।
8: जी हम सब भी ठीक है।
9: जी फैली का दुकान है हमारा, फैली चलता है चौराहे।
8: अच्छा जी,
9: जी
8: तो बढ़िया है।
9: जी
8: कौन सा गाना है आपको?
9: गाना सुनवा दीजिए सनम दे अल्लाह है करम करना, लीला है करम करना, परवरदिगार आलम के रहम करना।
8: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
9: जी और जितना रेडियो रंजीन में सुनने वाले लोग हैं सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं और आप लोग के भी।
8: ठीक है, आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
9: बहुत दिन के बाद कॉल किया है मैम।
8: जी
9: बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है, पहली बार बात हो रहा है, थोड़ा सुनवा दीजिए।
8: जी जी बिल्कुल सुनवाएंगे। मेरा ये वाला कॉल आपको कल बजेगा और परसों बजेगा।
9: तो ठीक है, थोड़ा लास्ट में बजाइए कॉल जो हम सुन सके। ठीक है,
8: ओके
9: जी, ठीक है, चलिए नमस्ते
8: नमस्ते।

0: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी मैम धन्यवाद। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
1: जी क्या हो रहा है अभी?
0: बस कुछ नहीं मैम, बस फोन ट्राई कर रहे थे और फोन भी लग गए मैम। और मैम वहाँ का मौसम के क्या हाल चाल है? वो बात है
1: उधर का मौसम तो अभी थोड़ा बढ़िया है।
0: अभी बारिश वारिश नहीं हुआ मैम? हमारे यहाँ तो बारिश चालू मैम काम।
1: नहीं अभी तो बारिश नहीं हुआ है, रात को हल्का मतलब थोड़ा बहुत बूंदे गिर रही थी।
0: जी जी जी जी। तो आज फरमाइश है फिल्म मुस्कान और गाने से बोला जाने मन से सबसे और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगिंग जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: ओके मैम,
1: थोड़ा सा
0: धन्यवाद मैम,
1: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे समय 9:25 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप भी पुराने गाने पसंद करते हैं तो आप भी फरमाएं। मेरा नंबर है 72 77 16 65 96, यानी कार्यक्रम का नंबर 72 77 16 65 96 है। इस पर टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है और फिर किसी को सुनवाना चाहते हैं तो सुनवा सकते हैं। हाँ, लेकिन जानते पहचानते हैं उन्हीं व्यक्ति का नाम देंगे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल कुछ मैसेज, पहला मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भी सोच से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से। कहते हैं प्यार मत कर वफा के वादे, मैंने अक्सर रिश्ते टूटे देखे हैं, मोहब्बत की कसम खाने वालों को मजबूरी के बहाने ढूंढते देखे हैं। मत सिखा मुझे मोहब्बत करना, मैंने अक्सर सच्ची मोहब्बत करने वालों को बिछड़ते देखे हैं। बिल्कुल प्यारा लाइन और एकदम क्या बोलते हैं, जो ज़माने चल रहे हैं उस ज़माने के अनुसार आपने लाइन पेश की है, अच्छा लगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मधुसरिया से राजू कुमार यादव, कहते हैं सॉन्ग सुनना है, कागज़ कलम दुआत लाल लिख दूँ दिल तेरे नाम कर। सुनाना चाहता हूँ मेरे को जानने पहचानने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सिकंदर कुमार जुड़े हुए हैं काकड़कुंड से और कहते हैं कि का हाल बा, एकदम बढ़िया बा, आपन बताएं कि कैसन बानी। और फिर कहते हैं कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है, छूले छूले आ मुझे छूले, महानता मूवी से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल बन रहे हमारे साथ और यहाँ पे राजू जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब भी सुन रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 72 77 16 65 96 पे। फिलहाल हम गाने के साथ इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो 90.4 FM पे।

94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है। फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पर आगे कुछ मैसेज पहुँचे हैं तो मैसेज देखा जाए। और आगे मैसेज लिखा गया है कि हाय हेलो सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे ऑल लिस्नर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। आपकी गाने की फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल नाइस सॉन्ग। और इस मैसेज को करते हैं सिकंदर जी, बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज और फिर से रिपीट हुआ, निशा भारती जी आप बने रहे हमारे साथ और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज हम गाने को प्ले करते हैं सिकंदर जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचे हुए तो हम प्ले करते हैं महानता मूवी से, और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमछीम 94.4 FM पे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
9: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमछीम 94.4 FM पे सोशल लाइस में इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है, हेलो भैया गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, मुझे गाना सुनना है बेटुआ तो हार गुर हुई हो, डेडिकेट है माय डियर हबी को और सभी लिसनर को। और इस मैसेज को करती हैं सजदा अंसारी मीरगंज से, कहती हैं प्लीज़ भैया बजा दीजिएगा, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए कुछ श्रोतागण की, उनकी भी हाजिरी लगा लें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोना भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं ओपनिंग सॉन्ग सुपर से ऊपर दिलीप राम दिल्ली से, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारे यहाँ लाइट कट चुका है और हम गाना नहीं सुन पा रहे हैं सर, फिर भी सॉन्ग बजा रहे थे इसलिए दिल से शुक्रिया। ओहो तो बड़ी तकलीफ़ हुई होगी, चलिए आप किससे सुनते हैं ये बता दीजिए, ऐप से या रेडियो FM के माध्यम से। आगे मैसेज पहुँचे हुए लिखा गया है कि नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज से, गाना सांसों की माला जपते जपते, स्वागत है आपका भी और ये गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्कार भैया जी, मैं जुल्ली कुमारी फ्रॉम मैरवा से, सर मुझे सॉन्ग सुनना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये सॉन्ग डी मिश्रा जी को सुनाना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि सुपर सॉन्ग वेरी नाइस, मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर मुझे भी सॉन्ग सुनना है कोई भी अपने पसंद से, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना पसंद बताएं क्योंकि कार्यक्रम है, कार्यक्रम आप लोग के लिए ही चलता है, वैसे हम सभी तो अपने पसंद से तो दिन भर सुनाते ही हैं आप लोगों को, कुछ समय आप लोगों को दिया गया है कि इस समय में आप अपने पसंद के गाने फरमाएं ताकि हम लोगों को भी सुनकर कुछ मज़ा आए कि आपकी पसंद बहुत अच्छी थी या अच्छा था, तो आप लोग भी अपना पसंद बताएं हम लोग भी सुने। मेरे श्रोतागण सभी प्यारे प्यारे हैं और गाने की फरमाइश करते हैं तो प्यारे लगते हैं, तो आप अपना पसंद बिल्कुल फरमाएं, हम भी सुनना चाहते हैं, हम सभी भी सुनना चाहते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम और सजदा अंसारी की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी जुड़ गए हैं, कल मेरा मैरिज एनिवर्सरी है और कल मैं आ रहा हूँ आपके जिले माता थावे माई के दरबार में मैडम जी के साथ दर्शन करने और आशीर्वाद लेने। जय माता दी। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। बिल्कुल आपका स्वागत है, गोपालगंज जिले में आए और माता रानी का दर्शन करें, पूजन करें और आशीर्वाद ले, हमेशा खुश रहे। और फिलहाल कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है, इस कार्यक्रम में बने रहें हम सब के साथ। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए लिखा गया है कि मैं डॉक्टर नाजीर अहमद, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने के फरमाइश करते हैं चल उड़ जा रहे पंछी, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल बने रहे आप भी हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई क्या मेरा मैसेज नहीं पहुंचा है, मैं ब्रिज बिहारी पांडे, तो बिल्कुल अभी मैसेज आपका पहुंचा हुआ है कुछ ही समय पहले, हमें लगता है कि 20-25 सेकेंड पहले मैसेज आपका पहुंचा है, तो आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहले से जो पहुँचे हुए इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। निशा भारती की, इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हमें तुमसे प्यार है, और सॉरी मुझे तुमसे मोहब्बत है, डेडिकेट करती हूँ आपको एंड सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, भारती मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर, बतरदे वाली, शिल्पी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, शाहिदा अंसारी एंड प्यारे प्यारे ऑलिस्टर को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: अवे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमछिम 9.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि उनकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहते हैं, शायद इसी को दुनिया में प्यार कहते हैं, काटने से भी जो ना कटे वक्त उसी को मोहब्बत में इंतजार कहते हैं। बिल्कुल, और सजदा अंसारी की गाने को लिखे हुए हैं कि सुपर शॉ। गाने की बोल थोड़ी सी गलती हो गई है, और चलिए कोई बात नहीं, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि मेरा बेस्ट सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू वेरी सो मच, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमछम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि हाय सर, मैं डॉक्टर नाजीर अहमद एट बखरौर जद्दी बरौली गोपालगंज से। तो बिल्कुल, आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गाने का बोल है रब दी कसम यारा, रब दी कसम, प्लीज़ बजा दीजिएगा। बिल्कुल बजाएंगे, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि रेडियो रेमछिम मुझे सॉन्ग सुनना है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मूवी का नाम है जीना, जीने की राह में। और इस मैसेज को करते हैं मंटू सिंह भूपुरवा से। तो बिल्कुल, आप भी बन रहे हैं हमारे साथ, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस गाने की फरमाइश करने वाले जुल्ली कुमारी फ्रॉम मैरवा से और गाने की फरमाइश करती हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको ऐसा।

रेडियो रेम छीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज हैं और कई मैसेज तो शामिल करने पड़ेंगे। और अगले गाने की फरमाइश हम बता दें, अगले गाने की फरमाइश प्ले करेंगे ब्रिज बिहारी पांडे जी। गाने की फरमाइश किए हुए राजेंद्र नगर बस स्टैंड गोपालगंज से। और

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96।

तो दोस्तों, जब तक आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना प्ले करूंगी। और हमारी तरफ से आप सभी के लिए प्यारा सा गाना है और गाने की बोल है कोई तुम सा नहीं और मूवी है क्रिस। तो बिना देर किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM में।

तो अभी आप लोग सुन रहे थे हमारी तरफ से क्रिश मूवी का एक प्यारा सा गाना, और गाने की बोल थी कोई तुम सा नहीं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हाय भारती दी, का हाल बा, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और सब बढ़िया बा, जरूर बताएं दी मनोरमा जी के का हाल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और मनोरमा जी के भी हाल ठीक बा और हमरो हाल ठीक बा वे। और यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, आज मेरा गाना सुनने के दिन है, न्यायपारा विरे जिला बालोद से प्रमोद कुमार साहू गाने के बोल भेजे हुए हैं, और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती मैम, हम भी शो से जुड़ गए हैं, और सिद्धार्थ पासवान बरौली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, मैं हंसराज राजस्थान जिला हनुमानगढ़, और कैसे हो भाई साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं नवाजिए, और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुंची हुई है सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार राधे राधे, हम भी शो से जुड़ गए हैं, रेडियो रिमझिम की टीम से जुड़ गए हैं, और सुनील कुशवाहा मैयर एमपी से जुड़े हुए हैं, और मैम खलनायक मूवी का गाना सुनना है, और गाने की बोल है चुल्ली के पीछे क्या है, और गाने का इंतज़ार कर रहे हैं, भजवा दीजिएगा मैम। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम।

0: माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुनील कुमार, सुनील कुशवाहा मैयर एमपी से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं दिल से धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि Hi, I am Raju Yadav from Sivan. I would like to listen to a song. और लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी, मैं भी हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं राजू यादव जी, सिवान से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नया टेलर शिवपुर, शिवराजपुर से जुड़े हुए हैं और भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके भी गाने को प्ले करते पर आपका तो दिन आज नहीं है, आपको सैटरडे को सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद, मैं यूपी देवरिया भट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी भी एक फरमाइश है। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, नमस्कार प्रणाम बा भारती जी, हम हूँ आगल वानी, हमरो हाजिर लगा दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी हाजिरी लग चुकल बा। और यहाँ अगला जो कि मैसेज पहुँचल बा हमारे पास जैसे कि लिखत आने की हाय मैम मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और तारा मती कुशवाहा कलगढ़ योगपुर से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके भी गाने को प्ले करूंगी पर उससे पहले जो कि हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है, आपका इंतज़ार हो रहा था मैम, नमस्ते भारती मैम, और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है और जय किशोर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी तरफ से खेसारी लाल की गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और इनका गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है तीन थान गहना और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे खेसारी लाल जी की आवाज़ में एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी तीन थान गहना। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैडम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे अगला मैसेज हमारे पास पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं करिश्मा जी लिख रही हैं सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम जी को नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह जी और साथ में जुड़े हुए हैं अवंतिका सिंह, अरिजीत सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और मैं रोहित देहरादून से। और लिख रहे हैं कि झूठ हम दर्द नहीं दी, हमने किसी को जिसके लिए कुछ करते हैं दिल से करते हैं, परखने वाले बहुत मिले मुझे, काश कोई समझने वाला मिल जाता। और ये बात तो आपकी सही है और जैसा सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम अपने ऑफिस में रेडियो रिमझिम चला रहे हैं, ऑफिस स्टाफ लोग बोल रहे हैं मेरा सॉन्ग प्ले नहीं हुआ, मैम मेरा गाना कब प्ले होगा? तो जी आपसे पहले एक दो गाने की फरमाइश आई हुई है, पहले उसे प्ले करूंगी उसके बाद आपके गाने को प्ले करूंगी। और मैसेज करने वाले हैं राजू यादव जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजा दीजिए। तो जी बिल्कुल आपके भी गाने को प्ले करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और सभी के गाने को तो एक साथ प्ले नहीं कर सकती। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं और लिख रही हैं नमस्ते कैसी हैं, मैं भी जुड़ चुकी हूँ दही भत्ता से उषा जुड़ी हुई और लिख रही है मुझे भी गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल आपके भी गाने को प्ले करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है सरफरोज अली जी की तरफ से और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए इनकी वॉइस को सुनते हैं और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैम, हम सरफरोज अली गोपालगंज से, हमको गाना सुनना है दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, यही वाला। मेरा एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:41 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को एक बात बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी अपने फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहां हमारे पास मैसेज पहुंच गया है सरफरोज अली जी की तरफ से, जो कि वॉइस के माध्यम से फीडबैक पहुंचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं क्या है इनकी फीडबैक मैसेज।
9: मैम, बहुत ज़्यादा देर कर दी गाना बजाने में और मेरा SMS भी शामिल नहीं कर रहे थे, ये गलत बात है कि नहीं बताइए? और गाना सुनाने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।
8: तो ऐसी बात नहीं है, और आपसे पहले कुछ लोगों की गाने की फरमाइश पहुंच चुकी थी, इसीलिए आपका गाना बजाने में थोड़ा लेट हुआ। और सभी के गाने जैसे जैसे आए होते हैं वैसे ही प्ले करती हूं, और थोड़ा बहुत कभी कभी एक दो इधर हो जाता है, तो उसके लिए ना आपको दिक्कत होना चाहिए और ना मुझे होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की 15,000 के नौकरी करके भतीजा के फीस भर रहा हूँ। भतीजा झोपड़ी को खोपड़ी पढ़ रहे हैं, और काफ़ी मजेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते भारती दी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, मैं अभी शर्मा बिहार छपरा से हूँ, और आपके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपसे एक छोटी सी फरमाइश है, तो बहुत बहुत स्वागत है और आपकी भी फरमाइश को पूरा करूँगी। पर उससे पहले एक दो जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है उन्हें पूरा कर दूँ, नहीं तो शिकायत करने में सब लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, और आ गई नहीं हमूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोने जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि बहुत खूब गाना चल रहा है रेडियो रमझिम में, और दिल की गाने की बोल है दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। तो जी काफी खूबसूरत गाना था और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं लिख रहे हैं। नमस्ते नमस्कार प्रणाम भारती मैम मनोरमा मैम और हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहल्ली पंजाब से और आज मेरे भी गाने की फरमाइश है और लिंक भेज दिया हूँ डेडिकेट ऑल फ्रेंड्स और भारती मैम आज मैं भी फरमाइश भेजा हूँ और लिख रहे हैं कि मैम हमार मैसेज कटोरी में कटोरी से तोप दिले वानी का तो ना ऐसा कोनो बात नहीं खेर और मैसेज भी शामिल कर दानी और इनकी तरफ से वॉइस भी पहुंचा हुआ है तो चलिए वॉइस भी सुनते हैं और जानते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: नमस्ते नमस्कार प्रणाम मनोरमा मैम है भारती मैम हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर तुम्हारे पंजाब से आज मेरा भी फरमाइश है एक छोटा टूट गया है हमें भेजिया मिला दीजिएगा सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको श्री राम जी को राम कुमार पांडे को और जितने भी रेडियो सुनने श्रोता है सब।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, और गाने की बोल थी गिरे मत दीहा बेटी पापा के पगड़िया, और सोनाली कुमार की आवाज़ में था। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी, और लिख रही हैं कि सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय भारती दी गुड आफ्टरनून, हाय मनोरमा दी गुड आफ्टरनून, का हाल बात ज़रूर बताएं, और दोनों दीदी खातिर बा। और आप जो गाना बजाए हैं दूसरा नंबर वाला गाना अच्छा नहीं लगा, और ऐसा ऐसा गाना नहीं बजाइएगा। तो जी गाना तो आप जिस मायने में लेंगे उसी गाने मायने में लगेगा आपको, और जैसा आप सोचे वैसा लगेगा आपको, लेकिन गाना का मतलब कुछ और ही था और आपको कुछ और ही लगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, थोड़ा लेट हो गए हैं, और करिश्मा जी के गाना बजा दी, बहुत ढेर दिन से सोच

रहे हैं कि मेरे भी सॉन्ग का आज एक वीक हो गया है और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, नहीं लगा है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और इस बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि लगी है या नहीं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग पापा के पगरिया। मैसेज करने वाले हैं नूर आलम बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से और लिख रहे हैं कि उद्घोषक की आदाब, और मुझे भी ये गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, फरमाइश भेज रहा हूँ। और जी बिल्कुल, आपके भी गाने को प्ले करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हम नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से और हम भी जुड़ गए हैं, और हाजिरी लगा दीजिए सभी लोगों को दुकान पर जितने लोग बैठे हैं, और गाना बजा दीजिएगा। और गाने की बोल है काली चोटी है परांदा तेरा लाल ने, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। और लिख रहे हैं कि मोबाइल का डिस्प्ले थोड़ा कम काम नहीं कर रहा है कोना वाला, इसीलिए लिंक नहीं भेज पा रहा हूँ, गाना बजा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, चलिए आपके गाने को प्ले करती हूँ बिना देरी किए, और इन्जॉय कीजिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बज रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दो कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रमजिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मोतिहारी से MD मीनू जुड़े हुए हैं और एक गाना सुनना चाहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है और इनकी तरफ से काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि कल मेरा सॉन्ग पूरा किए थे भारती जी, लेकिन उसी समय मेरे घर में अजगर आ गया था तो मैं सुन नहीं पाया, और आज मैं दूसरे गाने की फरमाइश करता हूँ। आप सुनवाएं तो अच्छा, ना सुनवाएं तो अच्छा, और आपकी मर्जी, और मेरा तो फरमाइश है। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसर राज, पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो जी, कल तो मैंने आपके गाने की फरमाइश को पूरा कर दिया था और आप नहीं सुन पाए, और अगर मैं दोबारा आपके गाने को प्ले करूं तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने जब कल प्ले किया था तो फिर आज क्यों कर रही हैं। तो जी, मैं आपके गाने को आज प्ले नहीं कर सकती। पर यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती जी, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, और गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से, और लिख रहे हैं कल मेरा गाना नहीं बजा था, आज प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को प्ले करूंगी, पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है। लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, क्या हालचाल है। मिंटू चौहान दुबई से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं बबलू यादव बांका बिहार से, और मैं भी एक बार रेडियो रिमझिम से फिर से जुड़ गया हूँ, मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम सब लिसनर को मेरी तरफ से, मैं हजरा सूरत से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और लिख रही हैं कि शादी क्या है, बिजली के दो तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, और गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। तो जी बिल्कुल, आपकी तो बात सही है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रही हैं कि हेलो मैं मधु कुमारी सिवान से बोल रही हूँ, और आप मेरा गाना प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को प्ले करूँगी। तो बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ जो कि यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हमार नंबर कब आई मैम, और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुमार पूर्वी चंपारण से। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने का नंबर आएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं काहो उत्तम भाई, का हाल चाल मैम जी, बहुत ही अच्छा लगा गीत काली तेरी चोटी। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह बगवाला रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी, वाओ सुपर सॉन्ग। और काफ़ी सारे अभी भी मैसेज पहुँचे हुए हैं। तो जी सभी मैसेज तो एक साथ शामिल नहीं कर सकती, धीरे धीरे सभी के मैसेज शामिल करूँगी और गाना भी प्ले करूँगी। और यहाँ पे गाना हमारे पास पहुँचा हुआ है राजू यादव, जो कि सिवान से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और यहाँ गाने की जो बोल पहुँचे हुए भोजपुरी सॉन्ग है, खेसारी लाल यादव की आवाज़ में गाना है। और लिख रहे हैं कि ये और गाने की बोल है कि प्यार काल परसों के कहीं ना रहे, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए इनके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: लोग सुन रहे थे राजू यादव जी की तरफ से गाना, जो कि काफ़ी खूबसूरत गाना था, खेसारी लाल जी की आवाज़ में। और गाने की बोल थी प्यार काल परसों के कोई न रहे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है उन्हीं की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं कि और बहुत सारे लोगों के साथ सुन रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास जो कि कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार।
1: रविवार के दिन फोन किए थे, फोन आप उठाए नहीं कर।
0: जी उस दिन फोन भी उठा रहे थे और मैसेज भी शामिल कर रहे थे, पर थोड़ा
1: नहीं, हम तो लगभग लग रहा था कि 20 बार किए थे, नहीं उठाए।
0: अच्छा जी, कभी कभी हो जाता है।
1: कितना अच्छा गाना सुन रहे थे।
0: कोई बात नहीं, आज बता दीजिए, आज बज जाएगा।
1: आज बजा दीजिए राधे श्याम का गाया हुआ गाना, क्योंकि तो इस जमाने में क्या हो गया।
0: कौन सा गाना?

0: जमाने में क्या हो गया, इसको जाने जाने समझा उसके नफा हो गया।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है? ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी, गुड आफ्टरनून, मैं भी एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद सलमान दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी सुना लग गया हाजरी और मेरा भी सॉन्ग है, और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जितेंद्र कुमार जी की तरफ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि कल मेरे गाने को ये फरमाइश को नहीं पूरा किया गया था भारती मैम, तो जी आज बता दीजिए और आज आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और मैसेज करने वाले हैं मनीष कुमार गुप्ता, आलमपुर सासाराम बिहार से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, और जसवंत कुमार, जसवंत कुशवाहा हरियाणा से जुड़े हुए हैं, और हेलो मैम हमें भूल गए, क्या हमें भी सुनना दीजिए। तो जी नहीं, आपको नहीं भूले हैं और मैं किसी को नहीं भूली हूँ, और सभी के मैसेज एक एक करके शामिल किए जा रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि माय डियर भारती जी कैसी हैं आप लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हम सब तो ठीक हैं। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और इनकी तरफ से एक मज़ेदार जोक पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दुनिया का सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, जो बाथरूम, कबाड़खाना, शमशान होकर आने के बाद भी मंदिर और रसोई में बिना पवित्र हुए जा सकता है। और ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी होती है, बस नींद पूरी नहीं होती है। और ये तो बात आपकी सही है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, और यहाँ अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय, पिछले सप्ताह आप जो गाना बजाए थे वह गाना हिंदी में आ गया है, अगले इस हफ्ते में सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले का तो नाम मुझे दिख नहीं रहा है, और थोड़ा आप अपना नाम बता देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी, जो कि गाना सुनना चाहते थे, लिख रहे हैं कि अभी शर्मा बिहार छपरा से हूँ और गाना सुनना है बहुत मुझे भी, और बहुत अच्छा लग, गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपसे एक छोटी सी फरमाइश है, और मेरी भी एक गाना है। और लिख रहे हैं, गाने की बोल है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, अगर आप इस गाने को प्ले कर देती तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी, और प्लीज़ मेरी ये छोटी सी फरमाइश ज़रूर पूरी कीजिए। डियर भारती, प्लीज़ मेरी अभी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तो जी चलिए, बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है, तो इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में काफ़ी खूबसूरत सा गाना, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी मेरी फरमाइश को इतनी खूबसूरती से पूरा करने के लिए दिल से थैंक यू। और मैसेज करने वाले हैं छपरा बिहार से अभी शर्मा की तरफ से, आपको बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और काफ़ी खुशी हुई कि आपको गाना सुनने में मज़ा आया। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, सागर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि गाना यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं सागर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम से, और डेडिकेट करना चाहते हैं दिलीप राम, परजू भाई, आज़ाद अंसारी, उमा शंकर और उत्तम सोनी जी को और कमरान रशीद जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके गाने को मैंने थर्सडे को प्ले किया था यानी गुरुवार को, तो अभी तो आज मैं प्ले नहीं कर सकती। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे सत्यम सत्यम यादव, मैं रोज़ 6 घंटे रेडियो सुनता हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ये जान के मुझे काफ़ी खुशी है कि आप रेडियो सुनते हैं और आपको सुनना अच्छा लगता है। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा कब तक बजाइएगा जी भारती जी, तो जी आपके भी गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ पे जो कि हमारे पास काफ़ी देर से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं कि सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से जुड़े हैं, और मैम एक गाना सुनना था मुझे, और गाने की बोल है दिल की बीमारी है और बहुत दिन बाद शो से जुड़ा हूँ, इसके लिए सॉरी। और लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिए, और हमारा नंबर कब आएगा, तो जी चलिए बिना देरी किए आपके ही गाने को प्ले करते हैं, और आपकी बारी आ चुकी है, और कोई बात नहीं शो में देर से जुड़े इसके लिए कोई बात नहीं, तो आपके गाने को प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939951 पे।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और समय हो गया है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:35 और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को बता दूं, आप फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां पोस्टर से लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को नोट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कब चलता है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्ते, कैसी हैं आप? और मैं भी जुड़ गया हूँ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि सागर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है आपका, लाजवाब। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ था उत्तम सोनी जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू जी गाना प्ले करने के लिए। और सुनील कुमार जो कि मैसेज किए हुए हैं, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अगर बादाम महंगे हैं तो उनकी जगह धोखा खा लो, ये सस्ता भी होता है और दिमाग भी तेज कर देता है। और मुझे गाना सुनना है जो कि लिंक के माध्यम से भेजे हुए हैं, और रोहित देहरादून से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी आपके भी गाने को प्ले करूंगी, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और लिख रहे हैं कि जितेंद्र कुमार बरौली से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल इनकी तरफ से पहुंची हुई और काफी खूबसूरत गाना है, और गाने की बोल है चल कहीं दूर चले जाएं। और गाना है अलका और उदित नारायण जी की आवाज़ में और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो रेडियो रिमझिम पे गाने को एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

आप सुन रहे थे बेहद खूबसूरत सा गाना अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में, और गाने की बोल थी या कहीं दूर चले जाएं हम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि

आज एक गाना भेज रहे हैं, प्लीज़ सुनवा दीजिए, और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और डेडिकेट करना चाहते हैं आपको और ऑल लिसनर को। तो मैसेज करने वाले हैं अनिल जी। तो यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून ऑल लिसनर रेडियो रिमझिम 90.4 FM। मैम, टुडे यू रन प्रोग्राम वेरी वेल एंड थैंक्स टू ऑल लिसनर फॉर गुड रिक्वेस्ट सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो, मुझे सॉन्ग सुनना है। और खेसारी लाल जी की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं। और मैसेज करने वाले हैं अजय कुमार, संजय कुमार और हरी कुमार। हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश में हैं और गाना सुन रहे हैं, और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार दीदी भारती जी, मैं न्यायपारा विरई से लीला साहू, और मेरे पति आपको गाना सुनने को कहा, लेकिन आपने नहीं, अभी तक नहीं सुनाया। प्रमोद कुमार साहू, हम एक साथ रेडियो रिमझिम में गाना सुनते हैं और रसोई काम करते हैं करते सुनते हैं, और आज उसका दिन है, गाना सुना दो। और मैं आपको बता दूं, परसों ही आपके गाने को प्ले किया गया था, इसीलिए मैंने प्ले नहीं किया। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची है, उससे पहले यहाँ एक हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं दिनेश कुमार मिश्रा, और चुटकुला पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि दुनिया में तीन ही लोग हैं जिनकी बातें औरत ध्यान से सुनती है और मानती है, टेलर, फोटोग्राफर और ब्यूटी पार्लर वाली, बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। और ये बात बिल्कुल सही है, और थोड़ा नहीं भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, हाय भारती मैम, मैं भी जुड़ चुका हूँ और हैदराबाद से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गाना सुनाना है कि नहीं ज़रूर बताइए। और यहाँ पे लिखे हैं कि जसवंत कुशवाहा हरियाणा से जुड़े हुए हैं और खेसारी लाल का गाना भोजपुरी में सुनना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, आप ही के गाने को प्ले करने जा रही हूँ और गाना सुनना चाहते हैं, जान हमार हरदी से लेटाइल वाड़ी, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग,

0: गंज
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इस लिख रहे हैं मुकेश, करवार हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं सुपर गाना, और लिख रहे हैं कि इस दिल में प्यार था कितना, वो जान लेती तो क्या बात होती। हमने मांगा था उन्हें खुदा से, वो भी मांग लेती तो क्या बात होती। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि एक बार एक ताऊ ने एक ताई छेड़ दी, ताऊ ताई ताऊ को गाली देने लग गई। पास में एक लड़का गुजर रहा था, बोला क्या बात हो गई ताऊ जी। ताऊ: कुछ नहीं बेटा, पुराना ट्रांसफॉर्मर है, चरर चरर कर रहा है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि बदल गई दुनिया, बदल गया जमाना, अब दुश्मन बन गया है यार मेरा पुराना। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है इनकी तरफ से, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर उससे यहाँ पहले मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, प्यार में धोखा और भोजन में दाल भात चोखा, दोनों हम गरीब लड़के के लिए बना है। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, क्या बात है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून वंस अगैन, इन दिस प्रोग्राम आई हैव शॉर्ट ऑब्जेक्शन फ्रॉम आरजे मनोरमा जी, यस्टरडे प्रोग्राम माई फीडबैक इज नॉट इंक्लूडेड, वाई। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से, तो मैं बता दूँ आपको कि अभी मनोरमा जी थोड़ी नई हैं और आप सभी के बीच वो भी जुड़ रही हैं, तो आप सभी उनका साथ देंगे तो ज़रूर वो भी अच्छा करेंगी। और वो एक एक करके अभी सभी के मैसेज धीरे धीरे शामिल कर रही हैं, तो प्लीज़ उनका भी साथ दें आप लोग। और मैं भी तो वैसे ही पहले लटपटाती थी, अब सही थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कर रही हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, जब मैं मैसेज करूँगा तब मेरा गाना प्ले कीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को तभी प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं और किसको हल्दी लगवाया रही हैं सुपर सॉन्ग। तो मैं तो हल्दी नहीं लगवा रही हूँ, और जिन्होंने गाने की फरमाइश की थी वो हल्दी लगवा रहे हैं। और मैसेज करने वाले थे जसवंत कुशवाहा हरियाणा से, और यहीं हल्दी लगवा रहे थे। और इसी के साथ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंची हुई थी, दही भाता से उषा जी जुड़ी हुई हैं और गाना सुनना चाहती हैं, और गाने की बोल है उंगली पर दिन गिन गिन के इंतज़ार करी ले। और बेहद खूबसूरत गाना है और सुनना चाहती हैं सभी, सुनाना चाहती हैं सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले दोस्तों को। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, अंगरी पे दिन गिन गिन के, भोजपुरी गाना था और पवन सिंह की आवाज़ में। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच सॉन्ग प्ले करने के लिए, और उषा जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि काफ़ी देर से रोने का प्रयास कर रहा हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन आप रोमांटिक सॉन्ग प्ले करके पूरा खेल बिगाड़ दे रही हैं। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी, और चलिए आप चलिए अभी एक हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, थोड़ा सा सैड शायद है, और मैं प्ले करती हूँ और कहीं उससे आपको रोना आ जाए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं गाना शौक से सुनते हैं मैम रिमझिम पर कोई दिल पर ना ले, थैंक्स मैम सॉन्ग सुनाने के लिए। और जसवंत कुशवाहा जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं करिश्मा के गाना बजा दीजिए प्लीज़ हेलो दी। तो मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं मधु कुमारी सिवान से जुड़ी हुई हैं और गाना सुनना चाहती हैं, और गाने की बोल है झूठे राउर बोलिया ए राजा जी। और आज क्या बात है, सभी की तरफ से भोजपुरी गाने की फरमाइश पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है कि आज भोजपुरिया शो चल रहा है, पर कोई नहीं, सभी के गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए मधु जी आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-6575।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMAZ पर।
10: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अनिल जी की सुपर फरमाइश, और फरमाइश करने वाली थी मधु जी सिवान से, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरा एक हफ्ता पूरा हुआ है कि नहीं मैडम जी, तो जी आपका तो एक हफ्ता नहीं पूरा हुआ है, कल पूरा होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि आज का गाना बहुत पसंद आ रहा है भारती दीदी जी। और जी सही बात है, आज के सभी लिसनर हमारे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत गाने की फरमाइश किए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनू सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मैम कैन यू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टुडे, पॉसिबल माय रिक्वेस्ट सॉन्ग और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई इन नेक्स्ट। तो जी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि गाना सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं मनीष। मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम बिहार से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं मनोज तिवारी का, कोई भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और चलिए बिना देरी के आपके लिए मनोज तिवारी का एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ। और गाने की बोल है

0: लूँगा।
1: गजब के रोग जवानी में, और बेहद खूबसूरत गाना है, प्यार के बंधन मूवी का गाना है। तो एंजॉय कीजिए सभी लोग रेडियो रमजिम 90.4 FM में।

0: मन करे।
1: और इसी के साथ समय होने वाला है दोपहर न्यूज़ का, तो जिनके भी गाने की फरमाइश पूरी नहीं की गई है वो गुस्सा ना हो और उनके गाने की फरमाइश दोपहर न्यूज़ के बाद पूरी की जाएगी, और जिनके मैसेज शामिल नहीं हुए हैं उनके भी मैसेज को शामिल किया जाएगा। तब तक आप सभी इस गाने को इंजॉय करें। सभी के साथ रेडियो रंजन 91।

0: to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Manthana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These water week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति

0: वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
2: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
1: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे, हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा

0: मामला तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
3: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
9: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवा

0: सिर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: प्रसाद क्लिनिक
4: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

छोटे से ब्रेक के बाद और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776065। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश से, मेरा भी गाना बजा दीजिए। और तो बिल्कुल बजाएंगे। इससे पहले हमारे पास और सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दोपहर न्यूज़ के बाद फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी के बीच, तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पीपरा नारायण से, और इन्होंने मैसेज किया है और मनोरमा दीदी इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है शमशाद अली जी की तरफ से, तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और गाने के बोल है बदल गए हैं, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM पे।

0: नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और इन्होंने लिखा है सुपर सॉन्ग। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी, आप आए तो बाहर आया, नमस्कार करते हैं आपको भी। तो नमस्कार आपको भी, और फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और इसी के साथ इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा लाइन लिखे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, अपनी तो मोहब्बत की ये कहानी है, अपनी तो मोहब्बत की यही कहानी है, टूटी हुई कश्ती ठहरा हुआ पानी है, एक पल किताबों में दम तोड़ चुका है, एक पल किताबों में दम तोड़ चुका है, मगर याद नहीं आता ये किसकी निशानी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था जो कि गणेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और अभी हम लोग जिनके आप फरमाइश सुन रहे थे उनकी तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं।
1: रेडियो रिमझिम की दोनों देवियों को मेरा नमस्कार, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। इतने प्यार से मैसेज पढ़ते हो, गाने की फरमाइश पूरी करते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल खुश होता है। भारती जी और मनोरमा जी की दिल से गहराइयों से धन्यवाद।
0: और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, ये लिख रहे हैं का हाल बाजी, तो हाल चाल तो बिल्कुल बढ़िया बा, अपन बताएं कि रवा कैसन बानी। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

हमारे पास एक और इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है मोतिहारी से एमडी बीहू एक गाना सुना दीजिए, मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, तो चलिए एंजॉय करते हैं रेडियो एमजी 90.4 एफएम पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटे से ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे

और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और जिनका फरमाइश था उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, हाय मनोरमा मैम आप कैसी हैं? तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग तू माटी का गुड्डा तू सोने की चिड़िया, जो गाना बजवाया उसके लिए शुक्रिया। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। एक और मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, हेलो हाय मनोरमा जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, अब मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए मनोरमा जी, आपको भी नमस्कार। तो जी नमस्कार, आज मेरा सॉन्ग प्ले नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ कहीं, तो सॉरी इसके लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, और मैसेज पहुँचा हुआ है गणेश जी की तरफ से, और बहुत ही मजेदार जोक से, जो कि लिख रहे हैं, समय एक सा नहीं रहता यारो, सबका बदलता है। समय एक सा नहीं रहता यारो, सबका बदलता है। जो कपड़े अंग्रेजों के गवर्नर पहना कर लोगों को डराते थे, आज हमारे बैंड वाले पहनते हैं। तो बहुत ही मजेदार लाइन थी। और इसी के साथ एक और मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, का हलवा दीदी मनोरमा दीदी जरूर

0: करिश्मा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम मुझे भी गाना सुना दीजिए, मैं तारामती कुशवाहा कालीगढ़ योधपुर, और गाना सुनना है हम भूल गए हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले, प्लीज सुना दीजिएगा। और सुनाना चाहती हैं, और ये सुनाना चाहती हैं रेडियो सुनने वाले सभी को और आपको भी। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।
1: शिमारू के नए वीडियोज़

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्रोग्राम सुनकर हमने भी मैसेज कर दिया और मैसेज करने वाले गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से, किशोर सबलीनिया, सावित्री सबलीनिया।

से फिर जुड़ गया हूँ, मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पर मैसेज किया है मुझे गाना सुनना है अंकुश राजा, अंकुश राजा का जोड़ी तुहरे से लागो हमार। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिंजू 91.4 FM पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिंची 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भक्ति गाना क्यों बज रहा है, हम कितने बार चॉइस के किए बजाने के लिए लेकिन नहीं बजा, तो माफ कीजिएगा लो इसके लिए क्योंकि मुझे नहीं पता था।

आप लोग से भी यही विनती है कि प्लीज भक्ति गानों की फरमाइश ना करें। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी पीपल नारायण से, तो इसके लिए सॉरी कि मैं गलती से बजा दी थी भक्ति सॉन्ग।

और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद, मैं यूपी देवरिया भटनी से, मेरा भी एक फरमाइश है हिंदी सौगंध मूवी का कोई भी गाना चला दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके गाने को भी प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मोहम्मद अंसारी उमान से, और फिल्म 1-2 का और सॉन्ग सुनना तो सॉन्ग सुनाएंगे। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है और आप फिर से जुड़ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अजीत कुमार जी चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है लैला को भूल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए प्ले करते हैं आपके गाने को और एंजॉय कीजिए।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और मैसेज करने वाले हैं अंकित कुमार जी, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो जी जरूर बजा।

और मैसेज किए, हेलो मैम, मैं नेहा सिवान से, मुझे भी गाना सुनना है, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए नेहा जी की तरफ से ये प्यारे से सॉन्ग को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी हम लोग बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, और यहाँ पे

मैं सुन ली, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मनोरमा जी मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा तो मैं जरूर प्ले करूँगी इससे पहले। और ये मैसेज करने वाले हैं, रोहित कुमार देहरादून से, और इनके गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से है। तो चलिए प्ले करते हैं इनके गाने को और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

तो अभी हम लोग बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे, हम भी पागल तुम भी पागल, और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए, थैंक यू। और मैसेज करने वाले हैं रोहित देहरादून से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं जो कि लिख रहा है। हेलो मैम, मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा।

गाने को बोले दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है। और मैसेज किए हैं बजा दो, नहीं बजाना है तो भी बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है, चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और

यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम, मैं कृष्ण कुमार और मुझे गाना सुनना है। और इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, हमारा भी गाना बजा दीजिए और गाना सुना, हम बादल बन जाए तो बारिश बन के आई। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, बहुत ही

जाना, बारिश बन जाना, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ जो कि करिश्मा जी मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो जरूर आपका गाना प्ले होगा।

गाना बजाने के लिए और नाच करने वाले हैं कृष्ण कुमार। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहा है, हाय मैम, भोला गुप्ता बोल रहे हैं हम बेतिया से, दुर्गा जी का मंदिर और से। तो ये क्या लिखे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, गाना बजा दीजिए। तो जी बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को प्ले करेंगे हम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ करिश्मा जी की तरफ से और इन्होंने मैसेज किए हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए और गाने के बोल है। तो करिश्मा जी चलिए आपके गाने को

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899।

0: 22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और करिश्मा जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू दीदी गाना बजाने के लिए।

ना नींद आए रातों को, ना चैन आए दिन भर। खुदा से पूछा मैंने, क्या ये प्यार का बुखार है? खुदा ने जवाब दिया, अरे नहीं, गर्मी में सबका ही ऐसा ही हाल है। और इसी के साथ लिख रहा है सुपर गाना दिलीप राम जी की तरफ से। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहा है सुपर सॉन्ग करिश्मा जी के। और

और यहाँ पे हम मैसेज पहुँच गया है मोना जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया कि मैम मेरे को भी गाना सुनना है, बजा दीजिएगा। और गाने के बोले पिया जी की मुस्किन। तो चलिए, तो गाना प्ले करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9857788291, और कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7277165096। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूँगी विदा, और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3092 या 97665-65750।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करे 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 99393-65923।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
12: 90.4
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
0: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी,

0: S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: Now pick your phone up.
9: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
10: हेलो
11: जी मैम, नमस्कार।
10: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं
10: जी। सुनील जी, क्या हाल चाल है?
11: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए। मैम तो फोन भी लगा रहे थे, ट्राई कर रहे, फोन भी लग गए। मैम
10: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
11: मध्य प्रदेश MP से।
10: तो मौसम कैसा है उधर का?
11: जी हमारे यहाँ तो मैम अभी कल शाम को बारिश हुआ था, अभी तो धूप है मैम।
10: अभी धूप निकला हुआ है?
11: जी जी जी मैम।
10: फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
11: जी फिल्म है आंदोलन और गाने को बोले आई जी हेल्प पल तुझे मेरी यार, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
10: ओके जी, वैसे गाना तो बहुत ही अच्छा
11: जी।
10: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
11: धन्यवाद।

0: हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
1: एफएम में। जी मैम, शहनाज बेगम।
0: जी जी,
1: कैसे हैं मैम?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी आपसे यहाँ दुआ है आपसे।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: कुछ नहीं मैम, बात कर रहे हैं आपसे, फोन लगा रही हूँ। अभी तो टाइम मिला, जस्ट लगा।
0: तो
1: कैसे मैम, अच्छी हूँ ना?
0: जी जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। ठीक ठाक है ना?
1: अच्छे हूँ।
0: ये रहा,
1: बस आपके पास कॉल लगा रही हूँ, आपसे बात करके मैं बहुत खुश होती हूँ।
0: चलिए,
1: मैम गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: विदाई वाला, बाबू से घर छोड़ के बेटी से आके घर चले।
0: जी एक बार और बता दीजिए।
1: विदाई वाला सुना दीजिए। बाबू के घर छोड़ के बेटी से आके घर चले।
0: जी तो क्या आप मुझे जाके बताएंगे ये दो लाइन?
1: जी मैम।

0: गाना तो अच्छा है
1: जी,
0: बहुत ही अच्छा है। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको
0: जी थैंक यू।
1: हम अपने घर वालों से सबको जितना भी सुनने वाले भाई और बहनों को सबको सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके जी, वैसे क्या करती हैं आप?
1: जी कुछ नहीं, मैं घर से जितना सिलाई है, घर का काम है, सब देख रेख करने सब हमको जिम्मेदारी है। सही है,
0: तो आपकी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई है?
1: जी शादी हो गई है मेरा फिलहाल।
0: जी आपको शादी हो गया है?
1: जी मेरा भी शादी है, हम अपने लड़की के शादी किए, 2.5 साल हुआ। आपको कहीं समझ रहा है? कभी नहीं हुआ है?
0: नहीं नहीं, आवाज से तो पता नहीं था।
1: आवाज से भी सबको पता चलता है कि इनके शादी भी नहीं हुआ, पता नहीं आवाज को चेंज करना पड़ेगा।
0: जी जी बिल्कुल, आवाज ऐसे लगी एकदम।
1: नहीं मैम झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे, सिस्टर की जैसे हो। मैंने अपनी लड़की के शादी की, उनके भी एक लड़की हुई थी।
0: अच्छा जी
1: जी,
0: चलिए आप तो मुझे कंफ्यूज ही कर दी।
1: जी जी नहीं नहीं कंफ्यूज बात हो गई, हमेशा की तरह से बात करते
0: हैं, याद रखेंगे।
1: जी जी
0: चलिए
1: मैम बाय।
0: जी तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
9: नमस्कार माया।
10: नमस्कार,
9: कैसन बानी
10: जी? हम तो ठीक बानी, रहुआ बताएं कि रहुआ कैसन बानी?
9: हम ये तो ठीक है बानी सा, रहुआ लगा देव आशीर्वाद से।
10: हाँ जी, कोई के रहुआ कहाँ से बोला जाए?
9: हम बंजारी से बोलता नहीं, बंजारी फुल सैन से सामने गोपालगंज से
10: जी। और नाम?
9: हमारा नाम परिवम साई टेलर राघव जी।
10: और बताइए, नाश्ता वास्ता हो गयी?
9: मैडम नाश्ता अभी ले तो 9 बजे नाश्ता हो जाएगा, आदमी दुकान से चला वाला। लोकेशन बा
10: जी, यहाँ पे भी तो सबसे बढ़िया बाटे,
9: बढ़िया के काम बा
10: जी जी।
9: और पूरी सॉन्ग सुने का बहाना दे
10: जी? बिल्कुल बता दी।
9: सॉन्ग गुंजन सुन के धारामुआ सही बा, अलगे अलगे भाई सही सॉन्ग बा चला दे
10: जी जी। और गाना के उसे सुनाए के विचार बनी?
9: पहले तो रोवा के जितना रेडियो रिंजिम के टीम बा सबके ऊके, जितना रेडियो रिंजिम जो सुनता वो सबके ऊके साथ में सुनना चाहता नहीं
10: जी। बिल्कुल, तो चले फिर और गाना प्ले करता नहीं?
9: प्रणाम नमस्कार मैम
10: जी। प्रणाम नमस्कार, सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, सलाम
0: मैम
1: जी। वालेकुम
0: अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज मुझे एक प्यारा सा गाना सुना, ये गाने का उम्मीद है की सबको अच्छा लगेगा। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, सही वाला सुनाना है
0: जी। जी क्या मुझे जाके बताएंगे दो लाइन?
1: मैम मुझे आता नहीं गाना गाने। और उस दिन रानी जी बोल रही थी की बोलते हैं मेरा आवाज अच्छा नहीं, मेरा आवाज अच्छा है नहीं लेकिन गाना गाना भी नहीं आता है।
0: नहीं नहीं, आपका आवाज बहुत ही अच्छा है, कोशिश करिए कि कॉल करने के बाद दो लाइन गा के सुनाते तो सही रहता।
1: मैम तो अगली बार कोशिश करेंगे और रानी जी को यही बोलेंगे, उनका फरमाइश आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर आता है दुकान पे, हम कस्टमर को रोक करके उनका फरमाइश सुनते हैं।
0: जी ये तो बहुत अच्छी की बात है,
1: मतलब उनको बातों के साथ उनका फरमाइश भी अच्छा लगता है हमको।
0: जी जी,
1: लंबा बात होता है लेकिन मतलब अच्छा होता है और गाने का फरमाइश अच्छा आता है। और जो हम सोचते हैं कि ये वाला गाना फरमाएंगे वही उनका मतलब आ जाता है।
0: जी जी, तो ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: डेडिकेट है सभी रेडियो दोस्तों, सभी आर्जे को, आपको। मैम आज पूरा रिकॉर्डिंग आपका है?
0: हाँ जी।
1: तो आज चलेगा ये कि कल?
0: नहीं नहीं, आज नहीं तो कल, दोनों दिन में बन ही जाएगा।
1: मैम तो मेरा बातों को उतना दिल पे नहीं लीजिएगा जो बोले हैं कल के लिए।
0: जी जी कोई बात नहीं है,
1: जो हमको अच्छा लगा वो बोल दिए।
0: जी जी आपने सही बोला।
1: जी मैम हम फैमिली में सुन रहे थे इसलिए मतलब इधर उधर हो गया।
0: जी जी कोई बात नहीं है।
1: ओके मैम, तो इसको प्ले कीजिए गाना को।
0: जी जी चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम एडवांस में धन्यवाद और बाय बाय।
0: जी बाय बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
1: ओके मैम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
11: कैसे हैं
10: जी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
11: हम भी कौन मैम बोल रहे हैं?
10: नहीं
11: मुनरना मैम।
10: हाँ जी
11: मैं जल्दी कार्यवाल नंबर एक
10: जी। तो क्या हाल चाल है आपका?
11: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
10: जी
11: आप कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं।
10: जी जी हम भी बढ़िया।
11: आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए।
10: बता दीजिए।
11: अब तेरे दिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम।
10: क्या मुझे ये गाना आप गा के बताएंगे? दो लाइन।
11: दो लाइन। अब तेरे दिन जी लेंगे हम।

0: जी लेंगे हम। और सुनाना है
1: जी,
0: सबसे पहले आपको, अक्षरी को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रेडियो रंजन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी दोस्तों को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। आज बज जाएगा क्या?
1: जी जी, कोशिश रहेगा कि आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ओके मैम, जब आपका सुविधा हो तब बजा दीजिएगा।
1: जी जी, तो क्या है ना, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो कॉल आगे पीछे हो सकता है।
0: कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाना सुनाने के लिए और फोन रिसीव करने के लिए।
1: तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: मैं असम के जोरहाट से बोल रहा हूँ, महेंद्र राव। मुझे गीत सुनना था।
1: बता दीजिए।
0: भोजपुरी गायिका एक है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा का छठ का कोई गीत है?
1: ऐसा कोई भी छठ का, शारदा सिन्हा का कोई भी गाना।
0: हाँ हाँ, कोई भी गाना
1: जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते
0: हैं? सुनवाना अनिल, सुनील, शशिकला, महेंद्र राउत, मैंने अपने खुद और प्रेम कुमार, ऐसे हमारे दोस्त और आप लोग सभी श्रोतागण। कौन बोल रही है मैम?
1: जी मेरा नाम मनोरमा।
0: मनोरमा, मैं पहले सोनी भी थी
1: जी।
0: तो दो तीन बार किए लेकिन मुझे गाना सुनने को नहीं मिला।
1: अच्छा।
0: बहुत दिन छोड़ दिए थे लेकिन आज फिर हमको याद पड़ा गाना एक सुनने को दिए, तो फिर आज आपको आपको फोन किए। बहुत दिन हो गया, अब सुनाएंगे गाना। ये
1: गाना ये आपका आज नहीं तो कल बज जाएगा दोनों दिन में।
0: मैं तो चार दिन पाँच दिन तक इंतजार करते रह गया लेकिन सुनने को नहीं मिला पहला गाना। देशभक्त की एक गाना खोजे थे लेकिन मिला नहीं। बहुत दिन हो गया, करीब तीन महीना पहले का बात।
1: तो पहले का तो बात मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तो अभी न्यू हूँ। तो अभी जो आप रिकॉर्ड करा रहे हैं तो गाना आपका आज नहीं तो कल बज ही जाएगा दोनों दिन में।
0: तो शाम को ही बजेगा ना?
1: जी, पाँच से सात के बीच।
0: ठीक है, तो
1: ठीक है जी। तो प्ले करते हैं गाना आपका?
0: ठीक है, ठीक
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: बहुत अच्छा।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello.
13: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो पूरा सम्मान।
15: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते।
15: शुक्रवार को हम लोग गाना सुनने के ट्राई किया था, तो गाना नहीं सुना है आप लोग।
14: जी तो
15: हेलो।
14: हाँ जी,
15: आप ही रहते थे, आप ही रिकॉर्ड किए थे
14: गाना आपका, उसके अगले दिन बज गया।
15: नहीं, शनिवार को हम लोग सुना तो नहीं बजा।
14: हाँ, तो उसके अगले दिन बजा होगा
15: फिर। कल संडे थे ना?
14: नहीं तो आप संडे जी, आप जो रिकॉर्डिंग कराई थी वो रिकॉर्डिंग बजा
15: तो नहीं बजा, हम लोग का गाना नहीं बजा। है हेलो। हम लोग दो दिन शुक्रवार को सुना और शनिवार को सुना, कल संडे था तो संडे को तो क्विज कॉन्टेस्ट चलता था।
14: तो आप रिकॉर्डिंग कब कराई थी और मेरे को पहचानती है आप?
15: हाँ, आप तो मोरारवा बोल।
14: हाँ जी।
15: हाँ, एक और जो रोस्टिंग थी ना वो रिकॉर्ड की थी।
14: अच्छा जी, तो कहीं बचा होगा कॉल तो आज बजेगा?
15: हो सकेला कहीं आज बजेगा। तो आज हमको गाना सुनना है दो सौ।
14: बता रही है
15: उड़नी के कोर से पूछो अपन लूर आई बेगोरी, ये गाना सुनना है हमको।
14: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
15: हम लोग आप ही को सुनाना चाहते हैं और अपने घर लोग को सुनाना चाहते हैं।
14: ओके जी, वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
15: हम लोग वृंदावन से बोलते हैं, थावे क्लब से।
14: अच्छा, और अपना नाम क्या बताएंगे?
15: मेरा नाम सुमन कुमारी था।
14: सुमन।

0: नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: जी हाँ मैम, आप बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: मौसम
0: धूप तो निकला हुआ है,
1: हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं निकला।
0: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बाराबंकी लखनऊ।
0: तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: अभी सचिंदर सरसाज का एक गाना आया है ना, सिफारिश वाला।
0: कौन सा?
1: सिफारिश। सिफारिश,
0: सिफारिश। क्या
1: है आप?
0: क्या आप मुझे गा के बताएंगे? दो लाइन
1: गा के भेजा है खुदा ने महाताब से, आई की बिटिया है जैसे। तो मैडम आई है निकल के नकाब से, सिफारिशों के गौर की, सिफारिशों पे गौर कीजिए, ऐसे है वो।
0: जी जी। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: जी अपनी, सबसे पहले तो अपनी वाइफ को सुनाना चाहेंगे, के बाद आपको, रेडियो रेंजिंग परिवार को और तमाम रेडियो रेंजिंग सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना का।
1: सुनी मैम, चली गई क्या?
0: जी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955497644।
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते,
5: क्या हाल है?
6: हाल तो ठीक बा, अपन बताई जुआ कैसन बानी?
5: हाँ ये ठीक बनी सर। मनोरमा दीदी?
6: हाँ जी।
5: आप भारती दीदी कहाँ बानी?
6: कुमा के बानी, काम करता हूँ।
5: अच्छा, तो चली ना?
6: हाँ चली।
5: खाना वाना हो गए?
6: हाँ खाना तो हो गए सर। और भैया?
5: हाँ हो गए। ठीक बा ना?
6: जी जी, सब बढ़िया बा।
5: भैया सुन रहे
6: ना? अभी तो
5: भैया झगड़ा कर रही है।
6: अच्छा जी,
5: कल के गीत ना के बाद लिंक करूँ भैया के आई थे।
6: अच्छा अच्छा, तो हम ना चला तो भारती जी चला।
5: 3 बजे के भेजले, भेजले 5 बजे गाँव के पुरना बजाई।
6: अच्छा कौन बात ना, आगे पीछे हो जाला।
5: तो रघुआ चला थी, रघुआ तो आत रही थे, रघुआ बुझा दिल वही में।
6: जी जी, तो ये बात कह चाहती हूँ, बहुत सारा लोग बात तो सबके भी तो देखे के पड़ेगा ना।
5: तो मतलब जो आगे भेजियो का बजा देवे के चाहिए, पीछे भेजियो का पीछे बजाए के चाहिए।
6: ये बात रहो ठीक बा, लेकिन वहाँ से पहले भी भेजल रहोगे वही से बजा लोगे। अच्छा कोनो बात नहीं के, टाइम कम हो ये की वजह से ना बाजल हुई, आज बाद छूटा लगे।
5: 3 बजे के भेज रहे, 2 घंटे टाइम रहोगे।
6: अच्छा चलिए, कोशिश कर लीजिए आज बजा के। वही से आज कौन गाना सुने?
5: भक्ति सुन सके नहीं बजा दी। आराम में दोबारा मिल जाये ना?
6: कौन सा?
5: आराम में दोबारा मिल जाये ना?
6: कई गाना वो जाके बता सको तो नहीं?
5: हाँ
6: बता दी,
5: खेसारी लाल की आवाज में बावे।
6: ठीक बा, गाना ही क्योंकि सुनवाई।
5: आराम में दोबारा मिल जाये ना?
6: ठीक
5: है, सबसे पहले रहुआ के सुनवाए भारती दीदी के, और जितना सुनता है सबके के, और सोनी दीदी के, और गणेश भी सुनी हन, और मनीष भी सुनी हन, जितना सुनता है सबसे।
6: ठीक है, तो चलिए गाना प्ले कर दे।
5: ठीक है, नमस्ते।
6: नमस्ते, एक मिनट अपन नमा बता दी।
5: नमा करी नारायण से
6: चलिए, तो फिर प्ले कर देनी सुनते सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
5: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताइए रवा कैसे
0: मानी।
1: ना बता दी।
0: गणेश कुमार
1: जी
0: बात कर।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कल गया हमारे गाना नहीं खेला जाओ।
1: गाना नहीं खेला जाओ
0: ना। आज मनोरमा दीदी रहुए बताए कि हम तो कौन 4 बजे या 4:30 बजे मैसेज ना भेज रहे बताए। वो मेरे भेज रहे थे तो हम कहती चलनी भाई हमारे पहले जो फरमाइश आई हुई तो हम बजाय कोनो बात नहीं थे। बाकी हम गाना के फरमाइश भेज ले 3 बजे एकदम राइट 3 बजे। हमारे गानो नहीं खी बजे ले। हम कहें कि आप बजाय मैं बजाय अपने वेट कर कर कर कर 5 बजे तो चल गए।
1: अच्छा तो हम सोना करते टाइम कहीं भागे।
0: अरे तो रहो चला रही।
1: अच्छा हमारे टाइम भैल बा
0: मनोरमा दीदी हम जब ले शो खत्म ना रहे तब ले हम सुनत रहे।
1: अच्छा
0: हमारे बहुत अच्छा लगे सुने में। जैसे कि ना होला कि कोई गाना वाना बजेला तो अथी हो जाला दुख नहीं मन हो जाला।
1: ना ना ऐसा बात नहीं है कहे से कि और भी तो लोग बा वहाँ सबके भी तो बजावे के पड़ेला ना।
0: ना तो संडे के दिन स्पेशल बजावे के चाहे ना बताए।
1: आज बात
0: ना छोड़िए आज भेजबे ना करम फरमाइश
1: तो ना खिसी आई जला।
0: ना तीन बोल दे भारती दीदी से रहुआ।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ऐसा मान ली की गाना के फरमाइश भेज रहे भाई भक्ति तो अगर भक्ति ना बजा गए तो बोल देते हैं कि भाई भक्ति ना बजी दूसरा गाने के फरमाइश भेजी तो वहाँ का वो नहीं भोजपुरी सुनो भक्ति बाजेला।
1: अच्छा
0: अब बताए अब दशहरा होता तो सब लोग तो भक्ति गाना सुनी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: भक्ति तो बाजते नहीं थे।
1: अच्छा तो बाजी हमने के सर जी
0: जाए।
1: अच्छा ना तो ऐसा कोनो बात नहीं खेल और भी गाना बाजी का और लोग भी तो जुड़ेला तो बारी बारी सबके बाद।
0: अच्छा रवि बताए मनोरमा 3 बजे से थी 3 बजे से 2 घंटे टाइम रवे की ना रवे
1: जी जी चलिए ऐसे गलती हो गई तो आज बात दे रहा ना टेंशन मत ले। आई बता दी कि आज रुआ कौन गाना सुने
0: अपने पसंद के बजा दी।
1: ना ना रुआ इतना मुश्किल से कॉल कैले बानी रही रुआ बताती तो सही रही
0: ना अपना पसंद से बजा दी।
1: अच्छा
0: जवान दी रुआ बढ़िया लगा
1: भोजपुरी में कि हिंदी में
0: जवान दी बढ़िया लगा।
1: अच्छा और गाना भी
0: सबसे प्यारा रुआ के और भारती दीदी के और पूरे रेडियो सुनवाना चाहते हैं।
1: अच्छा जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना।
0: ठीक है नमस्ते।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: नमस्कार
9: जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तो क्या हो रहा है? अच्छा जी, तो खाना वाना हुआ कि नहीं? अच्छा जी, था तो आज लेट हो गया कॉल करने
10: में।
9: क्या करिएगा, ये कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता
10: है। लकीर में
9: नहीं, खुद तकदीर में जान गई वाला
10: खेसारी लाल का नहीं है, हमारा कुछ अलग रहता है।
9: चलिए समझते हैं आपके गाने को,
10: इसलिए हमारा खेसारी लाल का नहीं है, कुछ अलग है। कर लीजिए आप, पंकज मतलबी का है, नेहा सिंह का है, जुगल है।
9: तो गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे
10: आप दोनों को, जितने सुनने वाला है सबको?
9: ओके जी, वैसे नाम बता दीजिए और एड्रेस।
10: कुमार मिश्रा, दिल्ली।
9: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
10: ओके जी
9: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत सुपर रेडियो रिमझिम 90.4 FM ना।
1: नमस्ते दी।
0: नमस्ते, कैसी हैं?
1: राधे राधे। बिल्कुल
0: राधे राधे जी,
1: ठीक हूँ, आप बताएं। जी
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आप रानी जी बोल रही है ना?
1: जी, मैं रानी बात कर रही हूँ।
0: अभी आपको सब कोई मिस कर रहा था लो।
1: जी, कॉल के द्वारा।
0: जी, अभी बोल रहा था लो कि रानी जी कॉल नहीं है, तो हमने बताया कि नहीं, अभी तो कॉल नहीं, तक आप कर ही दी।
1: और इंतजार सफल हुआ कि ना,
0: जी बिल्कुल।
1: और नाश्ता उस्ता कर ही नहीं दी।
0: हाँ जी, नाश्ता तो हो गया और आप ही हैं तो।
1: जी, नाश्ता हो गया है और आप अच्छी है ना?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, और आप ठीक ना? तबीयत तो सही है ना आपकी?
1: और तबीयत अच्छी है। आज मेरी थोड़ी सी अंदर से मेरा हॉट हो चुकी हूँ, और मेरा एक भाई जाने वाला है सर्दी, कल परसों निकलेगा। और उसके और जो मेरी वार्निंग थी ना दी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं अंदर से टूट गई हूँ, और ऐसा फीलिंग हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और लाइफ में मैं कभी भी किसी से शिकवा शिकायत नहीं रखी हूँ, ना कोई चीज मांगी हूँ। बाकी मुझे दिन मंगले मुझे हर चीज मुझे ला कर देता था। है तो उम्र में छोटा, बाकी मुझे प्यार बहुत ज्यादा दिया है थी। और तो मैं क्या बताऊँ, मुझे अब अंदर से जिस घर में जा रहे हैं, रुआई की सुबह कुछ नहीं आ रहा है। इंसान जीवन में अगर तरक्की करे ना दिया, अगर एक पैसा के लिए इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने जितने में हो उतना ही में कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। इसलिए पैसा बड़ा मेहनत कराता है,
0: जी
1: और है मेरे से उम्र में छोटा। अब मैं बताऊं आपसे, कभी भी हाल ही में मेरा जब रेडियो फूटा था, तो
0: जी
1: मुझे एक दिन की नागा को अगर मुझे जाकर नया रेडियो 1200 में खरीद कर ला कर दिया है। और मैं बताऊं, मैं रेडियो 9-10 रेडियो खराब कर चुकी हूँ। ये 11वां रेडियो है मेरे पास,
0: अच्छा
1: और मैं हेती चुकी इसे सुनते आई है ना। और पहले मेरे दादाजी भैया वैया सब लोग सुनता था, और उन सभी को मेरी तरफ से जो जो मेरे के पूछे हैं रानी की तरफ से, अगर नमस्ते प्रणाम। और मैं आज मिस कर रही थी। और देखिए, पहले तो मैसेज उसके मोबाइल से थोड़ा बहुत कर लेते थे, एक दो बार अपने शो में बात भी हुआ है, और मोबाइल भी लेकर जा रहा है, और छोटा फोन होगा तो आप लोग से बात होगा। और मैं बताऊं दी, लाइफ में कभी भी मुझे कोई भी चीज के आज तक ले, और मैं हेती चुकी से कभी भी मैं अपने भाई लोग से कोई चीज मांगी नहीं हूँ। बाकी दिन मंगले मुझे हर एक ख्वाहिश लिया कर पूरा किया है दी, और परदेश जाने के बाद। और एक बात और है, और जाते जाते एक बात बोलता था दी, के पता है दी, तुम्हारा जब शादी होगा तो हम शादी में नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद देखिए, अगर वो भी सारी पूरा हुआ, तो अब देखिए भगवान के दया से मेरी शादी ऐसे होती है, आगे सब होती है। और जो कहा वो पूरा कर दिया दी, और मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है दी, बहुत ज्यादा। मैं ऊपर वाला से दुआ यही करेंगी, कुछ का आत्रा मंगलमय हो, और जहाँ भी जाए सही सलामत रहे दी, मेरा उम्र लग जाए। और मुझे जितना प्यार दिया है ना, सच में करेंगे, एक प्यार तो माँ बाप से मिल जाए, बाकी मुझे माँ बाप से ज्यादा उससे मिला है दी, बहुत ज्यादा मिला है,
0: चलिए
1: बहुत ज्यादा मिला है दी। मैं उसके बारे में जितने बोलूँ उतना तो कम पड़ जाएगा।
0: चलिए, कोई बात नहीं है, फिर जल्दी, बहुत जल्दी वापस आएंगे वो भी।
1: जी, और परदेश तो जाने के बाद धंधे करती है, 2 साल 3 साल के तो कर्ज हो जाता है। बड़े वाला भैया जब गए थे तो 8 साल के बाद हुआ है,
0: 8 साल
1: 8 साल के बाद। और जो हम लोग स्टार्टिंग में जो स्थिति था ना दी, ये खाने की जब वो दौर याद आता है, मेरा तो भगवान बहुत कुछ दिए हैं, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए हैं दी, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए कि अगर हम चाहें तो दूसरे किसी के खिला सकते हैं, दे सकते हैं। और मैं और कोई वो काम करे या ना करे, बाकी मैं अपने घर में उस चीज करती हूँ, अब मुझे कोई रोक टोक नहीं करता कि ये चीज तुम काहे दी काहे की। तो आज मैंने सोचा था कि आपसे बात कर लूँ, अब मैं जी लेट सी इसलिए किए कि आपसे जरूर बात हो। और मैं बताऊं, जो मेरी सिस्टर आपके बारे में जो बोल रही थी, आपकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुई रेडियो ऑन कर,
0: चलिए
1: बहुत खुश हुई।
0: तो रानी जी, मैं आपको बात बता दूं कि ऐसे इमोशनल नहीं होते, जब आप नहीं पूछिएगा तो कैसे जाएंगे, आप ही बताइए।
1: वो तो बात है दी, और मैं सच बताऊं, मैं उस दिन खुद कह रही थी कि तुम जाएगा उस दिन मैं हट जाऊंगी, बोला ऐसे मत करना। और मैं बताऊं ना दी, मुझे बचपन से कभी भी किसी के दुख दर्द देखा नहीं जाता है मैं कभी भी। और मैं बताऊं एक बात और, मैं 2 थप्पड़ खा भी लूं तब वो अंदर से मेरा अंदर से वही हंसी रहता है दी।
0: चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 9.4 FM में।
12: नमस्कार।
11: नमस्कार, जी सुधीर जी, कैसे हैं आप?
12: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
11: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
12: घर का मौसम का क्या हालचाल है?
11: मौसम धूप तो निकला हुआ है,
12: बारिश नहीं हो रही है ना?
11: नहीं, और आपके तरफ?
12: हम लोग की तरफ भी काफी तेजी धूप है, लेकिन बारिश लगभग लगभग 1-2 दिन में हो ही जाती है।
11: अच्छा, तो अभी बारिश हो रही है?
12: अभी बारिश नहीं हो रही है।
11: अच्छा, मतलब
12: मौसम मौसम बहुत अच्छी है, लेकिन वही काफी तीखा धूप है आज।
11: चलिए, बहुत दिनों बाद धूप जो निकला हुआ है।
12: जी जी, नहीं धूप निकलती है वैसे, लेकिन आज पूरा खिल के धूप है, बहुत कड़ाके की धूप है।
11: अच्छा,
12: गर्मी भी है। आज सुना दीजिए मैम, भोजपुरी फिल्म खेसारी लाल और सिकरी राज का कोई नया मैं सुना दीजिएगा आप अपने पसंद से।
11: अच्छा, कोई भी?
12: जी जी जी, डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा, खेसारी लाल यादव और सिकरी राज की आवाज में भोजपुरी गाना, कोई अच्छा सा।
11: ओके जी, और डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
12: जी, सबसे पहले मैं आपको और रेडियो रूम के जितने भी लिसनर है सबको सुनाना चाहता हूँ बिन से।
11: ओके सुधीर जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
12: जी मैम।
11: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।
12: थैंक यू मैम।
11: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
1: मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरा से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, हम अच्छे हैं। बहुत देर हो गया, ये घंटा टाइम निकल गया।
0: जी जी,
1: 11 बजे चालू हुआ, 12 बजने वाला है।
0: जी
1: तो हमको गाना सुनाइए मैडम।
0: बता दीजिए।
1: देखो तो अभी गाना याद था, अभी भूल गए। हाँ, तुम बंसी बजाते हो।
0: तुम बंसी बजाते हो?
1: हाँ,
0: और इस
1: अलका का गाना है।
0: अच्छा जी।
1: तुम बंसी बजाते हो, सारी रात जगाते हो।
0: जी जी,
1: ऐसा ही गाना है। बहुत अच्छा मधुर गाना है।
0: जी जी, गाना तो बहुत कुछ है।
1: तो यही गाना हमको सुनना था, तो सुनवा दीजिए मैडम यही गाना।
0: जी जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ हाँ, ये तो बात सही आप बोली। खासकर ये आपके नाम में रहेगा और सोनी जी के नाम में रहेगा, दो आदमी के नाम में रहेगा गाना। और एक हम सुनेंगे, तीसरा हम है।
0: जी जी,
1: बाकी लोगों को क्या सुनवाना है वो तो सुन के ऐसा ही गच हो जाएंगे। वो लोग कहेंगे वाह क्या गाना है।
0: आपने गाने की फरमाइश बहुत ही अच्छा की है।
1: हाँ, हम तो गाने की फरमाइश अपने हिसाब से तो अच्छा ही करते हैं, पर कितने लोगों को तो बुरा भी तो लगता होगा।
0: नहीं नहीं ये गाना जो बताए बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
1: अरे ये तो गाना जो ये था, एक मीरगंज में रथ यात्रा निकला था, है ना। हम उसी दिन से इस गाना पर हम फिदा हो गए हैं। जो कलश यात्रा में बहुत से मतलब औरतें थी और सब लोग थे, पर जो गाना ही मैं सुना उसमें तो बहुत अच्छा लगा हमको, है ना।
0: जी जी,
1: तो ये कलश यात्रा हमको मीरगंज का याद आता है, तो इसीलिए हमको सुनना अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा वो जो वो बड़ा स्पीकर में बजा था ना, तो उसमें साउंड बहुत खुल के आया था, तो अच्छा लगा। वैसे तो गाना तो हम तो सुन लेते हैं अपने तो रेडियो में, तो उसका मजा और बड़ा स्पीकर का मजा अलग अलग है।
0: जी जी,
1: तो उसी को मजे लेकर के मैं सुनना चाहता हूँ इस गाने को। और भी कहिए गाना है जाते। आज तो हमको फरमाइश करना था वो गाना, सुमन कल्याणपुर का गाना। तो सुमन कल्याणपुर जानती है?
0: नहीं।
1: वो सिंगर है वो।
0: अच्छा।
1: लता जी के टाइम का है, सेम उनका आवाज लता के जैसा है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, सुमन कल्याणपुर कर उनका नाम है।
0: अच्छा।
1: आ, आ, आ, मेरे वतन के लोग, वही तो गाने वाली थी सुमन कल्याणपुर कर। आज भी लोग समझते हैं कि उन्हीं का गाना है, लेकिन वो रिहर्सल में थी और उसके बाद से जो लता जी को ये गाना दे दिया गया है ना। हाँ, तो रिहर्सल में अपना गाना प्रदर्शन कर चुकी थी, तो लोगों को बहुत पसंद आया था। अरे मेरे वतन के लोगों, है ना। तो वैसे बहुत से गाने हैं सारे सुमन कल्याणपुरकर का, लोग अब नाम नहीं जानते हैं, इस सिंगर का नाम नहीं जानते हैं लोग बहुत, लेकिन एक एक सिंगर है।
0: जी जी, बात तो सही है।
1: तो सुनाइए यही गाना मैडम।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले कर।
1: अच्छा, एक मिनट, हम लगभग 12 बजे में लोग कॉल किए हैं, तो इतने के टाइम में गाना आ जाएगा क्या? 5 बजे से शुरू होगा तो 6 बजे आ जाएगा गाना मेरा?
0: जी जी बिल्कुल आ जाएगा।
1: अच्छा, हम टाइम मिलाते हैं, 6 बजे से 5 मिनट पहले ही रेडियो चालू करेंगे।
0: जी जी, अगर आज नहीं बजा तो कल बज जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आए हुए, आगे पीछे हो जाता है कॉल।
1: और हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज बजेगा तो फिर एक घंटा, जैसे हम लेट करके हम कॉल किए हैं तो फिर एक घंटा लेट करके बजेगा ना?
0: नहीं नहीं, अगर देखिए कॉल निकालते समय इधर उधर हो जाता है, तो कहीं शायद आपका एक
1: नंबर। क्यों आप लोग तो क्यों नंबर वाइज क्यों नहीं करते हैं आप लोग?
0: तो अब हमारे हाथ में नहीं ना है, हम लोग कॉल निकालते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, तो कॉल इधर उधर हो जाता है।
1: अच्छा, ये बात,
0: मिक्सिंग हो जाता है, तो जिसका पता रहता है उसका। जो आप बोल रहे थे लेट से कॉल किए हैं, आपका आगे बच गया तो।
1: अच्छा, ये कौन आदमी था मैडम? आज तो सुने हैं बड़ा प्यार से आप बात की थी, कोई एक आदमी है वो बाहर में काम करता है, उसके अंदर घर पे जो है वो बोरिंग है, उसके पिताजी जो है आटा चक्की चलाते हैं, है ना। वो सब बात उसमें कह रहा था, है ना। तो आप पूछी थी कि आपका हाथ अभी कैसा है। मतलब उसका तबीयत भी खराब था उस आदमी का, लेकिन बड़ी प्यार से बहुत देर तक बात हुआ था। हाँ, वही मैं दिल लगा कर सुन रहा था, वही तो सुन रहा था, है ना। हाँ, तो पता नहीं, और नाम हमको याद नहीं है ना, नहीं तो हम बताते, लेकिन आप उसको जानती हैं? हाँ, उस आदमी को जानती हैं, बहुत प्यार से बात हो रहा था। मैं सोचा कि कभी कभी हम भी तो भाई प्यार से बात करेंगे मैडम से।
0: आपको ऐसे भी करते
1: हैं? अच्छा मैडम, हमारा घर किधर है?
0: जी,
1: हमारा घर कहाँ है?
0: अगर आपको बताए तो रिकॉर्डिंग हुई होगी, उतना याद नहीं मुझे।
1: याद रहता है बहुत आपको, याद रहता है ना, लेकिन ठीक है, ऐसा ध्यान में होना चाहिए, ऐसा दिल दिमाग होना चाहिए।
0: जी जी, चलिए तो फिर
1: ठीक है मैडम। हाँ हाँ, सुनाइए
0: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
8: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: नमस्ते मैम।
10: नमस्ते,
11: कैसी हैं?
10: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
11: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
10: तो क्या कर रही थी?
11: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर के बाद।
10: चलिए चलिए, अब जाके लगा है कॉल।
11: जी
10: तो नाम बता दीजिए अपना।
11: मैं शबनम से विक्की बात कर रही हूँ।
10: और कहाँ से?
11: जी खाल से।
10: चलिए तो शबनम जी, कौन सा गाना सुनिएगा आज?

0: मेरे साथ हो, ये वाला सॉन्ग तो मुझे भी गाना तो बहुत ही अच्छा है जी। मैं तो शबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: आपको
0: ओके शबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका
1: जी। हाँ मैम, आप नई मिल रही है, आप जान सकते हैं
0: जी।
1: आपका नाम जान सकते हैं
0: जी? जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
1: आप न्यू लग रही है।
0: हाँ जी,
1: पहले कभी आपको मेरी को हो रही है
0: जी। जी आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
1: मैंने बोला कि मेरे तो हो गई है।
0: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका
1: जी। मैम
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैम, मैं आपसे कुमारी बोल रहे हैं।
1: जी मनीषा जी, कैसी हैं?
0: बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: अभी कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो
0: रेडियो सुन के उसके बाद से कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को आजादी फरमाई
1: थी
0: बोल रहे हैं। सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी।
1: जी तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: मैं खाना खा लिया है आप?
1: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आप खाई हैं?
0: हाँ मेरा भी हो गया है। तो गाना सुनवा दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
1: क्या मनीषा जी, ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
0: नहीं, आप दूसरे दिन गा देंगे।
1: चलिए कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: जी मैं आपको और भाभी मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और अपने दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
1: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिव्यू 90.4 FM।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त

0: करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: एपिसोड 53 5-3

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिव जी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: बनी अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम के साथ।

0: आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: एपिसोड 54, 54।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 7 गिरफ्तार। और जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा समेत बिहार की 4 फिल्मी हस्तियों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है, जबकि 9 अक्टूबर तक अभ्यर्थी नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। 27 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। गौरतलब है कि 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी तथा 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण में चुनाव होना है। इन सीटों के लिए वर्तमान विधान पार्षदों का कार्यकाल 16 नवंबर को पूरा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि सभी 8 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है।
1: इस चुनाव में हमारा एनडीए बिल्कुल आपसी सहमति से और एकजुटता से चुनाव लड़ेगा और 8 सीटों पर विजय होगा। हम लोग समय रहते उम्मीदवार भी बता देंगे और हमारा उम्मीदवार जो होगा वो एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होगा।
0: गौरतलब है कि एनडीए की ओर से किसी सीट पर प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है, जबकि राजद और जन स्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगाने वाले 25,000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की राशि अंतरित की। श्री चौधरी ने पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों के खाते में 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 9 सोलर रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE4 के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। जारी विज्ञापन में 32,388 पदों को भरने का दावा किया गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकेंगे। विस्तृत जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के वायरल वीडियो की गहन जांच के बाद आरोपियों की पहचान की गई। इनमें से 3 की गिरफ्तारी कल ही की गई थी। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर इस मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मामले की समयबद्ध जांच, पीड़ितों को सुरक्षा, पीड़ितों को कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था KS अनुपम ने बताया है कि वायरल वीडियो को टेक डाउन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से वीडियो प्रचारित प्रसारित नहीं करने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस को पूरी तरह से समर्थ बनाया है। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।
2: मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उसे पीछे नहीं हट सकती। इसलिए कानून का राज और न्याय के साथ विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाहते, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार बनाना चाहते, इसमें सबका योगदान है, सबके साथ की जरूरत है, तभी यह बिहार बदलेगा।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई

0: रही है। श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में सुशासन कायम है।
1: 19 सितंबर की घटना है और आज 22 सितंबर है। इसी क्रम में एसआईटी का गठन और अंतोतकत्वा सभी अपराधियों की गिरफ्तारी और जो मेन अभियुक्त जो हिम्मत किया पुलिस पर आंख दिखलाने का, उसको भी आज टांग में गोली मार करके बता दिया गया कि ये एनडीए की सरकार है और खास करके सम्राट चौधरी जी की सरकार है। कहीं बर्दाश्त नहीं हो सकती हमारी बेटियों के साथ, हमारे परिवार के साथ इस प्रकार का कोई घटना घटे।
0: इधर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि जमुई की घटना सरकार की विफलता है। किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री ईमान ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए।
2: जमुई में जो भी मामला हुआ है वह शर्मनाक मामला हुआ है। सरकार नारा दे रही है, एक तरफ बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और बेटी की इज्जत नहीं बच पाती है। छोटी नन्नी मुन्नी बच्चियों के साथ सड़क में इस तरह का शर्मनाक वाकया हुआ है। पूरी इंसानियत इससे शर्मसार है। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का एक बड़ा मसला है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर हमारी विशेष रिपोर्ट।
1: 2011 की जनगणना में भारत में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं था, बल्कि बेटियों को लेकर समाज की सोच और उनके अस्तित्व से जुड़ी एक गंभीर चुनौती की तस्वीर थी। इसी चुनौती से निपटने के लिए वर्ष 2015 में शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अभियान ने बालिकाओं के अस्तित्व, शिक्षा और अधिकारों को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि बेटियों को लेकर सोच में बदलाव का प्रयास भी रहा है। इसका जोर इस बात पर रहा कि बेटियां केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की नेतृत्वकर्ता भी बने।
2: हमारे देश में महिलाओं का सक्रिय कंट्रीब्यूशन रहता है, आर्थिक गतिविधि में रहता है, खेलकूद हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं रत्ती भर भी पीछे नहीं है। और ये सामर्थ्य हमारी शक्ति में है। हमें बेटे और बेटी में भेद करने से बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए।
1: इस बदलाव की एक तस्वीर बिहार के औरंगाबाद की वैष्णवी की कहानी में भी दिखाई देती है। कभी स्कूल से दूर रहने वाली वैष्णवी अब पढ़ाई के लिए स्कूल जाने लगी हैं। जीवन में आए इस बदलाव की कहानी वैष्णवी खुद बता रही हैं।
3: मैं वैष्णवी औरंगाबाद। मेरे भी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक कारण से मैं पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए इस योजना के तहत जुड़े बहुत से अधिकारी बहुत लोगों के घर गए और उनके अभिभावकों को समझाए और उनसे अभिभावक प्रेरित होकर बहुत से बच्चों को भेजे, उनमें से मैं भी इस विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आज पढ़ रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आगे भविष्य में अच्छे मुकाम पर हासिल करूँ और एक अच्छा ऑर्डर लिखाऊँ।
1: बालिकाओं का अस्तित्व और उनकी शिक्षा अब केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि देश के विकास से जुड़ा राष्ट्रीय संकल्प है। यही बदलाव महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। औरंगाबाद से कमल किशोर के साथ समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: राज्य स्तरीय बैंकर समिति की आज पटना में हुई 98वीं बैठक में राज्य में वित्तीय समावेशन, कृषि और ऋण योजना की समीक्षा की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल की

0: कई सहयोगी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान राज्य में कौशल विकास, व्यापार सुगमता और निर्यात प्रोत्साहन तथा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ऋण पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम ने आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक तकनीकी कमलेश कुमार के चार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। ईओयू ने वैशाली के जंदाहा स्थित उनके पैतृक आवास और पटना स्थित कार्यालय तथा आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई बैंक खाते और जमीन से संबंधित कागजात जब्त किए गए हैं। कमलेश कुमार के खिलाफ आय से के वैध स्रोतों से 3,12,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सिडनी में आज प्रवासी बिहारियों से मुलाकात की। श्री कुमार ने विभिन्न मुद्दों पर बिहारवासियों से संवाद किया। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के संकल्प में भागीदार बनने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर केवड़िया में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार की 4 फिल्मी हस्तियों समेत फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अनंत नाग को फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक समय तक उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बिहार के रहने वाले जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म भक्षक में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।
1: सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी का रजत कमल पुरस्कार हिंदी फिल्म भक्षक के लिए श्री संजय मिश्रा को प्रदान किया जा रहा है।
0: गोपालगंज के रहने वाले निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा और निर्माता मीनती मिश्रा को डॉक्यूमेंट्री फिल्म काकोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक पुनर्निर्माण श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर के संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मानसून की सक्रियता के कारण राज्य के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है।
2: दिनांक 23 सितंबर को राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अरवल जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत दिव्यांगों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले शिविर में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के बलिराम भवन में बिहार राज्य आशा संघ एटक की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं की समीक्षाओं और उनकी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। औरंगाबाद की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को 20,000 रुपए की सहायता राशि DBT के माध्यम से अंतरित की। जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 7 गिरफ्तार। और जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा समेत बिहार की 4 फिल्मी हस्तियों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-6750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमलश्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right.

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: तू जो है,
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
6: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम आमंत्रित कर रहा है चिकित्सा अधिकारी और सलाहकार सिविल के एक एक पद के लिए आवेदन। आवेदन प्रक्रिया एवं अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम की वेबसाइट spmnarmadapuram.spmcil.com। अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है। आयु सीमा है 45 वर्ष, वेतन स्तर 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 12 का रहेगा। पद से संबंधित पूरी जानकारी के लिए देखिए अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र की वेबसाइट www.iuac.res.in/vacancies। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। उप कुल सचिव, पदों की संख्या 4 है। सहायक कुल सचिव, पदों की संख्या 20 है। भर्ती की विधि प्रतिनियुक्ति के आधार पर रहेगी। अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जॉब शीर्षक को क्लिक करके देख सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में 7वें वेतन मैट्रिक्स लेवल में वेतन के नियमित मान में विभिन्न गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए ऑनलाइन लिंक संस्थान की वेबसाइट www.drrmlims.ac.in पर अक्टूबर 2026 के पहले और दूसरे हफ्ते के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को नियमित रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। वेबसाइट का पता है www.drrmlims.ac.in। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अधीक्षण अभियंता के दो पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nwda.gov.in। रेलवे भर्ती बोर्ड पैरामेडिकल श्रेणी के विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए। वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in www.rrbapply.gov.in। पैरामेडिकल श्रेणी के विभिन्न पदों की संख्या है 560। ये पद कौन से हैं, नियम शर्तें आदि क्या हैं, ये जानने के लिए आप इस वेबसाइट से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं rrb.indianrailways.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड, गोपालगंज।
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
7: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामीदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
5: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
6: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़

0: मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द

0: माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खाड़ी नदी की सफाई का अभियान तेज, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। 4 बाल श्रमिकों को अलग अलग जगहों से कराया गया विमुक्त। गांजा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से लगभग आधा दर्जन आरोपी पकड़े गए। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर छाड़ी नदी की सफाई को लेकर तीव्र गति से अभियान शुरू हो गया है। सदर SDO डॉक्टर प्रेरणा सिंह के नेतृत्व में लगातार छाड़ी नदी की मापी का कार्य चल रहा है। एक सप्ताह के अंदर मापी का कार्य पूरा कर अतिक्रमण को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है और लगभग अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। आज भी पदाधिकारियों ने इस कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जहां जहां भी अतिक्रमणकारियों के घरों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं, वहां अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जल्द से जल्द छाड़ी नदी को साफ कर उसमें पानी के संचालन की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर आज भी सदर SDO डॉक्टर प्रेरणा सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
11: जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में पूरी नदी का जीर्णोद्धार किया गया है। आलोक में इस नदी पर अतिक्रमण को उसको चिन्हित करने हेतु अंचल अधिकारी के स्तर से नापी करवाई जा रही है। कुल 2 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच हम लोगों ने नापे में देखा है, जो सच के अंदर तक है, हथियारों से लेकर और आगे RR में। इस पूरे में अभी 800 मीटर तक की नापी कर ली गई है, जिसमें 44 ऐसा अतिक्रमण चिन्हित किया गया है और जिनके यहाँ पर मार्किंग का भी कार्य कर दिया गया है। नगर परिषद को भी इसमें निर्देश किया गया है कि वैसे लोग जो अपने घर के नाले का पानी का प्रवाह छाड़ी नदी में कर रहे हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि वो इस तरीके का बंद करें और जो भी मेघ नाला है उसमें अपने घर के गंदे पानी का प्रवाह करें। एक बार जब अंचल से नापी की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी तो हमारे यहाँ से उस पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी और इस नदी के प्रवाह को पुनः हम वापस करते हैं और इसमें अलग सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
12: जब तक ये प्रोसेस को चालू किया जाएगा,
11: नापी के लिए अभी 1 सप्ताह का समय दिया गया है सभी अमीनों को। 1 सप्ताह के अंदर ही अगर नापी करके हमें रिपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद अतिक्रमण बाद खोलते हुए जो विभागीय दिशा निर्देश है नोटिस का और उसकी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए।
3: श्रम विभाग के धावा दल के द्वारा आज भी कई जगहों पर बाल श्रमिकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसको लेकर कई छापेमारी हुई, जिसमें 4 बाल श्रमिकों को अलग अलग संस्थानों से विमुक्त कराया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित धावा दल के माध्यम से आज थामे में छापेमारी की गई, जहाँ हिंदुस्तान इंजीनियरिंग थामे रोड से एक बाल श्रमिक, शिव शक्ति चार्ट स्टॉल जयप्रकाश चौक मीरगंज से 2 बाल श्रमिक और ऑटो लेथ थामे रोड गोपालगंज से भी 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। इस तरह से कुल 4 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी थामे, सिधवलिया, माझा, उचका गांव, पंचदेवरी, फुलवरिया और हथुआ के साथ पुलिस लाइन के पुलिस बल भी शामिल थे। श्रम अधीक्षक ने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को प्रति बाल श्रमिक 3,000 रुपए की दर से तत्काल आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बाल कल्याण समिति गोपालगंज के समक्ष किया गया तथा संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को उक्त नियोजकों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए अन्य सभी अनुवर्ती कार्रवाई यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर सिधवलिया थाना की पुलिस ने ग्राम बखरौर नया टोला स्थित एक जगह पर छापेमारी करते हुए गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बखरौर नया टोला स्थित सुरेंद्र सिंह के घर के पास पुलिस की गाड़ी पहुंची, तभी पुलिस को देखकर एक आरोपी भागने लगा, जिस पर संदेह के आधार पर पुलिस ने पकड़ा और तथा उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उसके पास से गांजा जैसा मादक पदार्थ मिला है। पकड़ा गया आरोपी सुरेंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय बबन सिंह, साकिन बखरौर नया टोला थाना सिधवलिया बताया जा रहा है। अब इन पर NDPS एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। हत्या के प्रयास में अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक कार्रवाई उंचका गांव थाना की पुलिस ने की, जहां हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी बदरी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह दहीभत्ता गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी को मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करने के बाद अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजा राम पिता जीवन राम साकिन जयपुर थाना कटिया को गिरफ्तार किया। इन पर भी पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। आज इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा कटिया थाना की पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से केस दर्ज था। इसको लेकर भी पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी दिलीप प्रसाद और दूसरा सर्वजीत यादव, ये दोनों नरेश प्रसाद के पुत्र हैं और धोबोलिया गांव के निवासी हैं। इन पर पहले से मामला दर्ज था। पुलिस ने अब इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देशानुसार राम स्वरूप सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढ़िया बरौली में सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों एवं छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित संबल एवं सामर्थ्य घटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन और साइबर हेल्पलाइन सहित तमाम बिंदुओं पर महिलाओं और बच्चियों को जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग की भी आज बैठक हुई। इस बैठक में स्कूलों की व्यवस्था पर फोकस किया गया। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में विद्यालयों की साफ सफाई और कर्मियों की उपस्थिति की जांच की गई। शिक्षकों की उपस्थिति और छात्र छात्राओं की पढ़ाई की समीक्षा में MDM की वास्तविक स्थिति को भी जाँच पड़ताल किया गया। साथ ही शिक्षकों के एरियर और वेतन भुगतान की स्थिति पर भी चर्चा हुई। TRE 1, 2 और 3 तथा विशिष्ट शिक्षकों के एरियर की समीक्षा कर मातृत्व तथा पितृत्व अवकाश से जुड़े आवेदनों पर भी चर्चा किया गया। विद्यालयों के रंग रोगन और मरम्मती के कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य मार्ग स्थित विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया गया। छात्रवृत्ति QTR और प्रेजेंट ऐप के प्रगति की भी समीक्षा की गई। सेवा संकल्प अभियान को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उंचका गांव थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 36 कार्टून अवैध देशी शराब को बरामद किया है। इस मामले में पेनुला खास से शराब तस्कर भीम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उंचका गांव के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह से आज अलग अलग थाना क्षेत्रों द्वारा कुल 22 आरोपियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के प्रयास, शराब की तस्करी, शराब के नशे में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। SC ST एक्ट और आर्म्स एक्ट में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना गया। स्वस्तिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का संचालन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उसके त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत गतिविधियों एवं निरीक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बाल विकास परियोजना कुचायकोट के आंगनवाड़ी केंद्र थाना के दक्षिण कोट संख्या 127 का औचक निरीक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS श्रीमती रंजना कुमारी के द्वारा किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के अंतर्गत प्रार्थना कराई गई, जो अपने आप में एक नवाचार का उदाहरण है। बसडीला पंचायत में भूमि सर्वे का कार्य तीव्र गति से शुरू हो गया है। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी में आज भूमि सर्वे का कार्य कई दिनों से चल रहा है। सर्वे के दौरान जमीन मालिकों से अपने अपने प्लॉट पर उपस्थित रहने तथा आवश्यक कागजात के साथ सहयोग करने की अपील की जा रही है, ताकि सर्वे का कार्य सही एवं व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। सर्वे कार्य में अमीन शिवम कुमार के साथ विक्की कुमार, नीलेश कुमार श्रीवास्तव, संजय सिंह, धनंजय सिंह, राजू राय, बीरेंद्र सहित अन्य स्थानीय लोग सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सर्वे के दौरान जमीन मालिकों की उपस्थिति रहने से जमीन की पहचान एवं संबंधित जानकारी दर्ज करने में सुविधा होगी। सभी संबंधित जमीन मालिकों से अपील की गई कि वे सर्वे टीम का सहयोग करें और अपने संबंधित दस्तावेज के साथ जमीन पर उपस्थित रहें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ठाड़ी नदी की सफाई का अभियान तेज, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। 4 बाल श्रमिकों को अलग अलग जगहों से कराया गया विमुक्त। गांजा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से लगभग आधा दर्जन आरोपी पकड़े गए। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
16: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
18: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
19: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
20: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
19: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
17: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
21: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
22: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
23: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
23: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइस के साथ रेडियो M6.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप तो जानते ही हैं, जो हमारे पुराने श्रोतागण हैं, कुछ नए श्रोतागण भी सुन रहे होंगे तो उन सभी से मैं निवेदन पूर्वक बता दूँ कि नंबर है 72 77 16 65 96। इस पर टेक्स्ट मैसेज करना है और मैसेज में अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, उस स्थान का नाम टाइप करना है और फिर आप ध्यान देंगे कि गाने की फरमाइश पुराने ही करनी है, क्योंकि यह रात्रि का समय है और रात्रि के शो में केवल पुराने गाने ही अलाउ है। तो आप लोग समझेंगे थोड़ा सा और पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपना हाजिरी देंगे, फिर हम आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि भैया मुझे सॉन्ग सुनना है, ओ किसी और से मिल के आ रहे हैं। माय नेम इज दीपक एंड जेलर, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और आपकी गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। दिलीप राम जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा बुलेट चौधरी जी भड़रिया थाना क्षेत्र 3 भेड़िया से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना है, ईमान डोल जाएंगे। ओ चलिए, आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे मिसेस, चलिए फिलहाल हम गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइश किए हुए हैं दीपक एंड जेलर जी, तो इन्हीं के गाने को प्ले करते हैं। जो भी श्रोतागण जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, वो अभी टेक्स्ट मैसेज करें। जितनी जल्दी मैसेज हमारे पास पहुंचेगा उतनी जल्दी आपकी फरमाइश पूरी होगी, तो आप जल्दी से पहुँचाएँ और जल्दी से गाने के साथ इंजॉय करें और किसी को सुनवाएं। फिलहाल गाने को हम प्ले करते हैं दीपक एंड जेलर जी की और सुनते हैं रेडियो M6.4 FM पे।

कमाल के सॉन्ग सुन रहे हैं आप सब रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं दीपक एंड जेलर जी, लिखे हुए हैं कि थैंक्स भैया, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और बने रहे हमारे साथ। आगे कई श्रोतागण की फरमाइश भी पूरी होंगी और कमाल के गाने की फरमाइश भी आए हैं। आगे मैसेज और लिखा गया है कि गाना पतली कमर लंबे बाल, सुरेश जी त्रिब्रवास से मैसेज किए हुए, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और आगे मैसेज पहले पहुंचे हुए हैं और गाने के फरमाइश किए हुए हैं दीपक एंड जिलर जी की फरमाइश तो हम सभी अभी सुन रहे थे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं दिलीप राम जी की। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, मेरे जुल्फों को ना छोड़ो, मेरे जुल्फों को ना छेड़ो, सुनाना है आपको। और शगीर जी और निशा जी, रोशनी जी, वीरेंद्र भैया जी को और सभी सुनने वाले को, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे।

रेडियो एम जी एम 94.4 FM सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। दिलीप जी, आपसे निवेदन है कि आप बीच में से गाने के फरमाइश का नाम ना बताएं, आप क्लियर हो जाए कि कौन से गाने सुनने हैं। आपके द्वारा फरमाए गए सॉन्ग से मिलते जुलते कई सॉन्ग मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है हमें कि हम आपको सुनाए तो कौन से सॉन्ग सुनाए। कुछ नए गाने भी आ रहे हैं, कुछ पुराने गाने भी आ रहे हैं, लेकिन आपके लिखे गए शब्दों के अनुसार तो कौन से सुनाए आप क्लियर बता देते तो बेहतर रहता। फिलहाल हम आपके गाने को रोकते हैं, क्लियर बताने के प्रयास करें, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। फिलहाल आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए, मैसेज में गाने की फरमाइश है और गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। बुलेट चौधरी जी का और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, ईमान डोल जाएंगे। कुछ मैसेज भी पहुँच चुके हैं और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से, और मुझे गाना सुना दीजिए फिल्म अकेले हम अकेले तुम। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरे, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप बन रहे हमारे साथ, थोड़ा सा वक्त दें हमें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर मैं सन्नी पटेल, सॉन्ग बहुत जताते हो चाहा हमसे। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और यहाँ पे दिलीप जी लिंक शेयर कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश करते हैं।

और आपने गाने के फरमाइश किए हुए ये गाने हमें मिले, लेकिन आपने जो बोल दिए हैं थोड़े उल्टे बोल दिए हैं, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन हो गई थी कि कौन से गाने सुनाए आपको। तो फ़िलहाल आपके फरमाइश हम प्ले करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ में और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छिम 94.4 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छिम 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि मधुसरिया से कहते हैं गुड इवनिंग सर सभी दोस्तों को, और इस मैसेज को करते हैं राजीव कुमार यादव जी। थोड़े से उल्टे पुल्टे मैसेज लिखे हुए, कोई बात नहीं, हम थोड़ी से सुधार किए हैं। और अगले मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल करने के लिए शाम को। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, आगे भी सुनते रहें, बने रहें हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, प्ले कर दीजिएगा। मैं सनी पटेल, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, और जैसा कि मालूम हुआ है कि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम आज थावे माँ का दरबार जाकर हम और मैडम जी पूजा अर्चन की और उनका आशीर्वाद लिए, फिर वहाँ से लछवार देवी माँ का जाकर आशीर्वाद लिए। सोचा था कि आपसे मिलने पर समय नहीं था, वहाँ से फिर हमें रामायण मंदिर चकिया जाना था, वहाँ गए, प्रार्थना की है। चलिए अच्छी बात है, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके मैरिज एनिवर्सरी पे। आप हमेशा हंसते मुस्कराते रहें, इतने सारे दर्शन पूजन की सारी शिकार हो, आपके ऊपर हमेशा खुशियां का बहार हो। फिलहाल आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए थे, मैसेज को देखते हैं, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचे हुए लिखा गया है कि बुलेट चौधरी भड़रिया थाना क्षेत्र 3 भेड़िया से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। ईमान डोल जाएंगे। तो इनकी फरमाइश हम प्ले करने को बोले थे दिलीप जी के गाने के समय, और फिर उनके गाने हम सुनाए। तो इनके गाने हम प्ले करते हैं। दिलीप जी आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

कमाल के सॉन्ग सुनने हैं हम सब रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मिसेस पहुँचे हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और गाने की फरमाइश करते हैं सुरेश साजी, पतली कमर लंबे बाल, त्रिब्रवा से मैसेज किए हुए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और सुनेंगे आपके गाने के साथ, इंजॉय करेंगे हम सभी। आप भी बने रहे हम सबके साथ, अपने गाने के साथ साथ इंजॉय करें रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए मेरे पास और आगे गाने की फरमाइश लिखा गया है कि प्लीज़ सर मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके ही सॉन्ग प्ले करने ही वाले थे, तब तक आपका मैसेज भी पहुंचा हुआ है तो आपके ही गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे राजू कुमार यादव जी कहते हैं सॉन्ग सुनना है, तो राजू जी आपकी फरमाइश तो हम पूरी किए हैं, तो आप दूसरों को भी मौका दें ताकि दूसरा कोई भी अपने गाने सुन सके। फिलहाल बन रहे हैं आप, आपकी भी बारी आएगी तो हम आपकी भी फरमाइश पूरी करेंगे। अब इस सप्ताह सुना दिए तो अगले सप्ताह आपकी बारी तो बिल्कुल आएगी। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं और गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं सन्नी पटेल जी की, और गाने का फरमाइश किए हुए हैं बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निगाह हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल। बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सब।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सब रेडियो झिम 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है, प्लीज़ सर सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो समय हमारे पास बहुत कम बचे हुए, देखते हैं, कोशिश है आपकी फरमाइश हम प्ले कर पाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यह सॉन्ग कैसा लगा? मैं सन्नी पटेल, बिल्कुल काफ़ी प्यारा आपके द्वारा फरमाए गए सॉन्ग अभी तो हम सभी सुन ही रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचे हुए और आगे मैसेज गाने की फरमाइश प्ले करते हैं हम। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सर नेपाल बॉर्डर से मैसेज किए हुए हैं और गाने की फरमाइश में कहते हैं कि ये सॉन्ग हमें होठों पे आने लगा है। और फिल्म खतरों के खिलाड़ी से मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ों में सॉन्ग तुमसे बना मेरा जीवन, प्लीज़ इस सॉन्ग को हमें सुना देंगे? तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे।

94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें इस फरमाइश का और समय जो है समाप्ति के बहुत करीब है, आगे मिसेज पहुंचे हुए और अगले गाने के फरमाइश हम ले करते हैं MD नौसाद जी की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है फिल्म अकेले हम अकेले तुम और गाने का बोल जख्म दिया है जो ना फिर भरेंगे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, एक और गाने प्ले करने की कोशिश है, फिलहाल एंजॉय करते हैं आपके गाने के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। यहाँ पे लिखा गया है कि हॉटली दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सुनो बाबू, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए और आगे भी सुनते रहें एंजॉय करते रहें अगले गाने के साथ।

चिकनी तड़के उमर की उठा कड़कती कमा कातिल अदा।

रेडियो रेम छीम 94 FM सुनने आप सब। और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और शो जो है समाप्ति के करीब से आगे निकल रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कोशिश करते हुए अंतिम गाने हम प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करते हैं संदीप प्रजापति जी, बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, और गाने की फरमाइश करते हैं चांद के पार चलो का टाइटल ट्रैक। और ये सॉन्ग अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं। दोस्त हैं संजय रॉकी, दुर्गेश, रोहित शर्मा, गोकुल शर्मा और शुभंकर सिंह। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, इस कार्यक्रम से विदा लेंगे, लेकिन आपके फुल गाने सुनेंगे हम सभी। और जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना, इस समय जो है हमारा समाप्ति का हो चुका है, तो इस कार्यक्रम को समाप्त तो करना ही पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहे रेडियो एम सी एम 94 FM। अंतिम गाने के साथ इंजॉय करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विदुषी उमा गर्ग का राग मियां मल्हार में गायन। आपको तबले पर संगति दुर्जय भौमिक ने, हारमोनियम पर पारोमिता मुखर्जी ने और सारंगी पर रहे साथ एहसान अली। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान

0: को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से पीओजेके में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema in a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives, and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the 2-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force, heads of states and union territories in New Delhi today, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said, "Government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi today met श्री श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी ऑफ श्री पेजावरा अदोक्षजा मठा उडुपी अलोंग विद अदर डिग्निटरीज इन न्यू दिल्ली. On the occasion of Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Shri Vishvesha Teeth Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Shri Vishvesha Teeth Swami continues to inspire countless people." He said, "The various initiatives taken under the run up to his birth centenary will further carry forward his noble ideals." At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal in the sporting event by thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishan. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi also assured the nation of at least a medal each at the Asian Games. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semi-final tomorrow. In Wushu, Roshibina Devi advanced to the semi-finals of the women's 60kg event. She secured a 5-0 win over Chu Mansin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarterfinals in the men's 55kg preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano today. The Indian Meteorological Department has issued red alert for extremely heavy rainfall over isolated places in Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. For Delhi, IMD said the national capital will witness mostly clear skies with no rain. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Joey or MJM.
1: Suna dil se.
2: Hello? Hello? Kya bola tha?

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494। जी हां, 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
4: हेलो
5: जी मैम, नमस्कार।
4: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम। मैं
4: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है।
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए। मैम तो फोन भी लगा रहे थे, ट्राई कर रहे, फोन भी लग गए। मैम
4: कहाँ से बोल रहे हैं आप।
5: मध्य प्रदेश MP से।
4: तो मौसम कैसा है उधर का।
5: जी हमारे यहाँ तो मैम अभी कल शाम को बारिश हुआ था, अभी तो धूप है मैम।
4: अभी धूप निकला हुआ है।
5: जी जी जी मैम।
4: तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा।
5: जी ये फिल्म है आंदोलन और गाने को बोला है आई जी हेल्प तुझे मेरी यार। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
4: ओके जी, वैसे गाना तो बहुत ही अच्छा।
5: जी
4: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
5: धन्यवाद।

0: हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
1: मैम,
0: में। जी
1: कैसे
0: जी
1: हैं मैम?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
1: आपसे
0: क्या हो रहा था अभी?
1: कुछ नहीं मैम, बात कर रही हूँ आपसे, कॉल लगा रही हूँ। अभी तो टाइम मिला, जस्ट लगा।
0: तो
1: कैसे मैम, अच्छी है ना?
0: जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो ठीक ठाक है ना?
1: अच्छे हूँ, बस
0: ये रहना चाहिए।
1: लेट से आपके पास कॉल लगा रही हूँ। आपसे बात करके मैं बहुत खुश होती हूँ।
0: अच्छा
1: मैम, गाना सुन रहा है?
0: दीजिए,
1: विदाई वाला, बाबू के घर छोड़ के बेटी सिया के घर चली।
0: जी एक बार और बता दीजिए।
1: विदाई वाला सुना दीजिए। बाबू के घर छोड़ के बेटी सिया के घर चली।
0: जी तो क्या आप मुझे जाके बताएंगे ये दो लाइन?
1: ठीक है।

0: गाना
1: हाँ
0: जी बहुत ही अच्छा, और ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको
0: जी थैंक यू।
1: हम अपने घर वालों से सबको जितना भी सुनने वाले भाई और बहनों को सबको सुनवाना चाहते हैं।
0: ओके जी, वैसे क्या करती हैं आप?
1: जी कुछ नहीं, मैं घर से जितना सिलाई है, घर का काम है, सब देख रेख करना सब हमको जिम्मेदारी है। सही है ना?
0: तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है?
1: जी
0: चलिए
1: शादी हो गया है मेरा, फिलहाल
0: जी आपको शादी हो गया है?
1: जी मेरा भी शादी है, हम अपनी लड़की के शादी किए, 2.5 साल हुआ है। आपको कहीं समझ रहा है? कभी नहीं हुआ है?
0: नहीं, आवाज से तो पता नहीं था।
1: आवाज तो भी सबको ही पता चलता है कि इनके शादी भी नहीं हुआ, पता नहीं आवाज को चेंज करना पड़ेगा।
0: जी जी बिल्कुल, आवाज ऐसे लगी एकदम अभी।
1: नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे, सिस्टर की जैसे हो। मैंने अपनी लड़की के शादी की, उनसे भी एक लड़की हुई थी।
0: अच्छा जी,
1: जी
0: चलिए आप तो मुझे कंफ्यूज ही कर दी।
1: जी जी नहीं नहीं कंफ्यूज बात हो, हमेशा की तरह से बात करते हो।
0: याद रखेंगे।
1: जी जी
0: चलिए
1: जी मैम बाय।
0: जी तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्कार माया।
7: नमस्कार,
6: कैसन बानी
7: जी? हम तो ठीक बानी, रहुआ बताएं कि रहुआ कैसन बानी?
6: हम ये तो ठीक है बानी सा, रहुआ लगा देव आशीर्वाद से।
7: है जी, तो इसे रहुआ कहाँ से बोला जाए?
6: हम बंजारी से बोलता नहीं, बंजारी पुल से इनके सामने गोपालगंज से।
7: जी, और नाम?
6: हमारा नाम परिवम साई टेलर राघव जी।
7: और बताइए, नाश्ता वास्ता हो गयी?
6: मैडम नाश्ता अभी ले तो 9 बजे नाश्ता हो जाएगा, आदमी दुकान से चला वाला।
7: यहाँ पे भी तो सब क्यों बढ़िया बाटे,
6: बढ़िया के काम बा।
7: जी जी,
6: और पूरी सॉन्ग सुने का बहाना दे।
7: जी बिल्कुल, बता दी।
6: सॉन्ग गुंजन सुन के धरामुआ सही बा, अलगे अलगे भाई सही सॉन्ग बा चला दे।
7: जी जी, और गाना के उसे सुनाए के विचार बनी?
6: पहले तो रोवा के जितना रेडियो रिमझिम के टीम बा सब के ऊके, जितना रेडियो रिमझिम जो सुनता वो सब के ऊके साथ में सुनना चाहता नहीं।
7: जी बिल्कुल, तो चले फिर और गाना प्ले करता नहीं।
6: प्रणाम, नमस्कार मैम।
7: जी प्रणाम, नमस्कार। सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम, मेरा कॉल इतना मेहनत से करके लगाया था और कट गया
0: जी,
1: इसके लिए बहुत अफसोस है मुझे।
0: कोई बात नहीं, दोबारा तो लग गया ना, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा
1: आज। मुझे एक प्यारा सा गाना सुनाइए, गाने का उम्मीद है कि ये सबको अच्छा लगेगा। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, सही वाला सुनाना है
0: जी। जी क्या मुझे जाके बताएंगे दो लाइन?
1: मुझे आता नहीं गाना गाने, और उस दिन रानी जी बोल रही थी कि वो बोलते हैं मेरा आवाज अच्छा नहीं है, मेरा आवाज अच्छा है नहीं लेकिन गाना गाना भी नहीं आता है।
0: नहीं नहीं, आपका आवाज बहुत ही अच्छा है, कोशिश करिए कि कॉल करने के बाद दो लाइन गा के सुनाते तो सही रहता।
1: मैम तो अगली बार कोशिश करेंगे और रानी जी को यही बोलेंगे, उनका फरमाइश आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर आता है दुकान पे, हम कस्टमर को रोक करके उनका फरमाइश सुनते हैं।
0: जी ये तो बहुत अच्छी की बात है,
1: मतलब उनको बातों के साथ उनका फरमाइश भी अच्छा लगता है।
0: जी जी,
1: लंबा बात होता है लेकिन मतलब अच्छा होता है और गाने का फरमाइश अच्छा आता है, और जो हम सोचते हैं कि ये वाला गाना फरमाएंगे वही उनका मतलब आ जाता है।
0: जी जी, तो ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: डेडिकेट है सभी रेडियो दोस्तों, सभी आरजे को, आपको। मैम आज पूरा रिकॉर्डिंग आपका है?
0: हाँ जी।
1: तो आज चलेगा ये कि कल?
0: नहीं नहीं, आज नहीं तो कल, दोनों दिन में बन ही जाएगा।
1: मैम तो मेरा बातों को उतना दिल पे नहीं लीजिएगा जो बोले हैं कल के लिए।
0: जी जी कोई बात नहीं है,
1: जो हमको अच्छा लगा वो बोल दिए।
0: जी जी आपने सही बोला।
1: जी मैम, हम फैमिली में सुन रहे थे इसलिए मतलब इधर उधर हो गया।
0: जी जी कोई बात नहीं है।
1: ओके मैम, तो इसको प्ले कीजिए गाना को।
0: जी जी चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम एडवांस में धन्यवाद और बाय बाय।
0: जी बाय बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
1: ओके मैम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
7: हम भी कौन मैम बोल रहे हैं?
6: नहीं,
7: मुनरमा मैम।
6: हाँ जी,
7: मैं जल्दी कार्यवाल नंबर 1 से।
6: जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
7: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
6: जी
7: आप कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं।
6: जी जी, हम भी बढ़िया।
7: आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए।
6: बता दीजिए।
7: अब तेरे दिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम।
6: क्या मुझे ये गाना आप गा के बताएंगे? दो लाइन।
7: दो लाइन। अब तेरे दिन जी लेंगे हम,

0: लेंगे हम। और सुनाना है
1: जी।
0: सबसे पहले आपको, अख्तरी को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी दोस्तों को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। आज बज जाएगा क्या?
1: जी जी, कोशिश रहेगा कि आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ओके मैम, जब आपका सुविधा हो तब बजा दीजिए।
1: जी जी, तो क्या है ना, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो कॉल आगे पीछे हो सकता है।
0: कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाना सुनाने के लिए और फोन रिसीव करने के लिए।
1: तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 एफएम में।
1: मैं बोल रहा हूँ महंगा राव, मुझे गीत सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: क्या भोजपुरी गायिका एक है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा का छठ का कोई गीत है?
0: अच्छा, कोई भी छठ का, शारदा सिन्हा का कोई भी गाना?
1: हाँ हाँ, कोई भी गाना
0: जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: सुनवाना अनिल, सुनील, शशिकला, महेंद्र राउत, मैंने अपने खुद और प्रेम कुमार, ऐसे हमारे दोस्त और आप लोग सभी श्रोतागण। कौन बोल रही है मैम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा, मैं पहले सोनी भी थी
0: जी।
1: तो दो तीन बार किए लेकिन मुझे गाना सुनने को नहीं मिला।
0: अच्छा।
1: बहुत दिन छोड़ दिए थे लेकिन आज फिर हमको याद पड़ा गाना एक सुनने को दिए, तो फिर आज आपको आपको फोन किए। बहुत दिन हो गया, अब सुनाएंगे गाना। ये
0: गाना ये आपका आज नहीं तो कल बज जाएगा दोनों दिन में।
1: मैं तो चार दिन पांच दिन तक इंतजार करते रह गया लेकिन सुनने को नहीं मिला पहला गाना। देशभक्ति एक गाना खोजे थे लेकिन मिला नहीं, बहुत दिन हो गया, करीब तीन महीना पहले का बात।
0: अच्छा जी, तो पहले का तो बात मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तो अभी न्यू हूँ, तो अभी जो आप रिकॉर्ड करा रहे हैं तो गाना आपका आज नहीं तो कल बज ही जाएगा दोनों दिन में।
1: तो शाम को ही बजेगा ना?
0: जी, पाँच से सात के बीच।
1: ठीक है, तो
0: ठीक है जी, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है, ठीक
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: बहुत अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो पूरा सम्मान।
6: नमस्ते
5: मैडम। नमस्ते।
6: शुक्रवार को हम लोग गाना सुनने के भूलाई किया था, तो गाना नहीं सुना है आप लोग।
5: जी तो किस?
6: हेलो।
5: हाँ जी,
6: आप ही रहते थे, आप ही रिकॉर्ड किए थे
5: गाना आपका, उसके अगले दिन बज गया।
6: नहीं, शनिवार को हम लोग सुना तो नहीं बजा।
5: हाँ, तो उसके अगले दिन बजा होगा फिर।
6: फिर कल संडे थे न?
5: नहीं तो आप
6: संडे
5: जी, आप जो रिकॉर्डिंग कराई थी वो रिकॉर्डिंग बज गया
6: तो नहीं बजा, हम लोग का गाना नहीं बजा। हेलो, हम लोग दो दिन शुक्रवार को सुना और शनिवार को सुना। कल संडे था तो संडे को तो हॉलीस्ट कॉन्टेस्ट चलता था।
5: तो आप रिकॉर्डिंग कब कराई थी और मेरे को पहचानती हैं आप?
6: हाँ, आप तो मोरारवा बोल।
5: हाँ जी।
6: और एक और जो रोशनी थी ना, वो रिकॉर्ड की थी।
5: अच्छा जी, तो कहीं बचा होगा कॉल तो आज बजेगा।
6: हो सकेला कहीं आज बजेगा, तो आज हमको गाना सुनना है दो सौ।
5: बता रही है,
6: उड़ने की कोर से पूछो अपने लूर का आई बेगोरी, ये गाना सुनना है हमको।
5: जी जी, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
6: हम लोग आप ही को सुनाना चाहते हैं और अपने घर लोग को सुनाना चाहते हैं।
5: ओके जी, वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
6: हम लोग वृंदावन से बोलते हैं, थावे क्लब से।
5: अच्छा, और अपना नाम क्या बताएंगे?
6: मेरा नाम सुमन कुमारी था।
5: सुमन,
6: तो ये है, हम लोग कई बार फोन किए थे आप लोग के पास।
5: अच्छा,
6: आप नहीं पहचानते हैं हम लोग को? बुझाता
5: है? नहीं नहीं, पहचानते हैं।
6: हाँ नहीं पहचानते हैं, इसीलिए पूछते हैं। बोलिए।
5: नहीं नहीं, क्या है ना कि बहुत दिनों बाद आप कॉल की है ना, इसकी वजह से।
6: फिर उसको सुबह को फोन किए हैं तो गाना नहीं बजा, फिर बोली आज लगाते हैं, लगेगा तो आज बोलेंगे कि मेरा गाना नहीं बजा।
5: अच्छा, ओके जी, तो

0: नमस्कार,
1: क्या हाल चाल है?
0: जी हाँ मैम, आप बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: मौसम
1: धूप तो निकला हुआ है।
0: हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं निकला।
1: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं?
0: बाराबंकी लखनऊ।
1: तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: अभी सुशिंदर सरसाज का एक गाना आया है ना, सिफारिश वाला।
1: कौन सा?
0: सिफारिश। सिफारिश,
1: सिफारिश। क्या आप मुझे गा के बताएंगे? बोलाइए।
0: गाके तुझे भेजा है खुदा ने महताब से, आई किया है जैसे। तो मैडम आई है निकल के नकाब से, सिफारिशों के गौर की, सिफारिशों पे गौर कीजिए, ऐसे है वो।
1: जी जी। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
0: जी अपनी, सबसे पहले तो अपनी वाइफ को सुनाना चाहेंगे, के बाद आपको, रेडियो रेंजिंग परिवार को और तमाम रेडियो रेंजिंग सुनने वाले श्रोताओं को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना का।
0: सुनी मैम, चली गई क्या? क्या है
1: जी, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता।
0: अच्छा,
1: प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके मैम,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते,
6: क्या हाल है?
7: हाल तो ठीक बा, अपन बताई जुआ कैसे बनी?
6: हाँ ये ठीक बनी सर। मनोरमा दीदी?
7: हाँ जी।
6: आप भारती दीदी कहाँ बनी?
7: वहाँ के बानी, काम करता हूँ।
6: अच्छा, तो चली ना?
7: हाँ चली।
6: खाना वाना हो गए?
7: हाँ खाना तो हो गए सर। और भैया?
6: हाँ हो गए। ठीक बा ना?
7: जी जी सब बढ़िया बा।
6: भैया सुन रहे
7: ना? अभी तो
6: भैया झगड़ा कर रही हूँ।
7: अच्छा जी,
6: कल के गीत ना के बाद लिंक करूँ भैया के आई थे।
7: अच्छा अच्छा, तो हम ना चला तो भारती जी चला।
6: तीन बजे के भेजले भेजले 5 बजे गाँव के पुरना बजाई।
7: अच्छा कौन बात ना, आगे पीछे हो जाला।
6: तो रघुआ चला थी, रघुआ तो आत रही थी, रघुआ बुझा दिल वही में।
7: जी जी, तो ये बात कह चाहती हूँ, बहुत सारा लोग बात तो सबके भी तो देखे के पड़ेगा ना।
6: तो मतलब जो आगे भेजियो का बजा देवे के चाहिए, पीछे भेजियो का पीछे बजाए के चाहिए।
7: ये बात रहो ठीक बा, लेकिन वहाँ से पहले भी भेजल रहोगे वही से बजा लोगे।
6: अच्छा
7: कौन बात नहीं के, टाइम कम हो ये की वजह से ना बाजे हुई, आज बाजे का छूटा लगे का।
6: 3 बजे के भेज रहे हैं, 2 घंटे टाइम रहे।
7: अच्छा चलिए कोशिश कर लीजिए आज बजा के। वही से आज कौन गाना सुने?
6: भक्ति सुन सके में बजा दी। आराम में दोबारा मिला जाइए ना।
7: कौन सा?
6: आराम में दोबारा मिला जाइए ना।
7: कई गाना वो जाके बता सको तो नहीं?
6: हाँ
7: बता दी।
6: खेसारी लाल की आवाज में बावे।
7: ठीक बा, गाना ही क्योंकि सुनवाए।
6: आराम में दोबारा मिला जाइए ना।
7: ठीक
6: है, पहले रहुआ के सुनवाए भारती दीदी के, और जितना सुनता है सब के सोनी दीदी के, और गणेश भी सुनी हन और मनीष भी सुनी हन, जितना सुनते हैं सब के।
7: ठीक बात है, चलिए गाना प्ले कर दे।
6: ठीक बा, नमस्ते।
7: नमस्ते, एक मिनट अपन नमा बता दी।
6: नमा करी नारायण से
7: चलिए, तो फिर प्ले करता नहीं सुनते सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते,
1: हाल चाल तो ठीक बा? अपन बताइए, रवा कैसे मानी?
0: बिल्कुल
1: ना, बता दी।
0: गणेश कुमार
1: जी
0: बात कर रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: कल के हम गाना नहीं खेला जाओ?
1: गाना नहीं खेला जाओ
0: ना। आज मनोरमा दीदी रहोगे बताए कि हम तो कौन 4 बजे या 4:30 बजे मैसेज ना भेज रहे हैं, बताए वो मेरा भेज रहे थे तो हम कौती चलने भाई हमारा से पहले जो हम फरमाइश आई हुई तो हम बजाय कोनो बात नहीं थे। बाकी हम गाना के फरमाइश भेज ले 3 बजे एकदम राइट 3 बजे हमारे गानों में नहीं बजे हम कहें कि आप बजाय मैं बजाय अपने वेट कर कर कर कर 5 बजे तो चल गए।
1: अच्छा तो हम सोना करते टाइम कहीं भागी?
0: अरे तो रहो चला रहे।
1: अच्छा हमारे टाइम भैल बा
0: मनोरमा दीदी, हम जब ले शो खत्म ना रहे तब ले हम सुनत रहे।
1: अच्छा
0: हमारे बहुत अच्छा लगे सुने में।
1: जी जी,
0: तो जैसे कि ना होला कि कोई गाना वाना बजेला तो अथी हो जाला दुख यानी मन हो जाला।
1: ना ना ऐसा बात नहीं है, ऐसा मत करें कहे से कि और भी तो लोग बा वहाँ सबके भी तो बजावे के पड़ेला ना।
0: ना तो संडे के दिन स्पेशल तो बजावे के चाहे ना बताए।
1: हाँ हाँ आज बात दी
0: ना छोड़िए आज भेजबे ना करम फरमाइश
1: तो ना खिसी आई जला
0: ना तो बोल दे भारती दीदी से रहुआ।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ऐसा मान ली की गाना के फरमाइश भेज रहे भाई भक्ति, तो अगर भक्ति ना बजा गई तो बोल देते हैं कि भाई भक्ति ना बाजी दूसरा गाने के फरमाइश भेजी तो वहाँ का वो नहीं भोजपुरी सुन भक्ति बाजेला।
1: अच्छा
0: अब बताए अभी दशहरा होता तो सब लोग तो भक्ति गाना सुनी?
1: जी जी बिल्कुल।
0: भक्ति तो बाजते नहीं थे।
1: अच्छा तो बाजी हमने के सर जी
0: जाए।
1: अच्छा ना तो ऐसा कोनो बात नहीं है, राउत भी गाना बाजी का और लोग भी तो जुड़ेला तो बारी बारी सबके बारे।
0: अच्छा

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain
4: दोस्तों। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो जी,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM
1: नमस्कार मामा, कैसे
0: में। नमस्कार
1: हैं?
0: जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक
0: तो क्या हो रहा है?
1: हूँ।
0: अच्छा जी, तो खाना वाना हुआ कि नहीं?
1: अभी कहाँ।
0: अच्छा जी, था तो आज लेट हो गया कॉल करने में।
1: नहीं, कर तो रहा हूँ लेकिन अभी नहीं रहा।
0: क्या करिएगा, ये कॉल करता है तब तो दूसरा आ जाता है।
1: आज एक रिक्वेस्ट है
0: जी,
1: यार, लिखे लिखला लिखल हाथ के लकीर में,
0: नहीं खुद तकदीर में जान, यही वाला
1: खेसारी लाल का नहीं है, हमारा कुछ अलग रहता है,
0: समझते हैं आपके गाने को।
1: इसलिए हमारा खेसारी लाल का नहीं है, कुछ अलग है। कर लीजिए आप, पंकज मतलबी का है, नेहा सिंह का है, जुगल है।
0: तो गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे
1: आप दोनों को, जितने सुनने वाला है सबको।
0: जी, वैसे नाम बता दीजिए और एड्रेस। ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: नमस्ते
0: में। नमस्ते, कैसी हैं?
1: दी। राधे राधे।
0: राधे राधे जी,
1: बिल्कुल
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आप रानी जी बोल रही है ना?
1: ठीक
0: जी,
1: हूँ। आप
0: आपको
1: बताएं।
0: सब कोई मिस कर रहा था लो।
1: जी, कॉल के द्वारा।
0: जी, अभी बोल रहा था लो कि रानी जी कॉल नहीं है, तो हमने बताया कि नहीं, अभी तो कॉल नहीं, पर आप कर ही दी।
1: और इंतजार सफल हुआ कि ना,
0: जी बिल्कुल।
1: और नाश्ता उसे कर ही नहीं दी।
0: हाँ जी, नाश्ता तो हो गया, और आप ही हैं तो?
1: जी, नाश्ता हो गया है। और
0: जी,
1: आप अच्छी है ना?
0: मैं तो ठीक हूँ, और आप ठीक ना? तबीयत तो सही है ना आपकी?
1: और तबीयत अच्छी है। आज मेरी थोड़ी सी अंदर से मेरा हॉट हो चुकी हूँ। और मेरा एक भाई जाने वाला है सऊदी, कल परसों निकलेगा। और उसके और जो मेरी वार्निंग थी ना दी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं अंदर से टूट गई हूँ। और ऐसा फीलिंग हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और लाइफ में मैं कभी भी किसी से शिकवा शिकायत नहीं रखी हूँ, ना कोई चीज मांगी हूँ। बाकी मुझे दिन मंगले मुझे हर चीज मुझे ला कर देता था। है तो उम्र में छोटा, बाकी मुझे प्यार बहुत ज्यादा दिया है थी। और मैं क्या बताऊँ, मुझे अब अंदर से जिस घर में जा रहे हैं, रुआई की सुबह कुछ नहीं आ रहा है। इंसान जीवन में अगर तरक्की करे ना दिया, अगर एक पैसा के लिए इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने जितने में हो उतना ही में कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। इसलिए भी पैसा बड़ा मेहनत कराता है
0: जी
1: और है मेरे से उम्र में छोटा। अब मैं बताऊं आपसे, कभी भी हाल ही में मेरा जब रेडियो फूटा था, तो
0: जी
1: मुझे एक दिन के नागा को अगर मुझे जाकर नया रेडियो 1200 में खरीद कर ला कर दिया है। और मैं बताऊं, मैं रेडियो 9-10 रेडियो खराब कर चुकी हूँ। ये 11वां रेडियो है मेरे पास।
0: अच्छा
1: और मैं हेती चुकी इसे सुनते आई है ना। और पहले मेरे दादाजी भैया भैया सब लोग सुनता था। और उन सभी को मेरी तरफ से जो जो मेरे के पूछे हैं, रानी की तरफ से अगर नमस्ते प्रणाम। और मैं आज मिस कर रही थी। और देखिए, पहले तो मैसेज उसके मोबाइल से थोड़ा बहुत कर लेते थे, एक दोबारा अपनी तो हमें बात भी हुआ है। और मोबाइल भी लेकर जा रहा है, और छोटा फोन होगा तो आप लोग से बात होगा। और मैं बताऊं दी, लाइफ में कभी भी मुझे कोई भी चीज के आज तक ले, और मैं हेती चुकी से कभी भी मैं अपने भाई लोग से कोई चीज मांगी नहीं हूँ। बाकी दिन मंगले मुझे हर एक ख्वाहिश लिया अगर पूरा किया है थी। और परदेश जाने के बाद, और एक बात और है, वो जाते जाते एक बात बोलता था दी, के पता है दी, तुम्हारा जब शादी होगा तो हम शादी में नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद देखिए, अगर वो भी सारी पूरा हुआ तो अब देखिए भगवान के दया से मेरी शादी ऐसे होती है, आगे सब होती है। और जो कहा वो पूरा कर दिया दी, और मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है दी, बहुत ज्यादा। मैं ऊपर वाला से दुआ यही करेंगी, कुछ था अतरा मंगलमय हो, और जहाँ भी जाए सही सलामत रहे दी, मेरा उम्र लग जाए। और मुझे जितना प्यार दिया है ना, सच में करेंगे, एक प्यार तो माँ बाप से मिल जाए, बाकी मुझे माँ बाप से ज्यादा उससे मिला है दी, बहुत ज्यादा मिला है,
0: चलिए
1: बहुत ज्यादा मिला है दी। मैं उसके बारे में जितने बोलूँ उतना कम पड़ जाएगा।
0: चलिए, कोई बात नहीं है, फिर जल्दी, बहुत जल्दी वापस आएंगे वो भी।
1: जी। और परदेश तो जाने के बाद धंधे करती है, 2 साल 3 साल के तो कर्ज हो जाता है। बड़े वाला भैया जब गए थे तो 8 साल के बाद हुआ है,
0: 8 साल?
1: 8 साल के बाद। और जो हम लोग स्टार्टिंग में जो स्थिति था ना दी, ये खाने की जब वो दौर याद आता है, मेरा तो भगवान बहुत कुछ दिए हैं, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए हैं दी, ऊपर वाला बहुत कुछ दिए कि अगर हम चाहें तो दूसरे किसी के खिला सकते हैं, दे सकते हैं। और मैं और कोई वो काम करे या ना करे, बाकी मैं अपने घर में उस चीज करती हूँ। अब मुझे कोई रोक टोक नहीं करता कि ये चीज तुम काहे दी काहे की। तो आज मैंने सोचा था कि आपसे बात कर लूँ। अब मैं जी लेट सी इसलिए किए कि आपसे जरूर बात हो। और मैं बताऊं, जो मेरी सिस्टर आपके बारे में जो बोल रही थी, आपकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुई रेडियो यार।
0: चलिए
1: बहुत खुश हुई।
0: तो रानी जी, मैं आपको बात बता दूं कि ऐसे इमोशनल नहीं होते, जब आप ना कहिएगा तो कैसे जाएंगे, आप ही बताइए।
1: वो तो बात है दी। और मैं सच बताऊं, मैं उस दिन खुद कह रही थी कि तुम जाएगा उस दिन मैं हट जाऊंगी, बोला ऐसे मत करना। और मैं बताऊं ना दी, मुझे बचपन से कभी भी किसी के दुख दर्द देखा नहीं जाता है, मैं कभी भी। और मैं बताऊं एक बात और, मैं 2 थप्पड़ खा भी लूं तब वो अंदर से मेरा अंदर से वही हंसी रहता है दी।
0: चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain
4: दोस्तों। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: सुधीर को बोल रहा हूँ, जिला देवघर झारखंड से।
5: जी सुधीर जी, कैसे हैं आप?
6: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
5: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
6: घर का मौसम का क्या हाल चाल है?
5: मौसम धूप तो निकला हुआ है,
6: बारिश नहीं हो रही है ना?
5: नहीं। और आपकी तरफ?
6: हम लोग की तरफ भी काफी तेजी धूप है, लेकिन बारिश लगभग लगभग एक दो दिन में हो ही जाती है।
5: अच्छा, तो अभी बारिश हो रही है आपके?
6: नहीं, अभी बारिश नहीं हो रही है।
5: अच्छा, मतलब
6: मौसम, हाँ मौसम बहुत अच्छी है, लेकिन वही काफी तीखा धूप है आज।
5: चलिए, बहुत दिनों बाद धूप जो निकला हुआ है।
6: जी जी, नहीं धूप निकलती है वैसे, लेकिन आज पूरा खिल के धूप है, बहुत कड़ाके की धूप है।
5: अच्छा,
6: गर्मी भी है। आज सुना दीजिए मैम भोजपुरी फिल्म खेसारी लाल और सिकटी राज का कोई नया मैं सुना दीजिएगा आप अपने पसंद से।
5: अच्छा, कोई भी?
6: जी जी जी, डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा खेसारी लाल यादव और सिकटी राज की आवाज में भोजपुरी गाना, कोई अच्छा सा।
5: ओके जी, और डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
6: जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रूम के जितने भी लिसनर है सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
5: ओके सुधीर जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: जी मैम।
5: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम।
5: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो हेलो,
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार जी। मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, हम अच्छे हैं। बहुत देर हो गया, 1 घंटा टाइम निकल गया।
0: जी,
1: 11 बजे चालू हुआ, 12 बजने वाला है।
0: जी
1: तो हमको गाना सुनाइए मैडम।
0: बता दीजिए।
1: देखो तो अभी गाना याद था, अभी भूल गए। हाँ, तुम बंसी बजाते हो।
0: तुम बंसी बजाते हो?
1: हाँ,
0: और इस
1: अलका का गाना है।
0: अच्छा जी,
1: तुम बंसी बजाते हो सारी रात जगाते हो।
0: जी,
1: ऐसा ही गाना है। बहुत अच्छा मधुर गाना है।
0: जी, गाना तो बहुत अच्छा है।
1: तो यही गाना हमको सुनना था, तो सुनवा दीजिए मैडम यही गाना।
0: जी, बिल्कुल। और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ, ये तो बात सही आप बोली। खास कर ये आपके नाम में रहेगा और सोनी जी के नाम में रहेगा, दो आदमी के नाम में रहेगा गाना। और एक हम सुनेंगे, तीसरा हम है।
0: जी,
1: बाकी लोगों को क्या सुनवाना है वो तो सुन के ऐसा ही गच हो जाएंगे। वो लोग कहेंगे वाह क्या गाना है।
0: तो आपने गाने की फरमाइश बहुत ही अच्छा की है।
1: हाँ, हम तो गाने की फरमाइश अपने हिसाब से तो अच्छा ही करते हैं, पर कितने लोगों को तो बुरा भी तो लगता होगा।
0: नहीं, ये गाना जो बताए बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
1: अरे ये तो गाना तो ये था, एक मीरगंज में कलश यात्रा निकला था, है ना। हम उसी दिन से इस गाना पर हम फिदा हो गए हैं। जो कलश यात्रा में बहुत से मतलब औरतें थी और सब लोग थे, पर जो गाना ही मैं सुना उसमें तो बहुत अच्छा लगा हमको, है ना।
0: जी,
1: तो ये कलश यात्रा हमको मीरगंज का याद आता है, तो इसीलिए हमको सुनना अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा वो जो वो बड़ा स्पीकर में बजा था ना, तो उसमें साउंड बहुत खुल के आया था, तो अच्छा लगा। वैसे तो गाना तो हम तो सुन लेते हैं अपने तो रेडियो में, तो उसका मजा और बड़ा स्पीकर का मजा अलग अलग है।
0: जी,
1: उसी को मजे लेकर के मैं सुनना चाहता हूँ इस गाने को। और भी कहिए गाने आ जाते। आज तो हमको फरमाइश करना था वो गाना, सुमन कल्याणपुर का गाना। तो सुमन कल्याणपुर जानती है?
0: नहीं।
1: वो सिंगर है वो।
0: अच्छा।
1: लता जी के टाइम का है, सेम उनका आवाज लता के जैसा है।
0: अच्छा।
1: सुमन कल्याणपुर कर उनका नाम है।
0: अच्छा।
1: मेरे वतन के लोग, वही तो गाने वाली थी सुमन कल्याणपुर कर। आज भी लोग समझते हैं कि उन्हीं का गाना है, लेकिन वो रिहर्सल में थी और उसके बाद से जो लता जी को ये गाना दे दिया गया है ना। हाँ, तो रिहर्सल में अपना गाना प्रदर्शन कर चुकी थी, तो लोगों को बहुत पसंद आया था, मेरे वतन के लोगों, है ना। तो वैसे बहुत से गाने हैं सारे सुमन कल्याण पुरकर का, लोग अब नाम नहीं जानते हैं, इस सिंगर का नाम नहीं जानते हैं लोग बहुत, लेकिन एक एक सिंगर है।
0: जी, बात तो सही है।
1: तो सुनाइए यही गाना मैडम।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले कर।
1: अच्छा, एक मिनट, हम लगभग 12 बजे कॉल किए हैं, तो इतने के टाइम में गाना आ जाएगा क्या? 5 बजे से शुरू होगा तो 6 बजे आ जाएगा गाना मेरा?
0: जी, बिल्कुल आ जाएगा।
1: अच्छा, हम टाइम मिलाते हैं, 6 बजे से 5 मिनट पहले ही रेडियो चालू करेंगे।
0: जी, अगर आज नहीं बजा तो कल बज जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आए हुए हैं, तो आगे पीछे हो जाता है कॉल।
1: और हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज बजेगा तो फिर 1 घंटा जैसे हम लेट करके हम कॉल किए हैं, तो फिर 1 घंटा लेट करके बजेगा ना?
0: नहीं, अगर देखिए कॉल निकालते समय इधर उधर हो जाता है, तो कहीं शायद आपका एक
1: नंबर। क्यों आप लोग तो क्यों नंबर वाइज क्यों नहीं करते हैं आप लोग?
0: तो अब हमारे हाथ में नहीं ना है, अब हम लोग कॉल निकालते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, तो कॉल इधर उधर हो जाता है।
1: अच्छा, ये बात,
0: मिक्सिंग हो जाता है, तो जिसका तक जाता है उसका। जो आप बोल रहे हैं लेट से कॉल किए हैं, आपका आगे बच गया तो।
1: अच्छा, ये कौन आदमी था मैडम? आई तो सुने हैं, बड़ा प्यार से आप बात की थी। कोई एक आदमी है, वो बाहर में काम करता है, उसके अंदर घर पे जो है वो बोरिंग है, उसके पिताजी जो है आटा चक्की चलाते हैं, है ना। वो सब बात उसमें कह रहा था, है ना। तो वो आप पूछी थी कि आपका हाथ अभी कैसा है।
0: जी,
1: मतलब उसका तबीयत भी खराब था उस आदमी का, लेकिन बड़ी प्यार से बहुत देर तक बात हुआ था। हाँ, वही मैं दिल लगा कर सुन रहा था, आज सुबह ही तो सुन रहा था, है ना। तो पता नहीं, और नाम हमको याद नहीं है ना, तो हम बताते, लेकिन आप उसको जानती हैं? हाँ, उस आदमी को जानती हैं, बहुत प्यार से बात हो रहा था। मैं सोचा कि कभी कभी हम भी तो भाई प्यार से बात करेंगे मैडम से।
0: आपको वैसे भी करते हैं।
1: अच्छा मैडम, हमारा घर किधर है?
0: जी,
1: हमारा घर कहाँ है?
0: अगर आपको बताया तो रिकॉर्डिंग हुई होगी, उतना याद नहीं मुझे।
1: याद रहता है बहुत आपको, याद रहता है ना, लेकिन ठीक है, ऐसा ध्यान में होना चाहिए, ऐसा दिल दिमाग होना चाहिए।
0: जी, चलिए तो फिर
1: ठीक है मैडम। हाँ, सुनाइए
0: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: कैसे हैं?
5: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
6: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
5: तो क्या कर रही थी?
6: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर के बाद।
5: चलिए चलिए, अब जाके लगा है कॉल।
6: जी
5: तो नाम बता दीजिए अपना।
6: मैं शबनम सिद्दीकी बात कर रही हूँ।
5: और कहाँ से?
6: जी खान से।
5: चलिए, तो शबनम जी कौन सा गाना सुनिएगा?
6: चंद

0: ये वाला सॉन्ग तो मुझे ये गाना तो बहुत ही अच्छा है
1: जी मैम।
0: तो सबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: हाँ, आपको चाहते हैं।
0: ओके सबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी हाँ मैम, आप माइंड में लग रही है, आप जान सकते हैं
0: जी,
1: आपका नाम जान सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
1: आप न्यू लग रही है?
0: हाँ जी,
1: पहले बार आपका मेरी को हो रही है।
0: जी जी, आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
1: मैंने बोला की मेरे तो हो गई है।
0: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम,
0: जी जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM। जी मनीषा जी, कैसी हैं?
0: बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: अभी कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो
0: रेडियो सुन के उसके बाद से कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को लिस्ट बजा दी फरमाई
1: थी।
0: बोल रहे हैं सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी।
1: जी तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: मैं खाना खा लिया है आप?
1: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आप खाई हैं?
0: हाँ मेरा भी हो गया है। तो गाना सुनवा दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
1: क्या मनीषा जी, ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
0: नहीं, आप दूसरे दिन गा देंगे।
1: जी कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: जी हम आपको और भारती मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
1: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।